0: हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति पारमेलिन आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पारमेलिन से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। समारोह सुबह 11 बजे बोगीबील टर्मिनल पर आयोजित किया जाएगा। पहली खेप में असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित मेथेनॉल बांग्लादेश के ढाका स्थित पानगांव बंदरगाह ले जाया जाएगा। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाए मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin will hold bilateral discussions in New Delhi today. President Parmelin will arrive this morning on a three-day state visit to India, accompanied by a high-level delegation comprising senior officials and business leaders. Mr. Modi and President Parmelin will review progress in bilateral cooperation across a wide range of areas, including trade and investment, science, technology and innovation, mobility, culture and people-to-people contact. The visiting dignitary will also meet President Draupadi Murmu and External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. More from our correspondent.
2: Earlier, in February this year, the Swiss president visited India to participate in the AI Impact Summit in New Delhi. The visit assumes added significance in view of his participation in the second India EFTA Prosperity Summit on 7th of this month to mark the first anniversary of the India EFTA Trade and Economic Partnership Agreement coming into force. Among EFTA countries, Switzerland is the largest trade and investment partner of India. India and Switzerland share long-standing friendly relations. This visit will further strengthen bilateral relations, building upon the regular high-level exchanges and deepen cooperation in new areas of mutual interest. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has emphasized that Russia is a country that stood by India in many ways when India's security and territorial integrity was under threat. Speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi, the External Affairs Minister stressed that at a time when much of the world preferred backing a military regime next to India, Russia was a country with which India's relations were very good. He said India-Russia relations are shaped by that legacy in many ways. He said the bilateral relationship has widened beyond that today, and it is very much an economic relationship as well. Dr. Jaishankar said there are military, nuclear and space components along with significant amount of trade and investment between the two countries. Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, will flag off the first international cargo voyage from Dibrugarh, Assam today. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma will also virtually attend the ceremony, which is scheduled for 11 a.m. at the Bogibeel Terminal. This maiden voyage will carry methanol from Assam Petrochemicals Limited, departing Bogibeel for Pangaon Port in Dhaka, Bangladesh. The shipment will utilize National Waterway 2 on the Brahmaputra and the Indo-Bangladesh Protocol route. This marks the first cargo consignment to sail from Dibrugarh to a foreign port since independence, signifying a major step in reviving Assam's river trade and strengthening inland waterway connectivity in the northeast. Minister of Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh will chair the 17th Pension Adalat in New Delhi today. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions informed that 897 long-pending grievances of super senior pensioners and family pensioners to be taken up for redressal. The minister said Dr. Singh will release flyers highlighting the success stories of the 16th Pension Adalat, which was held on the 13th of May this year. The government has said that under the National Supercomputing Mission, NSM, India has established an ecosystem focused on achieving self-reliance in supercomputing. The mission was launched in April 2015 with an outlay of about 4,500 crore rupees to strengthen the country's computing capabilities. The Ministry of Road Transport and Highways will organize a two-day Chintan Shivir in Gujarat from today. The conclave will bring together senior representatives from the center, states and the implementing agencies to deliberate on key issues concerning the development and delivery of highway infrastructure in the country. India and Canada will kick off the fifth round of negotiations today for their proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement in Ottawa, as both sides aim to conclude the trade pact by the end of 2026. In football, defending champions Mohun Bagan, Super Giant, has defeated Punjab FC 4-3 on penalties in the IFA Shield 2026 semi-final in Kolkata yesterday, securing their spot in the final. The match ended goalless after 120 minutes, leading to a penalty shootout. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी का ये चैबासा केंद्र है. प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान. कलाकार हैं ए हरिहरन.

भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकई तो मात्र माध्यम बन गईं। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। प्रस्तुत है आरती मुखर्जी के स्वर में ये भक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आरती मुखर्जी के स्वर में ये भक्ति गीत। अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वर में गाए इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए आपको बता दें आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 6:45 पर आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगे सतीश के शर्मा। सुबह 7 समय होगा जोहार चाईबासा का। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, हम कुछ जानकारियों के अलावा आपको सुनवाएंगे कुछ सदाबहार गीत। सुबह 8 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। 8:40 पर लोकगीत का कार्यक्रम होगा माटी की महक, जिसमें उड़ाव लोकगीत आज आप सुनेंगे नारायण महतो और उनके साथियों से। सुबह 9 समय होगा कार्यक्रम विविधा का और 9:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन का प्रसारण होगा। सुबह 10 आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की अगली कड़ी। इसके प्रायोजक होंगे NCERT। 10:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे। हमारे सायंकालीन सभा की शुरुआत होगी शाम 5:02 पर। तो श्रोताओं, अभी आप जानकारी ले रहे थे आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं सतीश के शर्मा।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है श्रोताओं, और आकाशवाणी के इस खूबसूरत प्रातःकालीन जोहार चाईबासा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का जोहार। श्रोताओं, सुबह का समय अपने आप में एक नई शुरुआत का संदेश लेकर आता है। रात की खामोशी के बाद जब सूरज धीरे धीरे अपनी सुनहरी किरणें बिखेरता है तो जैसे लगता है प्रकृति हमसे कह रही हो, जो बीत गया उसे जाने दीजिए और आज को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। तो श्रोताओं, आज की सुबह की शुरुआत करते हैं इस सुविचार के साथ। हर सुबह हमें जिंदगी को एक और खूबसूरत मौका देती है, इसलिए बीती बातों की चिंता छोड़िए, आज को मुस्कुराकर स्वीकार कीजिए और अपने छोटे छोटे प्रयासों से इसे यादगार बनाइए। बड़ी सफलता हमेशा बड़े कदमों से नहीं मिलती, कई बार रोज उठकर किया गया एक छोटा सा प्रयास ही हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाता है। तो मुस्कुराइए, पॉजिटिव सोचिए और इस खूबसूरत सुबह को अपने नाम कीजिए, और इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ सुनते हैं ये गीत।

लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में गाए फिल्म सुबह के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, लेकिन जानते हैं मौसम का हाल। चाईबसा और हमारे पश्चिमी सिंहभूम के इस सुबह में मौसम सुहाना हो सकता है और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज चाईबसा में न्यूनतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सुबह अपेक्षाकृत मौसम साफ रहेगा और दिन चढ़ने के साथ श्रोताओं गर्मी महसूस हो सकती है, इसलिए सुबह घर से निकलने वालों के लिए एक छोटी सी सलाह है, सुबह मौसम अच्छा लगे तो भी दिन में तापमान बढ़ सकता है दोस्तों, अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें और तेज़ धूप में बहुत देर तक रहने से बचें। और आप कामकाज के लिए अगर बाहर निकल रहे हैं तो मौसम के साथ साथ सड़क पर भी अपनी सुरक्षा का ध्यान अवश्य रखें। और सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों कहते हैं ना, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं। कभी खुशी हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है तो कभी मुश्किलें हमें थोड़ा ठहर कर सोचने का मौका देती है। लेकिन जिंदगी चाहे जैसी भी हो, उसे मुस्कुराकर जीने की कला अगर हम सीख लें तो हर दिन थोड़ा आसान और थोड़ा खूबसूरत जरूर बन जाएगा। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म थानेदार का ये बेहद प्यारा सा गीत जीना है तो हंस के जियो। इसे गाया था अमित कुमार, आशा भोसले और साथियों ने। और अब श्रोताओं, बारी है अगले गीत की। कभी कभी दिल की कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें हम किसी से कह नहीं पाते, लेकिन वही बातें जब गीतों के सुरों में ढलती है तो लगता है जैसे हमारे दिल की आवाज़ ही गूंज रही हो। प्यार में इंतज़ार हो, किसी अपने की याद हो, या दूर बैठे किसी प्रिय तक अपने मन की बात पहुंचानी हो, ऐसे में गीत एक खूबसूरत संदेश बन जाता है। कुछ ऐसा ही एहसास लिए हुए हम सुनवा रहे हैं आपको ये मधुर और भावुक गीत। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को। फिल्म का नाम है गीत और इसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

और अब श्रोताओं सुनवा रहे हैं आपको हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

कहते हैं दिल की अपनी ही एक दुनिया होती है। दिल को न तो समझाना आसान होता है और न ही इसकी धड़कनों को रोक पाना। कभी कभी किसी की एक मुस्कान हमारे दिल को छू जाती है तो कभी किसी की याद बिना बताए ही दिल में उतर आती है। आखिर दिल तो दिल है, इसे भला कौन समझ पाया है। इसी खूबसूरत गीत को आपने सुना फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से।

दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ख़ास इंसान हमारे सामने नहीं होता है, लेकिन उसकी याद अचानक आ जाती है। कोई बात, कोई जगह या फिर कोई गीत उस इंसान की याद हमें दिला ही देता है, और फिर मन थोड़ी देर के लिए उन्हीं पुरानी यादों में चला जाता है। कुछ ऐसा ही एहसास है फिल्म दो बदन का ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, सुबह सुबह का जब मौसम खुशनुमा हो और हाथ में चाय की प्याली हो और रेडियो पर कोई प्यारा सा गीत बज जाए तो सुबह और भी खुशनुमा हो जाता है। तो आज की इस खूबसूरत सुबह में क्यों ना थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी मिठास और थोड़ी सी पुराने यादें भी हमारे कार्यक्रम में शामिल कर ली जाए। तो श्रोताओं, अब सुनवा रहे हैं आपको फिल्म वक्त का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

0: पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सबों का फिर से स्वागत है। आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं जोहार चायबासा का कार्यक्रम, और हम सुनवा रहे हैं आपको कुछ सदाबहार नगमे। दोस्तों, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से दोबारा भेंट हो जाती है या जिनसे हम मिलने की उम्मीद छोड़ ही देते हैं। समय गुजरता जाता है, रास्ते हमारे बदल जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते और कुछ यादें दिल में कहीं ना कहीं बनी रहती है। और जब बरसों बाद कोई अपना हमारे सामने आ जाता है तो खुशी भी कुछ अलग ही होती है। और आज के इस खूबसूरत सुबह में ऐसे ही एक प्यारी सी मुलाकात और पुरानी यादों का एहसास लिए सुनते हैं फिल्म लावारिस का ये प्यारा सा गीत, किशोर कुमार का गाया।

श्रोताओं, आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में फिल्म लावारिस का ये गीत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारे आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से कार्यक्रम जोहार चाईबासा, और हम सुनवा रहे हैं कुछ सदाबहार नगमे। दोस्तों, कहते हैं ना, हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है। बीते हुए कल को हम बदल नहीं सकते, लेकिन आज का दिन कैसे जीना है यह हमारे हाथ में जरूर है। तो जिंदगी एक सफ़र है, और मंजिल के साथ साथ रास्तों का आनंद लेना भी सीखिए। तो क्यों ना आज इस सुबह में हम अपनी चिंताओं को पीछे छोड़ दें और इस खूबसूरत सफ़र को मुस्कुराते हुए जारी रखें। और जब सफ़र की बात हो ही रही है, तो संगीत से बेहतर हमारा साथी भला कौन हो सकता है। तो सुनते हैं फिल्म गीत गाता चल का ये गीत, जो संदेश देता है कि जिंदगी के रास्ते चाहे जैसे भी हो, हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहना चाहिए और अपने सफ़र को गीतों से सजाते रहना चाहिए। तो सुनिए ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म दिल्ली का ठग और इसे अपने खूबसूरत आवाज से सजाया था आशा भोसले ने। और अब सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

0: बेहद ही भावुक गीत श्रोताओं अभी आपने सुना किशोर कुमार का गाया फिल्म पवित्र पापी से। और श्रोताओं जोहार चाईबासा कार्यक्रम में हमारे संगीत का सफर अंतिम पड़ाव पर, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म अंदाज का ये गीत किशोर कुमार का गाया, और इसी के साथ हमारा जो हर चाय बसा का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी।
1: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत EFTA प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। EFTA देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पहमला से मुलाकात

0: मुलाकात करेंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।
1: आज इस मालवाहक यात्रा के शुभारंभ के साथ ही डिब्रूगढ़ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता पूर्व विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। 8 दशकों से अधिक समय के बाद पहली बार असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय माल खेप रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह 11 बजे इस कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली खेप में नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित 1080 टन मिथानोल भेजा जा रहा है। 2 नवीनीकृत मालवाहक पोत इस खेप को बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। डिब्रूगढ़ से जादव गोगोई के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसा ही रहने की उम्मीद है। उधर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए तत्काल 10 नाव तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: जालिम लोशन दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात एक जिला एक उत्पाद पहल की।
3: मिजोरम के अधिकारियों ने बताया है कि लुंगलेई जिले में केले की खेती करने वालों ने केंद्र की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत केले से बने उत्पादों से लगभग 3,78,00,000 रुपए कमाए हैं। लुंगलेई के लिए केले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद के तौर पर चुना गया है। राज्य सरकार इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है और केले से चिप्स, जूस और खाने की दूसरी चीजें बनाने के लिए प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही है। लुंगलेई की उपायुक्त नवनीत मान ने बताया कि केले की फसल को तब चुना गया जब जिला प्रशासन ने बागवानी विभाग के साथ मिलकर जिले की खेती की क्षमता का अध्ययन किया और पाया कि इस इलाके में केले की अच्छी पैदावार होती है।
4: हमारे जिले में केले की खेती की बहुत संभावना है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए हमने ऐसे नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना शुरू किया है जो केले से बनी चीजों जैसे केले का जूस, चिप्स, पैकेजिंग में भी मदद दे रहे हैं।
5: We have been providing them with training on marketing and packaging.
3: उपायुक्त ने ये भी कहा कि प्रशासन किसानों को केले से बने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए बड़े सरकारी कार्यक्रमों में स्टॉल भी लगाता है। फिलहाल लुंगलेई जिले के लगभग 17 गांवों में केले की खेती हो रही है जिसमें करीब 300 से 400 परिवार शामिल हैं। आइजोल से आइजैक जोरम सांगा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। इटली के अखबार कुरियरे देला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया।
4: रिपोर्ट में इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अल हमामी की मूल साजिश कैप्टन स्मिथ मच्छर की हत्या कर विमान को इजरायल के तल अवीव ले जाकर वहां किसी गगनचुंबी इमारत से टकराने की थी। उसने ऑटो पायलट बंद कर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। करीब 30 सेकंड में विमान 16,000 फीट नीचे आ गया और जमीन से टकराने की स्थिति में पहुंच गया। उसने विमान के नियंत्रण तंत्र को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन यात्रियों ने उसे काबू कर लिया। इजरायल ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया और इस बात की जांच कर रहा है कि ओमान के पायलट को तल अवीव जाने की अनुमति कैसे मिली, जबकि इजरायल और ओमान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और इजरायल की सुरक्षा नीति के तहत इस तरह की उड़ान की अनुमति नहीं है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
6: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दिव्यांगजनों, विशेष रूप से आईईडी विस्फोटों से प्रभावित लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं।
7: बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद इन विस्फोटों में हमने महत्वपूर्ण अंग गंवा चुके दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक निशुल्क शिविर लगाए जा रहे हैं। दिव्यांग जनों के लिए शिविर स्थल पर आने जाने के लिए निशुल्क परिवहन के साथ भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार रायपुर।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने जनहित के कार्यों को भी बढ़ावा दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माई भारत के माध्यम से कल देशभर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
9: धन्यवाद प्रियंका। भारत द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। बकौल दैनिक जागरण, विदेश मंत्री ने कहा हाल में भारत सिर्फ पैरवी करने से परे जाकर थोड़ा और अधिक जुड़ा है। जीएसटी में गिरफ्तारी के अधिकार पर लगाम, नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि जीएसटी परिषद की इस सप्ताह बैठक में कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस लिया जा सकता है और किसी भी गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी को अनिवार्य किया जा सकता है। भारत 20 और देशों में डिफेंस विंग स्थापित करेगा, बढ़ेगा रक्षा निर्यात। हिंदुस्तान ने लिखा है, इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। कैप्टन स्मिथ दुनिया के हीरो, प्रधानमंत्री मोदी संग इसराइल आमंत्रित। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की भारतीय पायलट स्मिथ से फोन पर की गई बात और सराहना को दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है। उधर दैनिक भास्कर ने कैप्टन स्मिथ पर हमला करने वाले को पायलट के बयान को दिया है। को पायलट ने कबूला, विमान क्रैश कराना चाहता था। जापान में संपन्न एशियाई खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अमर उजाला की सुर्खी है, भारत के 21 स्वर्ण पदकों में से 14 में रही बेटियों की भारत साल। ये खबर ध्यान खींचती है, गुजरात के मेहसाणा जिले में पेंशन के पैसों से 75 वर्षीय दिनेश भाई और उनकी पत्नी ने ज्यादा पेड़, हजारों परिंदों का घर बना।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की पहमला आज नई दिल्ली में करेंगे। घर से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi today. Union Minister Sarbanand Sonowal to flag off first international cargo voyage from Dibrugarh in Assam this morning. IMD forecasts heavy rainfall in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today. India and Canada to start fifth round of negotiations for their proposed comprehensive economic partnership agreement in Ottawa today. Fly Dubai flight's Omani co-pilot tried to crash aircraft in Saudi desert after hijack attempt foiled. And India signs off with 85 medals after gold rush in cricket, hockey and kabaddi at Asian Games 2026 in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin will hold bilateral discussions in New Delhi today. President Parmelin will be on a three-day state visit to India, accompanied by a high-level delegation comprising senior officials and business leaders. Prime Minister Modi and President Parmelin will review progress in bilateral cooperation across a wide range of areas, including trade and investment, science, technology and innovation, mobility, culture and people-to-people contact. The leaders will also exchange views on regional and global developments, including cooperation in multilateral fora. President Parmelin will meet President Draupadi Murmu this evening. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will also call on President Parmelin. More from our correspondent.
11: Earlier in February this year, the Swiss President visited India to participate in the AI Impact Summit in New Delhi. The visit assumes added significance in view of his participation in the second India EFTA Prosperity Summit on 7th of this month to mark the first anniversary of the India EFTA Trade and Economic Partnership Agreement coming into force. Among EFTA countries, Switzerland is the largest trade and investment partner of India. India and Switzerland share long-standing friendly relations. This visit will further strengthen bilateral relations, building upon the regular high-level exchanges.

0: team overcame Pakistan by 19 runs to complete the golden double. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have congratulated Indian athletes for their outstanding performances at the Asian Games 2026, especially the women athletes who have delivered impressive results. And now for a look at today's newspapers, it's over to V.C. Pramod.
1: Thank you, Anuja. Taking India's reform journey forward, GST 2.0 reforms set for rollout this week, writes Hindustan Times. Financial Express adds faster refunds, wider ITC, no arrests. External Affairs Minister in his address to Munich leaders' meeting reiterates Russia's long-standing support for India, along with stronger ties among emerging powers, adding, the US has chosen to become a lonelier power, states the Times of India. The Pioneer headline writes on the Omani co-pilot accused of attempting to seize the Fly Dubai airline mid-air. It says Hamami probe widens in Australia, with social media posts reportedly linked to the pilot draw scrutiny as investigators reconstruct the history. Final airline audit this week ahead of U.S. checks on safety covering all Indian airlines, another headline in the Hindustan Times. And finally, dazzling light, musical show mark end of Asian Games as India finishes fourth. Qatar to host next edition, says the Tribune. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi today. Union Minister Sarbanand Sonowal to flag off first international cargo voyage from Dibrugarh in Assam this morning. IMD forecasts heavy rainfall in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today. India and Canada to start fifth round of negotiations for their proposed comprehensive economic partnership agreement in Ottawa today. Fly Dubai flight's Omani co-pilot tried to crash aircraft in Saudi desert after hijack attempt foiled. And India signs off with 85 medals after gold rush in cricket, hockey and kabaddi at Asian Games 2026 in Japan. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
3: बस पोती का जन्म ठीक से हो गया, चलो सब घर चलते।
4: सुनिए, डॉक्टर साहब ने अस्पताल में दो रात रुकने को बोला था।
3: नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं।
4: अरे देख के, हाय गिर गए।
5: अच्छा मलहम लगाओ, पट्टी करो और एक्सरे करो जल्दी।
6: देखा आपने, कोई भी गड़बड़ होने पर यहाँ तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद के 48 घंटे माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए अस्पताल में दो रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेकर चांस क्यों लेना,
7: चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
10: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज
9: 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
10: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा।
9: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
11: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
12: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का किया पुनर्गठन। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे बने सूचना प्रौद्योगिकी समिति के चेयरमैन। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह आज। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार 207 छात्रों को सौंपेंगे डिग्रियां। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। मौसम विभाग ने आज हजारीबाग, कोडरमा और चतरा सहित राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात और तेज हवाओं की जारी की चेतावनी। और रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत वेस्टइंडीज टी20 मैच के टिकटों की ऑफलाइन बिक्री आज से शुरू। रात से ही काउंटरों पर डटे फैंस। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। गोड्डा से भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे को संचार

0: और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। देवघर में पत्रकारों से बातचीत में श्री दुबे ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच समिति फेक न्यूज, अश्लीलता और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कॉन्टेंट रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: उन सबों के आभारी हैं कि उन्होंने ये जिम्मेवारी आज के समय में दी है और हम कोशिश करेंगे कि जो जिम्मेवारी दी है उसको हम कानून सम्मत जो है ठीक से निभा पाए। जो यूट्यूबर्स हैं जो कि बिना किसी पाबंदी के कोई भी न्यूज डालते हैं, बच्चों का जो माहौल खराब करते हैं, महिलाओं के ऊपर जो उल्टे सीधे गलत टिप्पणी करते हैं, इन सारे चीजों के बारे में हमारी कमेटी चिंतित भी है और उसके बारे में एक नया बिल लेके आएंगे।
0: झारखंड रक्षा शक्ति मंत्रालय का दूसरा दीक्षांत समारोह आज आयोजित हो रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार 207 छात्रों को डिग्रियां प्रदान करेंगे। इस दौरान विभिन्न विषयों के मेधावी छात्र छात्राओं को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए गोल्ड सम्मान ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नसीहत दी कि राज्य में शासन व्यवस्था का स्तर लगातार गिर रहा है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री से कानून व्यवस्था में सुधार करने और जनता का भरोसा वापस कायम करने की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने भी राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है।
2: पिछले 6 सालों में बहुत तरह के घोटाले आए हैं और जब भी इन घोटालों की बात आई है तो इनका मास्टरमाइंड किंगपिन जो भी होता है वो हेमंत सोरेन जी का करीबी होता है। उदाहरण के लिए हेमंत सोरेन जी के करीबी माने जाने वाले विनय चौबे को खुद की सरकार ने शराब घोटाले में माना कि वो लिप्त थे और उसके बाद जब छात्रों का आंदोलन हुआ तो अगेन जो है सीएम के करीबी माने जाने वाले अनुराग गुप्ता उनकी भी भूमिका ऊपर आ रही है।
0: इस पर पलटवार करते हुए झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा नेता हेमंत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और लोकप्रियता से बौखला पुनिया
3: लालू यादव जी से सीखना हो, ममता बनर्जी से सीखना हो, कि योगी आदित्यनाथ से सीखना हो, कि सम्राट चौधरी से सीखना हो, ये सीखने की चीज इस तत्परता के साथ यहाँ पुलिस का पुलिसिंग हो रहा है और हर कांड का उद्भेदन हो रहा है, ये किसी भी भाजपा शासित राज्यों की तुलना में आप इसको देखेंगे तो ये सबसे बेहतर राज्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा के सेवा पखवाड़ा के तहत सरायकेला और जामताड़ा में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरायकेला में भाजपा नेत्री रीता दुबे के नेतृत्व में महिलाओं ने दीप जलाकर और आकर्षक रंगोली बनाकर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। वहीं जामताड़ा के हनुमान मंदिर प्रांगण में भी रंगोली सजाकर और दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ के आनंद राव ने कहा है कि देश में पिछले 60 वर्षों से यूरेनियम का सुरक्षित खनन हो रहा है। जमशेदपुर में उन्होंने बताया कि वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए राजस्थान और आंध्र प्रदेश में नई खदानें शुरू की जाएंगी, जिससे 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।
4: पॉजिटिव परसेप्शन बढ़ाने के लिए ये पूरा पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं और जो यूरेनियम हम निकाल रहे हैं ये आपको क्लीन एनर्जी देने के लिए बहुत उपयोग होता है। फर्स्ट पॉइंट इधर ही से पूरा एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम स्टार्ट होता है इंडिया में और जो 100 गीगावाट न्यूक्लियर प्रोग्राम टारगेट दिया है भाई विकसित भारत 2047 के लिए यूरेनियम का जरूरी है।
0: रांची के धुरवा में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा समितियों की अहम बैठक हुई। इसमें 35 पूजा समितियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने पंडालों में सुरक्षा, यातायात, भीड़ नियंत्रण और अग्निशमन नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

0: बैठक थे और दुर्गा पूजा समिति के लिए शांति समिति के लिए लोग थे, और ट्रैफिक मैनेजमेंट के संबंध में, सीसीटीवी के संबंध में, और वॉलंटियर्स खासकर महिला युवाओं को जोड़ने का उसके संबंध में सारी चीज हम लोगों ने बताए, और शांति समिति के साथ लगातार वो लोग संपर्क में रहेंगे।
1: मौसम मौसम विभाग ने आज हजारीबाग, कोडरमा और चतरा सहित उत्तर पूर्वी और मध्य भागों में गरज चमक के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने 6 और 7 अक्टूबर को भी राज्य में कहीं कहीं वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी देते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। क्रिकेट, रांची के जेएससीए स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत वेस्टइंडीज टी20 मैच के टिकटों की ऑफलाइन बिक्री आज से शुरू हो रही है, जिसके लिए प्रशंसक रात से ही कतारों में डटे हैं। जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले की मेजबानी के लिए पूरा मैदान सज चुका है और दर्शकों की सुविधा तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
2: झारखंड के लिए मैटर ऑफ प्रेस्टीज होता है कि हम लोग सफलतापूर्वक इंटरनेशनल मैच का आयोजन कर ले। दर्शकों से सिर्फ मेरा एक आग्रह रहेगा कि लोग जो टिकट के पीछे जो प्रिंटेड होता है कि आपको कितने बजे आना है, गेट्स कितने बजे खुलेंगे, क्या लेके नहीं आना है, इन चीजों का विशेष लोग ध्यान रखें। ये कालाबाजारी टिकट के लोग करते हैं, तो उसके लिए लोगों से अपील हो, ऐसा कुछ भी कहीं सूचना मिलती है इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जीएसए को सूचना दे।
1: दुमका में आयोजित 2 दिवसीय 17वीं झारखंड राज्य जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता संपन्न हो गई। इसमें टाटा आर्चरी एकेडमी के गोल्डी मिश्रा और खुशी कुमारी ने रिकर्व, व्यक्तिगत और मिश्रित स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। वहीं इंडियन राउंड में योगेंद्र हैसा और बेबी कुमारी विजेता रहे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि जामा विधायक डॉ लुईस मरांडी ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली झारखंड की खिलाड़ियों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर रांची लौटी झारखंड की बेटियां, सीएम ने मिठाई खिलाकर उत्साह बढ़ाया। हिंदुस्तान के शब्द हैं, झारखंड में मातृ मृत्यु अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम। दैनिक जागरण लिखता है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने संशोधित राज्य स्तरीय मेधा सूची पर जताई आपत्ति। प्रभात खबर ने लिखा है, रांची से लौटा मॉनसून, आज से 8 अक्टूबर तक लगातार छाए रहेंगे बादल। वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का किया पुनर्गठन। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे बने सूचना प्रौद्योगिकी समिति के चेयरमैन। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह आज। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार 207 छात्रों को सौंपेंगे डिग्रियां। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। मौसम विभाग ने आज हजारीबाग, कोडरमा और चतरा सहित राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात और तेज हवाओं की जारी की चेतावनी, और रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत वेस्टइंडीज टी20 मैच के टिकटों की ऑफलाइन बिक्री आज से शुरू, रात से ही काउंटरों पर डटे फैंस। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: बीमारी है जिससे बच्चा जीवन भर के लिए अपाहिज हो सकता है।
4: अचानक हाथ पांव लुंज पुंज हो जाता है या बच्चा चल फिर नहीं सकता।
3: बच्चे को 1 साल की उम्र तक पोलियो की 3 खुराकें
4: 1-1 महीने के अंतर पर दिलाएं।
3: जानकारी के लिए सहिया स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिलें।
4: पोलियो की खुराक सभी सरकारी अस्पताल,
3: डिस्पेंसरी या हेल्थ सेंटर में मुफ्त मिलती है।
4: 2 बूंद जिंदगी के।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: भूल गए आज कौन सा दिन है?
7: गुरुवार है।
6: अरे गुरुवार और शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र और शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर 1 साल तक के बच्चों को मुफ्त टीके लगाए जाते हैं।
7: चलो जल्दी फिर
6: सुरक्षित बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें।
5: हर गुरुवार और शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र और शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर 1 साल तक के बच्चों को मुफ्त टीके लगवाएं।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। माटी की महक में हम आपको सुनवाएंगे आज उरांव लोकगीत। कलाकार होंगे नारायण भगत और उनके साथी।

0: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और इसी संदेश के साथ श्रोताओं, हमारा आज का लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे थे नारायण भगत और साथियों से उड़ान लोकगीत। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का नमस्कार। श्रोताओं, आज के विविधा कार्यक्रम में हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण दिवस पर। आज है विश्व आवास दिवस और विश्व शिक्षक दिवस। दोस्तों, अक्टूबर का महीना अपने साथ त्योहारों और बदलते मौसम की खूबसूरत आहट लेकर आता है, लेकिन इस महीने में कुछ दिन हमें समाज और मानव जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर भी सोचने का अवसर देते हैं। आज 5 अक्टूबर का दिन है और आज का दिन दो महत्वपूर्ण संदेश हमारे सामने आया है। एक और है विश्व आवास दिवस, जो हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति को सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक आवास की आवश्यकता है। और दूसरी ओर है विश्व शिक्षक दिवस, जो हमें उन शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है, जो ज्ञान और संस्कारों से हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यानी एक दिवस हमें बेहतर घर और बेहतर जीवन परिस्थितियों की बात करता है, तो दूसरा हमें बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य की दिशा दिखाता है। तो श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं विश्व आवास दिवस की ओर। हम सभी के लिए घर का अर्थ केवल 4 दीवारें और एक छत नहीं है। घर वह जगह है जहां हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां बच्चे

अपने सपने देखते हैं जहाँ बुजुर्गों को अपनापन मिलता है और जहाँ दिन भर की थकान के बाद इंसान सुकून पाता है। इसलिए सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है दुनिया भर में आवास की स्थिति, मानव बस्तियों के विकास और सभी लोगों के लिए बेहतर जीवन परिस्थितियों की आवश्यकता के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। दोस्तों, घर केवल एक मकान ही नहीं बल्कि एक बेहतर वातावरण भी बनता है। घर के आसपास स्वच्छ वातावरण हो, पीने का साफ पानी हो, बिजली की सुविधा हो, अच्छी सड़कें हो, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो, ये सभी बातें किसी बस्ती को रहने योग्य बनाती है। इसलिए आज ज़रूरत है हमें ऐसे शहरों और गांवों की जहां विकास के साथ साथ प्रकृति का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो श्रोताओं, आज के इस दिवस के अवसर पर हम तो कुछ अपनी ओर से भी कर सकते हैं, जैसे अपने घर और आसपास की सफाई रखें, पानी की बर्बादी को रोकें, बिजली बचाएं, पेड़ लगाएं, कचरे को सही जगह पर डालें और अपने आसपास रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशील रहें, क्योंकि बेहतर आवास की शुरुआत केवल सरकार से नहीं, हमारे अपने व्यवहार से भी शुरुआत होती है। भारत में भी लोगों को आवास उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधा को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे सरकारी प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी पहलों का उद्देश्य पात्र परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता करना है, लेकिन आवास के साथ साथ यह भी जरूरी है कि लोगों को स्वच्छ पानी, स्वच्छता, बिजली, सड़क और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाए। यही एक स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन की नींव है। दोस्तों, एक ओर सुरक्षित घर इंसान को जीवन जीने का आधार देता है, लेकिन जीवन की सही दिशा हमारे देते हैं हमारे शिक्षक। घर हमें सुरक्षा देता है और विद्यालय हमें ज्ञान देता है। घर हमारे व्यक्तित्व की पाठशाला है और शिक्षक उस शिक्षा को आगे बढ़ाकर हमारे व्यक्तित्व को आकार प्रदान करते हैं। तो इसलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे दिवस की ओर। आज दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस है। हमारे भारत में तो 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया भर के शिक्षकों के योगदान को सम्मान देने का अवसर है। दोस्तों, शिक्षक वह व्यक्ति है जो सिर्फ किताब नहीं पढ़ाता बल्कि जीवन को समझने की दृष्टि भी देता है। वह विद्यार्थी की प्रतिभा को पहचानता है, उनकी गलतियों को सुधारता है और असफलता के समय उनके हौसला को बढ़ाता है। कभी कभी शिक्षक का कहा हुआ एक छोटा सा वाक्य विद्यार्थी के पूरे जीवन की दिशा को बदल देता है। दोस्तों, आज भले ही हमारे हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है और दुनिया भर की जानकारी कुछ ही सेकंड में हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन जानकारी और ज्ञान में बहुत अंतर है। इंटरनेट हमें बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन सही और गलत में अंतर करना, जानकारी का सही उपयोग करना और जीवन में उचित निर्णय लेना, इन सब में शिक्षक का मार्गदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी से केवल यह नहीं कहता कि परीक्षा में अच्छे अंक लाओ, वह कहता है ईमानदार बनो, मेहनत करो, दूसरों का सम्मान करो, असफलताओं से मत डरो और अपने सपनों पर विश्वास करो। शिक्षक भविष्य बनाते हैं। दोस्तों, आज का विद्यार्थी ही कल का डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कलाकार, किसान, सैनिक, अधिकारी, उद्यमी या शिक्षक ही बनेगा। इसलिए कहा जा सकता है
शिक्षक केवल एक विद्यार्थी को नहीं

0: पढ़ाता है, वह आने वाले समाज को भी तैयार करता है। एक शिक्षक के हाथ में चौक या कलम भले ही बहुत छोटी चीज लगे, लेकिन उसी के माध्यम से तो हम अपने बच्चों के भविष्य की तस्वीर बनाते हैं। आज विश्व शिक्षक दिवस पर आइए कुछ क्षण अपने जीवन के उस शिक्षक को याद करें जिसने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की। हो सकता है वह शिक्षक आज हमारे साथ ना हो, हो सकता है उनसे वर्षों पहले मुलाकात हुई हो, लेकिन उनकी सिखाई हुई कोई बात आज भी हमारे जीवन में मौजूद होगी। तो श्रोताओं, आज के दोनों दिवस हमें बहुत सुंदर संदेश देते हैं। विश्व आवास दिवस कहता है, हर व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन परिस्थितियां मिले, और विश्व शिक्षक दिवस कहता है, हर बच्चे को ऐसी शिक्षा मिले जो उसे ज्ञान के साथ साथ अच्छा इंसान भी बनाए। जब किसी परिवार के पास सुरक्षित घर हो और उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, तभी एक मजबूत समाज का निर्माण हो सकता है। तो श्रोताओं, विश्व आवास दिवस के अवसर पर हर परिवार के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक आवास की कामना, और विश्व शिक्षक दिवस पर देश दुनिया के सभी शिक्षकों को हमारा सादर नमन है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है, तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जा...

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अर्पिता मुखर्जी को। आज 5 अक्टूबर है और हिंदी साहित्य के लिए यह तारीख एक महान साहित्यकार की स्मृति से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 1981 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा का निधन हुआ था। उनकी लेखनी ने हिंदी साहित्य को ऐसे उपन्यास और कहानी दी जिनमें जीवन के अनेक रंग दिखाई देते हैं। प्रेम, संघर्ष, नैतिकता, मानवीय कमजोरियां, सामाजिक परिस्थितियां और मनुष्य के भीतर चलने वाला द्वंद्व। आज उनकी पुण्यतिथि है दोस्तों। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1909 3 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद से बीए और एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की थी। साहित्य के प्रति उनका झुकाव बचपन से ही था और उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत कविता से की। आगे चलकर वे हिंदी के महत्वपूर्ण उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनका साहित्यिक जीवन केवल एक विधा तक ही सीमित नहीं रहा। श्रोताओं, उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण सहित अनेक विधाओं में लेखन किया। उन्होंने आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से भी जुड़कर कार्य किया और बाद के वर्षों में स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन को अपना जीवन समर्पित कर दिया। चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा की चर्चा हो और चित्रलेखा का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चित्रलेखा उनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है। इसमें पाप और पुण्य जैसे गहरे दार्शनिक प्रश्नों को मानवीय जीवन और परिस्थितियों के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास ने पाठकों के मन में अनेक सवाल खड़े किए। क्या कोई व्यक्ति जन्म से पापी या पुण्य आत्मा होता है? क्या परिस्थितियां मनुष्य के कर्मों को प्रभावित करती है? आखिर पाप और पुण्य की वास्तविक परिभाषा क्या है? यही प्रश्न चित्रलेखा को एक साधारण कथा से आगे ले जाकर विचार प्रधान रचना बना देते हैं। इस उपन्यास पर श्रोताओं 2 बार फिल्में भी बनी, जिससे इसकी लोकप्रियता साहित्य की दुनिया से आगे आम जनमानस तक पहुंची। भगवती चरण वर्मा के और एक महत्वपूर्ण कृति है दोस्तों, भूले बिसरे चित्र। इस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भगवती चरण वर्मा का लेखन हमें जीवन को एक अलग नजरिए से देखने की प्रेरणा देता है। उनकी भाषा सहज, प्रवाहपूर्ण और प्रभावशाली थी। उनके लेखन में दर्शन के साथ साथ मानवीय संवेदना भी दिखाई देती है। उन्होंने सामाजिक जीवन की समस्याओं को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाया। उनकी प्रमुख कृतियाँ टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, अपने खिलौने, रेखा, सभी नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका शामिल है। श्रोताओं, किसी भी लेखक की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल पुरस्कार नहीं होते हैं। उन्हें भूले बिसरे चित्र के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1971 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और वर्ष 1978 में उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया था। श्रोताओं, साहित्यकार शरीर से हमारे बीच नहीं रहते, लेकिन उनकी रचनाएं हमेशा जीवित होती हैं। भगवती चरण वर्मा भी आज हमारे बीच नहीं हैं। उनकी चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र और उनके अनेक रचनाओं के माध्यम से वे आज भी हिंदी साहित्य के पाठकों के बीच उपस्थित हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए यही कह सकते हैं कि शब्द समाप्त हो सकते हैं, किताब का एक पन्ना समाप्त हो सकता है, लेकिन सच्चा साहित्य कभी समाप्त नहीं होता। वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है और
हर पाठक के मन में एक नया अर्थ लेकर जन्म लेता है। हिंदी साहित्य को अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से समृद्ध करने वाले महान साहित्यकार भगवती चरण वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। और श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का विविधा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये चाय बसा केंद्र है और अब श्रोताओं समय है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रस रंजन का। तो श्रोताओं पेश है कार्यक्रम का ये पहला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना आयुष्मान खुराना और नेहा कक्कड़ का गाया, कुमार का लिखा, रोचक कोहली की धुन पर फिल्म बधाई हो का ये गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन। अब सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है बद्रीनाथ की दुल्हनिया। सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444999 या 1800345406 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: इन जरूरी संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सबों का फिर से स्वागत है और सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत। अगला गीत हमने लिया है साहिद माल्या का गाया, फिल्म का नाम है सेफ और गीत लिखा है अंकुर तिवारी ने, संगीत है रघु दीक्षित का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना अलका याग्निक का गाया, नुसरत बद्र और मदन पाल का लिखा फिल्म दीवार का ये गीत। और अब चलते चलते श्रोताओं सुना रहे हैं आपको ये गीत। फिल्म का नाम है गदर, प्रीति उत्तम और उदित नारायण की आवाज़ों में।

फिल्म गदर के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और श्रोताओं, अब सुनते हैं कुछ ही पलों में प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। तो सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। भेजने वाले हैं अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी। वो लिखते हैं,
1: जो निश्चल प्रेम में रहते हैं वो छल समझ नहीं पाते और जो छल में रहते हैं वो निश्चल प्रेम नहीं समझ पाते।
2: जी आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: तो हमें पहला संदेश मिला है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, बंटी और बबली वर्मा।
1: और बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी और ख्याति सारवा।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू।
1: और छत्तीसगढ़ हसदा नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू।
2: राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है,
2: हम उमंग कार्यक्रम में मासिक संस्करण श्रोता संवाद का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस कार्यक्रम से महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को प्राप्त होती है। सच मानिए, ये कार्यक्रम जानकारी का महत्वपूर्ण खजाना है। 7 सितंबर के कार्यक्रम श्रोता संवाद में शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर डॉक्टर श्वेता तंवर जी से अजीत सर जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी सरल शब्दों में सुनवाई गई। ये जानकारी सुनवाने के लिए डॉक्टर श्वेता तंवर जी के साथ साथ अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: अगला संदेश हमें मिला है सहसपुर छत्तीसगढ़ से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सती बाई साहू जी का।
2: ईदू ग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका उडुपी जिला कर्नाटक से एच सिद्धार्थ जी लिखते हैं।
1: आप लिखते हैं, आदरणीय कार्यक्रम के बारे में हमारी प्रतिक्रिया
2: जी।
1: स्त्री शिक्षण को आपने प्रोत्साहन देकर महिलाओं में हिम्मत बढ़ाई है। पुराने जमाने में पुरुष प्रधान समाज में सामाजिक कार्यकलाप ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को लोग खारिज करते थे
2: जी।
1: जेंडर डिस्पैरिटी पर आपका श्रोता संवाद बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब सुनिए पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण गंगोत्री क्या है और ये कहाँ स्थित है।
2: इसका उत्तर है साथियों, दक्षिण गंगोत्री दक्षिण ध्रुव पर स्थित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है।
1: और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया।
2: इसका उत्तर है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन द्वारा उसकी माता को दिया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न था, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के भीतर भूकंप, भूगर्भीय, ज्वालामुखीय और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण सुनामी आती है। समुद्र के भीतर भूस्खलन भी इसका मुख्य कारण है।
1: और हमारा अगला सवाल था कि मेघालय शब्द का क्या अर्थ है।
2: मेघालय शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, मेघ और आलय
1: जी।
2: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो अर्थ बना मेघालय यानी मेघों या बादलों का घर।
1: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए।
2: गांधी जी द्वारा रचित संभवतः सबसे अधिक चर्चित किताब का नाम है, मेरे सत्य के प्रयोग
1: जी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, तो हो जाइए तैयार। हमारा आज का प्रश्न है, सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं।
1: श्रोताओ, 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए
2: जी।
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का पहला कार्यक्रम। तो आज के पहले कार्यक्रम के क्रम में हम सुनेंगे हमारा मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
2: आइए सुनते हैं श्रोता संवाद।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, प्रस्तुत है उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने के पहले सोमवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और NCERT द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही विभिन्न पहलों पर। तो आज इस क्रम में हम बात करेंगे NCERT की नई पाठ्य पुस्तकों की। तो श्रोताओं, आपको हम बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव। आप NCERT के सामाजिक विज्ञान और शिक्षा विभाग की अध्यक्षा हैं। तो प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव, आज के उमंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
3: नमस्कार, आप सभी को स्वागत करती हूं और आपने समय दिया मुझको सुनने के लिए, इसका मैं आभार प्रकट करना चाहती हूं। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि विद्यालय में सामाजिक विज्ञान एक बहुत अहम विषय है और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के बारे में बताने का कोशिश करूंगी।
1: तो डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे, मेरा प्रश्न ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में NCERT की पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे की विषय वस्तु के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए और बताइए कि यह सामाजिक विज्ञान से कैसे जुड़ा है।
3: हाँ अजीत जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं पूरा प्रयास करूंगी। आप सभी को पता है, जब हम सामाजिक विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं तो विषय तो समाज से जुड़ा ही होता है
1: जी।
3: दूसरा, समाज और प्रकृति में क्या समन्वय है उसके बारे में भी हम बताने का कोशिश करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से
1: जी।
3: और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बल दिया है कि जब भी हम बच्चों को समाज के अध्ययन के बारे में बताने का प्रयास करें तो हमें समाज के जो विषय हैं, जैसे आप जानते ही हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, ये इसका समावेश है और हम इसको सोशल साइंस कहते हैं, यानी समाज शास्त्र। आप हमारी पाठ्य पुस्तक मिडिल स्टेज की ले लीजिए और आप देखिए कि जितनी भी पाठ्य सामग्री है, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी, अतीत के चित्रपट, हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, शासन और लोकतंत्र, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन से क्या जुड़ाव है
1: जी।
3: इन विषयों को हम अपनी 6वीं, 7वीं, 8वीं में दिए हैं और उसके अंदर जब आप विषय वस्तु को पढ़ेंगे गहन ढंग से, आप देखेंगे कि उसमें एक लीनियर प्रोग्रेशन है, यानी कि हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए, इतिहास ले लीजिए कि समय सारणी से जो भी घटना घटी है उसके बारे में हमारा विषय वस्तु आपको बताने का प्रयास करता है। साथ ही साथ घटनाओं का विवरण हम जब करते हैं तो हमारा विषय वस्तु आपको जोड़ने की कोशिश करता है, ताकि आपके मन में जिज्ञासा, आपके मन में उस विषय के बारे में और गहन ढंग से कहां से लें उसके बारे में, और तीसरा, आप किन गतिविधियों के माध्यम से ये विषय को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आपने प्रकृति आपदा के बारे में आपकी जिज्ञासा हुई तो प्रकृति आपदा के बारे में आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं, साथ साथ अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं कि क्यों ये घटती है और हमें क्या करना चाहिए
1: जी।
3: इसी तरह हमारे पाठ्य पुस्तक में आप देखिए, जो विषय हमारे भूगोल से जुड़ा है, हम बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी जो
1: प्राकृतिक संसाधन कह
3: लें, हमारी प्रकृति संसाधन है वो क्या है, और साथ साथ हम बताने की कोशिश

0: कोशिश करते हैं उसकी संरचना हम कैसे करें, ताकि आज आपने सुना होगा हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो छोटी छोटी गतिविधि से हम कैसे अपनी ये धरोहर का संरक्षण करें। जब आप पाठ्यपुस्तक उठाते हैं और ये विषय पढ़ते हैं, हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, तो एक गौरव जैसी भावना आती है कि हमारे भारतवर्ष में ये विषय कितना अहम था। हमारे जितने भी पर्सनालिटीज थे, आप कोई भी विषय ले लीजिए, उन्होंने गहन ढंग से अध्ययन करके, विज्ञान के क्षेत्र में ले लीजिए, साहित्य के क्षेत्र में ले लीजिए, कितनी अच्छी बातें बताई जो आज भी प्रासंगिक हैं और मनुष्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आगे ले जाता है, साथ साथ प्रकृति के बारे में भी बताने का प्रयास किया जाता है, क्यों और क्या, ऐसे सवालों का जवाब भी हमारी ज्ञान परंपरा में आपको मिलेगा जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे
1: जी।
0: अनेकता में एकता एक ऐसा पाठ है हमारी सभ्यता संस्कृति में जुड़ा है हमारे पाठ्य पुस्तक में, जहाँ मानचित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की कि हमारे जो रीति रिवाज है या हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, वो विभिन्न तो होते ही हैं, लेकिन हर विभिन्नता में एक एकता की भी
1: भावना
0: आती है, और हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको एक सूत्र में जोड़ करके हमारी विकसित यात्रा सभ्यता और संस्कृति का भी एक बहुत अहम स्थान है, और हमारी पाठ्य पुस्तकों में इसको अच्छी तरह से छठी सातवीं आठवीं में दर्शाया है। इसको कृपा करके पढ़िए और अपने प्रांत में भी देखने की कोशिश कीजिए कि इसको हम कैसे मनाते हैं, कब मनाते हैं और किस तरह से हम उससे जुड़े रखते हैं। कितने समय से ये शुरू हुआ, लेकिन आज भी हम उसको बड़े ही धूमधाम से इसको मनाते हैं, गाना गाते हैं, और आप देखिए आज हम लोग की जो हेरिटेज है, आर्ट है, कितना लोग इसको लोकप्रिय ढंग से अपने जीवन में इसको उतारते हैं, और बच्चे आप लोग तो अपने प्रोजेक्ट वर्क में भी इसका समावेश करते हैं, और ये सारी चीजें आपको हमारी पाठ्य पुस्तक में मिलेगी। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में भी चर्चा किया गया, कौन कौन से विभिन्न कार्य करते हैं हमारे भारतवर्ष में, उसके बारे में भी चर्चा की गई है, और साथ साथ ये भी बताया गया है कि बार्टर से आज मोनेटाइजेशन में हमारी यात्रा कैसे रही, साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में भी विभिन्न ढंग से बताया गया है, तो हमारी पाठ्य पुस्तक में ये भी आप पाएंगे, और लोकतंत्र के बारे में भी अच्छी तरह से बताया गया है। तो ये एक जुड़ाव जो हमारी सामाजिक विज्ञान को बनाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे हम इसको पढ़ें, एग्जाम्पल्स कैसे हम दे सकें, और साथ ही साथ जब हम विश्लेषण करें तो तथ्यों के आधार पे हमें निष्कर्ष पे आना चाहिए, ना कि केवल पढ़ करके, क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो हमारे NEP 2020 में दिया गया है, वो भी आप तथ्यों का पहले एकत्रित करिए, उनका विश्लेषण करिए, तब आप नतीजे पे आ सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये भी हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया है, गतिविधि कई दी है जो आप कर सकते हैं और खुद जुड़ सकते हैं इस विषय से, क्योंकि जब हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ा है। कुछ ऐसे हमारे पाठ हैं जो अतीत से जुड़े हुए हैं, लेकिन अतीत को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक हमारा ऑब्जेक्टिव है सामाजिक विज्ञान का, कंटिन्यूटी एंड चेंज, किस तरह से हम धीरे धीरे प्रगति किए, और क्या बात है कि कुछ चीज आज भी प्रासंगिक है, उसको हम लेते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे हमारी आर्ट है, संगीत है, हमारी सभ्यता संस्कृति है,
1: अलग अलग कलाएं हैं,
0: अलग अलग कलाएं हैं, इन सबको हम आज भी जोड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें खुद को गौरव महसूस कराते हैं और हमारी आइडेंटिटी को, इंडियननेस को स्ट्रेंथन करने का कोशिश करते हैं।
1: जी, तो प्रोफेसर गौरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े विस्तार से इस पाठ्य पुस्तक के बारे में जानकारी दी। मेरा एक प्रश्न और है आपसे, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, इस पुस्तक को पढ़ाने के लिए आप शिक्षकों को किस प्रकार का निर्देश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं भी शिक्षक रह चुकी हूँ और मेरा अपना मानना है कि हम विधि को बहुत ही सरल ढंग से और बाल केंद्रीय अगर हम बनाते हैं तो बच्चे का जुड़ाव होना चाहिए। कक्षा में हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चों को हम समय दें कि वो प्रश्न करें, अपनी जिज्ञासा

0: के बारे में औरों को भी बताने की कोशिश करें, क्योंकि आप एक किरण बच्चों के अंदर लाते हैं कि ये विषय केवल पढ़ने का ही नहीं है, समझने का भी है, और आप खुद उसके साथ संवाद करें, क्योंकि बुक तो आपके सामने है, लेकिन जब आप उसको आंखों से भी पढ़ेंगे, उसका अध्ययन भी करेंगे और उसको चर्चा करेंगे, इसका मौका आपको बच्चों को देना होगा। हम सब मानते हैं कि क्लास का समय जो है निर्धारित होता है, लेकिन उसको हम कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाने के लिए आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, यानी जो भी विधि पाठ में दी गई है उसको हम एक टीचिंग एड के माध्यम से बता सकते हैं, बच्चों का समावेश कर सकते हैं क्लास में, बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात बताएं, एक चर्चा करने का मौका मिले उनको, साथ ही साथ उनको हम डिबेट करने का मौका दें। और अगर हमने कोई पाठ के बारे में बताया, सभ्यता और संस्कृति मान लीजिए हमारे पाठ है, तो हम बच्चों को आसपास के जो ऐतिहासिक स्थल हो या हम बच्चों को भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं, तो उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं, यानी उनको विजिट कराने की बहुत जरूरी
1: उनको जरूरत है, उनको
0: लेके जाएं। और हमारा प्रयास ही होता है कि मान लीजिए गांव में कोई अच्छा आर्टिजन है या कुम्हार है, लोहार है, इनसे बच्चों का जुड़ाव होना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि ये जो कार्य है, ये कार्य कितने मुश्किल हैं और इनकी जो उन्होंने चीजें बनाई हैं वो आम जीवन से कैसे जुड़ा हो, और इससे बच्चों का जुड़ाव संस्कृति से भी होगा, कार्य से भी होगा, अर्थव्यवस्था से भी होगा। तो आप देखिए, आपने एक लिंकेज बताया, इंटरडिसिप्लिनरी भी बताया, बच्चों को अपने स्थानीय परिप्रेक्ष्य जोड़ने की कोशिश की, और साथ ही साथ पाठ को रुचिकर बनाया। बच्चों के अंदर बहुत जिज्ञासा होती है, सपना होता है उनके मन में, और ये आप ही कर सकते हैं। विषय को इतना रुचिकारक बनाइए कि बच्चों को लगे हाँ, समाजशास्त्र में है जिससे हम अपने जीवन को जोड़ सकते हैं। बच्चों के अंदर प्रोजेक्ट बनाने की बहुत जिज्ञासा होती है, मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, और जब भी मेरे क्लास में कोई विषय मुझे अच्छा लगता था तो मैं सोचती थी कैसा प्रोजेक्ट बनाऊं, क्या पेंटिंग करूं, क्या एक प्रोजेक्ट ऐसे ही बनाऊं, या ऑडियो वीडियो बनाऊं। तो ये सारी चीजें अगर उनके मन में आ जाती है तो इसका मतलब वो एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और जब ऐसा होता है तो समाज का जो अन्य विषय है उससे भी जुड़ाव होता है। इसीलिए आप देखेंगे 6 से 8 की जो पाठ्य पुस्तक है वो एक है, इट इज वन टेक्स्ट बुक, और इस टेक्स्ट बुक की जो विशेषता ये है कि वो जितने भी विषय हैं उसको पिरो करके एक पाठ बुक में बनाया गया है, और इसको आगे करते हुए, क्योंकि आप पे बहुत दायित्व है कि आप इसको कैसे बच्चों तक पहुंचाएं, जब उनको इन सारे विषयों से जोड़िए, पिरोइए और उनके जीवन से जोड़िए, और ये बताने की कोशिश करिए कहाँ थे और हम कहाँ आ गए
1: जी,
0: ये बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी एंड चेंज
1: जी। अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे कि हम ये जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं की ओर से कि इस पुस्तक में, यानी समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, इसी पुस्तक की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस पुस्तक में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है, हम ये जानना चाहेंगे।
0: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अजीत जी,
1: जी
0: मैं बताने की कोशिश करूंगी कि हमारी पाठ्य पुस्तक में महिलाओं को जहां जहां उन्होंने योगदान दिया है उसको समावेश किया है, और उन्होंने बॉक्स आइटम में भी दिया है, लेख में भी उनका विवरण किया है, और जहां जहां समाज में अपना योगदान दिया है उसके बारे में भी दिया है। जैसे आप ले लीजिए हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 में जो महिलाओं के बारे में दिया गया है, जैसे कि गार्गी जी के बारे में बताया है, वंदना बहादुर मैदा के बारे में दिया गया है, जो एक सरपंच थी अपने गांव की और उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया था। इसी तरह कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में कनगी महारानी के बारे में बताया गया है और प्रभावती गुप्ता जी के बारे में भी इस पाठ में दिया गया है। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में मुतम्मा के बारे में बताया गगया है, और हमारी कक्षा 8 की पुस्तक में रानी दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई होलकर, रानी अकब्बा, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, इन महिलाओं का योगदान जिस जिस क्षेत्र में किया है उसके बारे में दिया गया है। और अगर आप हमारी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक देखें तो आप देखिएगा कि कक्षावार जहाँ जहाँ महिलाओं ने योगदान दिया उनके बारे में चर्चा किया गया है और ये क्यों किया गया है, ताकि आपको भी प्रोत्साहित किया जाए, ताकि आप एक खोज करिए कि ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज में गहन योगदान दिया है पर कुछ कारणवश, जिनको हम कहते हैं लेसर नोन, उनके बारे में भी आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, ताकि आपको खुद एहसास होगा कि जब भी समाज विकास के रास्ते पे चला महिलाओं का योगदान हमेशा ही रहा। और आज भी आधुनिक भारत में भी आप देखिए कि हमारी महिलाएं किन किन क्षेत्र में कामयाबी के ढंग से अपना योगदान दे रही हैं। आर्मी में भी देख लीजिए, नेवी में देख लीजिए, पायलट देख लीजिए, जिनको पहले हम कहते थे अनकन्वेंशनल रोल,
1: कार्य के किसी भी क्षेत्र में आजकल महिलाएं देखी जा सकती हैं,
0: सभी क्षेत्र में
1: जी
0: उनका योगदान है। और हम बहुत गर्व के साथ भी कहना चाहते हैं कि हमारी एक पाठ्य पुस्तक फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग के में जब भी पुस्तक आप उठाइए तो खेल के क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है वो बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। तो आप देखिए कि पाठ्य पुस्तक में विजुअल कंटेंट में महिलाओं का समावेश है, जिसको हम कहते हैं जेंडर इंक्लूसिवनेस।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर गौरी जी कि आप हमारे स्टूडियो में आई और एनसीईआरटी की इस विशेष पाठ्य पुस्तक के बारे में आपने बड़े विस्तार से जानकारी दी। तो श्रोताओं की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारी आशा है कि इसके द्वारा हमारे श्रोता बहुत लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद अजीत जी, आपने मुझे मौका दिया। हम अपने सारे श्रोताओं का धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे सुना, पर मैं और धन्यवाद आपको दूंगी जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़िए और एक यात्रा में जाइए कि हम और इसको अपने जीवन से कैसे जोड़ें। तथ्यों को एकत्रित करिए और कोशिश करिए कि पाठ में आप और क्या जोड़ सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से। धन्यवाद सभी को, आपको अजीत जी
1: धन्यवाद। तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोता संवाद। तो अब सुनते हैं आज का अगला शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है आम का पेड़।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बच्चों को पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया है तथा बताया गया है कि मात्र पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी लगातार देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है।
0: आम का पेड़।
2: गर्मियों के दिन थे, सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे, सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा,
3: ऐसे ही मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा।
2: उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। वहां आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोंपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा।
3: अरे वाह, पौधा निकल आया।
2: कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला,
3: ये पौधा मैंने लगाया है, ये आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे।
2: दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले,
4: क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो।
2: प्रिया बोली,
5: पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे का आम खाएंगे।
2: उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे, वे प्यार से बोले,
4: अरे बच्चों, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में ये एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे।
2: ये सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला,
3: कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे, एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे।

0: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आम का पेड़।
1: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
2: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
0: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
0: मुकुल सिंह,
3: वीरेंद्र
0: और हमारी आज की विशेषज्ञ
3: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक थे NCERT। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: जोहार रांची, जोहार रांची कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत
1: के साथ आपकी दोस्त कार्यक्रम की होस्ट राजश्री।
0: आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: बिल्कुल नमस्कार है और जोहार है। तो कृति, आज हम जोहार रांची कार्यक्रम की शुरुआत जैसे हम हमेशा करते हैं कि एक अच्छी सी बात हम अपने श्रोताओं को बताते हैं। आज कैसे हम शुरुआत करें इसकी?
0: बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। और आपको पता है जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? लेकिन नहीं, सबसे जरूरी चीज है समय, क्योंकि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है।
1: सही कह रही हो कृति, धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन अगर समय एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर लाख कोशिशों के बाद भी वो वापस नहीं आता। इसलिए अनमोल पूंजी है कृति।
0: बिल्कुल, और इसीलिए हमें समय के साथ साथ अपने रिश्तों की भी कदर करनी चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल,
0: हम अक्सर उन लोगों को पीछे भाग हम उन लोगों की अहमियत भूल जाते हैं जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं।
1: सही बात है, ये आज के समय में इतनी जरूरी बात है कि हम जैसे जैसे आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं कृति, हम अपने इसका परिणाम है कि हम देख रहे हैं समाज में जो एकाकीपन है, जो अकेलापन है, वो बढ़ता जा रहा है।
0: बिल्कुल, और कभी कभी हम अपनों को अपना समय नहीं दे पाते और फिर एक दिन महसूस होता है कि समय तो निकल गया।
1: सही बात है, जिंदगी में जब सब साथ रहते हैं उस समय हमारे पास वक्त नहीं होता उनके साथ समय बिताने के लिए, और जब वो नहीं रहते हैं तब हमें उनकी अहमियत पता चलती है।
0: बिल्कुल, और समय और रिश्ते दोनों ही बहुत अनमोल हैं। इनकी कीमत तब मत समझिए जब ये आपके पास ना रहे। यानी जिंदगी की असली खूबसूरती बड़ी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी पलों में है जो हम अपनों के साथ बिताते हैं।
1: बिल्कुल, इशारा तुम्हारा हम समझ गए हैं। एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा गाना हम सुनाने वाले हैं अपने श्रोताओं को। चलो सुना दो।

0: एक तारीख अपने अंदर इतिहास की कई कहानियां समेटे होती है। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि आज के दिन यानी 5 अक्टूबर को किन खास घटनाओं का गवाह रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो आज ही के दिन 2011 में एप्पल के पूर्व मुख्य कार्यकारी और सह संस्थापक स्टीव जॉब्स का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। और आज ही के दिन भारत में दुनिया का सबसे सस्ता 2250 रुपए का टैबलेट पीसी आकाश लॉन्च किया गया।
1: ये तो बहुत ही जानकारी वाली बात है। और इसके साथ ये हम बताएंगे कि 2008 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सेतु समुद्रम परियोजना के लिए दूसरी जगहों का परीक्षण शुरू किया था आज ही के दिन। और 2007 में नेपाल सरकार और माओवादियों के बीच समझौता न हो पाने के कारण संविधान सभा के लिए चुनाव रद्द हुआ और परवेज मुशर्रफ और बेनजीर भुट्टो के बीच समझौता हुआ था। और आगे की बात
0: और 2004 में पश्चिम एशिया पर
1: स्लाविया के राष्ट्रपति मिलोसेविच के खिलाफ विद्रोह हुआ था। और 1999 में आज ही के दिन भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी पर होने वाली विशेष बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया था। और साथ ही अगर हम 1997 की बात करें आज ही के दिन की, तो राजधानी कंपाला से नील नदी को स्रोत जिंजा में प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस तथा महेश भूपति ने जिम कुरियर तथा एलेक्स ओ ब्रायन को पराजित कर चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता था।
0: तो ये थे इतिहास के दिलचस्प पन्नों को, अब थोड़ा सा यहीं रोकते हैं और सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।
1: और तुमने बताया भी कि खुश मिजाजी में आज हाँ हाँ। के दिन भारत को चौथा स्थान मिला था, तो थोड़ी सी खुशियां और देते हैं हम अपने श्रोताओं।
0: बिल्कुल।

0: यदि माँ एचआईवी से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को एचआईवी का संक्रमण हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की एचआईवी जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को एचआईवी के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0097 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: बिल्कुल, हम अपने इतिहास की बात कर रहे हैं और इतिहास का जो एक और पन्ना होता है, श्रोताओं को ये बताना होता है कि आज के दिन, यानी आज तो है 5 अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर के दिन किन महान हस्तियों का जन्म हुआ था और किन का निधन हुआ था, ये भी हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम बताते चलें कि आज के दिन किन का जन्म हुआ था।
2: तो आज ही के दिन 1954 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता तथा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ गुरुदास कामत का जन्म हुआ था। और 1950 में आज ही के दिन पुडुचेरी के 6वें मुख्यमंत्री वी वेंथिलिंगम का भी जन्म हुआ था आज ही के दिन।
1: और हम जन्म की बात बता रहे हैं तो आपको ये जरूर बताएंगे कि आज ही के दिन यानी 5 अक्टूबर को 1936 में हितेश्वर साइकिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो 2 बार असम के मुख्यमंत्री रहे थे, उनका जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1934 में चो रामस्वामी भारतीय अभिनेता, हास्य कलाकार, राजनीतिज्ञ, व्यंग्यकार, नाटककार और फिल्म निर्देशक तथा अधिवक्ता थे, उनका जन्म हुआ था। एक और जन्म राम चतुर मल्लिक, ध्रुपद थमार शैली के गायक थे, उनका जन्म आज ही के दिन 1902 में हुआ था।
2: बिल्कुल, और आज के दिन समाज सुधारक तथा स्वतंत्र सेनानी किशोरी लाल मशहूर वाला का भी जन्म हुआ था 1819 में। तो ये थे प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम जिनका आज के दिन जन्म हुआ था। तो अब आगे बढ़ने से पहले
1: हम उनको हैप्पी बर्थडे कहते हैं और एक उनको उनके लिए उनको समर्पित एक हम गाना सुना देते हैं।
2: बिल्कुल।
3: तुम्हें या चुप रहूं
2: ना,
3: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है?

0: चलिए, बहुत अच्छा गाना सुनाया कृति तुमने अपने श्रोताओं को। तो जन्म की बात हमने की है और हमें अब आज बताना है कि आज
1: आज ही के दिन 2003 में भारत के पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी विल्सन जॉन्स का निधन हुआ था और 1981 में आज ही के दिन हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार भगवती चरण वर्मा का भी निधन हुआ था। 1937 में आज के ही दिन हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार लेखकों में से एक दुर्गा प्रसाद खत्री का भी निधन हुआ था और 1805 में फोर्ट्स विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस का भी निधन आज ही के दिन हुआ था।
0: बिल्कुल, ये सारी जो मुख्य बातें हमने बताई हैं, और आज के दिन का ये भी बताना जरूरी है कि कौन सा मुख्य मतलब दिवस आज के दिन हम लोग मनाते हैं, जिसमें कई सारे दिवस हैं। तो मैं शुरुआत करूंगी विश्व शिक्षक दिवस से। श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि 5 अक्टूबर को हर साल विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे हम सभी मिलकर मनाते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो शिक्षकों के समर्पण कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके

0: गया था और इस सभी के कहते हैं जो थीम दिया जाता है
1: अच्छा
0: और दुनिया भर के शहर हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त करना ही।

वर्ल्ड स्पेस डे भी हम सभी जहां सितारे सिर्फ चमकते नहीं है बल्कि इंसान भी वर्ल्ड स्पेस डे भी मना रहे हैं और साथ ही ऐसा मुद्दा है श्रोता भी समझ रहे हैं कि एक ऐसा जो ये ना जो है ये जो है समाज कहते हैं हम जरूर बताना चाहेंगे कि वाइल्ड लाइफ वीक हम सब मना रहे हैं, वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह हम सब मना रहे हैं और हम सभी जानते हैं, हमारे श्रोता भी जानते हैं कि हमारे वन्य प्राणी का हमारे पर्यावरण की जब हम बात करते हैं, अपने इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उनकी क्या भूमिका है ये हम सभी जानते हैं और जिस तरह से उनकी संख्या कम हो रही है ये बहुत जरूरी है कि हम उनकी संख्या को बढ़ाएं, उनका ध्यान रखें और ऐसे ही उद्देश्यों के साथ हम सब वाइल्ड लाइफ वीक भी मना रहे हैं। तो अगले मुद्दे पर हम चलेंगे लेकिन गाना तो सुना दें हम अपने श्रोताओं को।

Então, Akashwani, जी, और अब चलिए हम आपको ले चलते हैं। जल की खेलियां हैं और आदिवासी संस्कृति आज की हमारी मंजिल है का और

0: व्यक्ति प्रेमियों के लिए किसी तस्वीर से बना या बांध चारों ओर क्या हुआ कि सुना दृश्य कैमरे में कैद करने लायक लगता है। और अब बता देते हैं हमारे श्रोताओं को कि यहाँ पे पहुंचना कैसे है। अगर आप सबसे सुविधाजनक विकल्प है उनका से लगभग आधे से एक घंटे की यात्रा जो और यात्रा
1: जाते हैं वहां पे समय और है तो आपको दो रेल और से आने हैं पहले उनका जरूर सोच रहे होंगे। तो आपको बता दें कि मसानजोर की सबसे बड़ी खूबसूरती है पानी और पहाड़ों का संगम। यहां पहुंचकर कुछ समय सिर्फ प्रकृति के साथ बिताइए, जलाशय के विस्तृत विस्तार को निहारिए, आसपास के पहाड़ियों और हरियाली का आनंद लीजिए और सूर्यास्त के समय इस जगह की खूबसूरती को महसूस कीजिए। और अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो मसानजोर आपके कैमरे के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
0: बिल्कुल। और हाँ, प्रकृति की इस खूबसूरती का आनंद लेते हुए पर्यावरण की स्वच्छता का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और कितने दिन का आप यहाँ पे ट्रिप कर सकते हैं ये भी हम बता देते हैं। तो अगर आपके पास कम समय है तो एक दिन में दुमका से मसानजोर का डे ट्रिप किया जा सकता है। लेकिन लेकिन अगर आप झारखंड को सिर्फ घूमना नहीं बल्कि महसूस करना चाहते हैं तो 2 दिन और 1 रात का कार्यक्रम बेहतर रहेगा। पहला दिन दुमका पहुँचे, शहर और आसपास के क्षेत्र को देखें और मसानजोर की ओर निकले। मसानजोर में प्रकृति के बीच समय बिताए और शाम तक वापस दुमका लौटकर रात्रि विश्राम कर सकते हैं।
1: और साथ ही जो ये बहुत सारी बातें हमने बताई हैं कि कैसे पहुंचें, कैसे यात्रा करें, कितने दिनों का ट्रिप हम बना सकते हैं, तो अगली बार श्रोताओं जब भी आपका मन कहे कि कहीं दूर निकल चले तो जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे राज्य का टिकट ही लिया जाए, है ना। कभी अपने ही झारखंड की ओर चल पड़िए जहाँ पहाड़ कहते हैं ठहरो, नदियां कहती हैं बहते रहो और जंगल कहते हैं कि प्रकृति के करीब आओ। और दुमका का मसानजोर आपको शायद यही कहेगा, एक बार आकर तो देखिए, यहां मंजिल से ज्यादा खूबसूरत है सफर। तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ अगली यात्रा का प्लान बनाइए और निकल पड़िए दुमका और मसानजोर की ओर। तो चलिए अब चलते चलते एक प्यारा सा गाना आपको सुनवाते हैं।

0: Y Hannah, most बादलों में ढल जाता है और कभी कभी हवाओं के संग की खुशी होती है। तो हम की बात करने जा रहे हैं जिसका असर हमारे मूड से दिनचर्या तक चेहरे पर ले आते पर छाए बादल उम्मीदें जगा देती है और भी बारिश की हम एक नया पैगाम हमें दे जाता है। कभी हमें एहसास हो रहा हमारे मौसम का
1: बीस डिग्री और आज के साफ

ਪਿਆਰਾ ਸਮਾਂ।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जुहाराची। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर और अब बातें करते हैं खेल खबरों की। तो हमारे श्रोताओं को बता दें कि रविवार को आईजी नागोया एशिया खेलों का समापन हो गया। 2 सप्ताह से अधिक समय तक चली कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद एशिया के 45 देशों के खिलाड़ी इस समय भाग लिए थे।
1: बिल्कुल, और इसमें पड़ोसी देश जो हमारा है चीन के भी पदक जो है वो घट गए, क्योंकि आपको बताएं श्रोताओं कि चीन ने पिछली बार जीत से 200 से अधिक गोल्ड जीते थे और इस बार सिर्फ 169 से ही उनको संतोष करना पड़ गया। और पाकिस्तान के 165 खिलाड़ी उन्होंने खेला इसमें, लेकिन मगर सोना एक भी नहीं जीत पाए। बांग्लादेश और नेपाल की भी झोली खाली रह गई। और भारत और पाक क्रिकेट और हॉकी मुकाबलों में जो दर्शकों की जो भीड़ थी ना, वो बिल्कुल रिकॉर्ड भीड़ थी। और ये भी बता दें कि जसपाल राणा और राणा रणधीर सिंह पुरस्कार जीता। कुछ कुछ बता दो जल्दी से।
0: और प्रवी को गोल्फ संघ देगा 10 लाख रुपए का इनाम और पुरुष हॉकी टीम के सदस्य को मिलेगा 11 11 लाख का इनाम।
1: हाँ हाँ, और का टिकट हासिल करना था लक्ष्य और उन्होंने इस लक्ष्य को पूरा भी किया है। अब चलो हम अपने कुछ बाइट्स के रूप में कुछ हम और बता दें।
0: एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम को 44 साल के बाद स्वर्ण पदक दिलाने वाली झारखंड की 4 बेटियों का रविवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया था।
1: और राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम भी घोषित हो गई है। और ये भी बताएं कि गेंदबाजी की भी कुछ बात करें, मुकेश और आकाश की घातक गेंदबाजी, भारत ने जम्मू कश्मीर को हराकर ईरानी कप जीत लिया है और रांची बनी 22वीं झारखंड राज्य जूनियर वुशु चैंपियन। तो ये बहुत सारी बातें हमने बताई हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे और खेलों की दुनिया में तो सब लोग जाना चाहते हैं। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है?
0: बिल्कुल, आप तो सही कह रहे हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को एक प्यारा सा गाना।
1: बिल्कुल, इसका इंतजार भी होगा हमारे श्रोताओं को।

0: तो धीरे धीरे कृति घड़ी देखो, मतलब हम लोग अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, और ऐसे में बहुत सारी बातें हमने की हैं, कई विषयों पर हमने अपने श्रोताओं को जानकारियां दी है, लेकिन अगर उनके हेल्थ के बारे की बात नहीं करें, उनके अच्छे स्वास्थ्य की बात ना करें, तो ये फिर अधूरा हो जाएगा।
1: हाँ बिल्कुल। और अक्टूबर के इस मौसम में अक्सर बारिश, नमी, दिन में गर्मी और सुबह शाम हल्की ठंडक का मिश्रण रहता है, तो ऐसे बदलते मौसम में हेल्थ टिप्स तो बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और कहते भी हैं कि कदम कदम पर जहां मौत इंतजार करे, बड़ा मजा है अगर हम जिंदगी की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें।
1: बिल्कुल। तो हम हमारे श्रोताओं को बता दें कि ऐसे मौसम में प्यास कम लगे तो भी आप दिन भर पानी पीते
0: हाँ,
1: रहें।
0: एक बार में ना पिए पूरा, थोड़ा
1: हाँ,
0: थोड़ा थोड़ा
1: आप
0: थोड़ा
1: थोड़ा थोड़ा
0: करके। और
1: करके।
0: ये भी बताना जरूरी है कि जो हम लोग पानी की बात करते हैं, माने यानी कि लिक्विड इनटेक की बात करते हैं, तो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ सादा पानी ही दिन भर पीते रहे। आप किसी भी रूप में, मतलब लिक्विड का सेवन करते रहे,
1: हाँ
0: चाहे वो आप जूस के रूप में कर रहे हो, सूप के रूप में कर रहे हो, किसी भी तरह से पानी का जो लिक्विड की मात्रा है आपके शरीर में, वो सही होनी जरूरी है।
1: हाँ बिल्कुल। और बहुत ठंडा पानी ना पिए या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब सीमित ही रखे तो अच्छा
0: हाँ, और
1: रहेगा।
0: ये सिर्फ इस मौसम के लिए नहीं है,
1: हाँ, ये
0: ये
1: हर
0: हर
1: मौसम
0: मौसम
1: के
0: में आपको
1: लिए।
0: बिल्कुल ध्यान रखना है।

0: जहाँ तक बहुत ठंडी और बहुत गर्म की बात होती है तो हेल्थ पर असर पड़ता है, और हेल्थ यानी हर अंग पर असर पड़ता है, और दांतों में जो कनकनाहट होती है ना उसका भी जो है बढ़ना बिल्कुल मतलब ज्यादा हो जाता है इसमें।
1: हाँ, और ताज़ा और हल्का ही खाना खाएं, जैसे दाल, सब्जी, रोटी, खिचड़ी, आप सूप पी सकते हैं, ये सब आप खा सकते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: मतलब कहने का मतलब है कि जो भी खाएं हेल्दी खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं और ताजा खाएं। बासी
1: हाँ
0: चीजों से तो भी हमेशा ही
1: हाँ
0: बचना है।
1: दूरी बना के रखनी
0: जी
1: चाहिए। और इम्यूनिटी और पोषण के लिए अमरूद हो गया, आंवला, संतरा, पपीता, ये सब फल आप शामिल कर सकते हैं अपने डाइट
0: हाँ,
1: में।
0: और इस मौसम में आप बाजार में देखो जाकर इतने तरह की सब्जियां और इतने तरह के फल मिलते हैं, जो अभी आपने जितना भी नाम लिया है उनसे कहीं भी अधिक और फल मिलते हैं। तो जितना भी फलों और सब्जियों का हम या तो आप साबुत खाएं या उसका जूस लें, हर तरह से ये हमारे लिए पौष्टिक होंगे।
1: हाँ, और जैसे बारिश और नमी में तो बाहर का कटा हुआ फल नहीं खाना चाहिए, और ज्यादा तला भुना भी खाने से बचें।
0: बिल्कुल,
1: और पसीने या बारिश में कपड़े गीले हो जाएं तो जल्दी ही बदल लें, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक गीले कपड़े पहने रहेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल बीमार पड़ सकते हैं, और इसका असर सिर्फ अंदर से ही नहीं बाहरी त्वचा पर भी दिखाई देती है। कई तरह की त्वचा संबंधी परेशानियां भी होने लगती हैं अगर ज्यादा देर तक अपने बॉडी को हम मॉइस्ट रखते हैं, भिगा कर रखते हैं।
1: हाँ, और मौसम बदलने पर सर्दी जुकाम तो होती ही है, और इसलिए जरूरी है कि आप अपनी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें और हल्का फुल्का आप एक्सरसाइज भी करें।
0: बिल्कुल, नींद की बात जब चली है तो ये हम निवेदन करना चाहते हैं, ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे सभी श्रोताओं से कि जो मोबाइल या जो हम कंप्यूटर पे जो अपना हम स्क्रीन टाइम जो हमारा बढ़ रहा है उससे बचें, क्योंकि वही एक कारण है जो हमारी नींद में भी कमी ला रहा है। रात रात भर जाकर लोग स्क्रीन टाइम बढ़ाते हैं अपना, और पूरे हेल्थ पर तो असर पड़ता ही है, नींद पर असर पड़ता है। और जब नींद पूरी नहीं होती है तो फिर आप पूछ लीजिएगा किसी से भी, किसी भी डॉक्टर से आप पूछिएगा कि कितनी भी तरह की परेशानी जो होती है वो स्वास्थ्य संबंधी हो सकती है।
1: हाँ बिल्कुल, तो अब वक्त हो चुका है हमारे
0: हाँ
1: श्रोताओं से
0: हाँ
1: विदा लेने का।
0: हाँ हाँ तो विदा लेते हैं, लेकिन चलते चलते एक गीत सुना दो, ताकि जो हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं बिल्कुल खुश रहेंगे, हम
1: बिल्कुल
0: गाने वाने
1: बिल्कुल
0: सुनते रहेंगे तो ऐसे ही मन हरा रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। तो एक बार विदा ले लेते हैं और उसके बाद गाना बजाकर हम लोग
1: हाँ
0: विदा
1: हाँ
0: कर लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, तो जोहार रांची के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पूरे कार्यक्रम में साथ बने रहे। तो मेरा राजश्री का
1: और कृति का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम में 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर। साथी श्रोताओं, आप हमारा ये कार्यक्रम सुन पा रहे हैं 100.5 एफएम पर भी। तो चलिए अगला कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं हम, आपकी पसंद का। आपकी पसंद कार्यक्रम में ये रहा पहला गीत।

यहाँ ये नगमा है अरिजीत सिंह की आवाज़ में। दिया है मिथुन ने ही, और फिल्म का नाम आशिकी 2।

भी सुन रहे थे और इस गाने को पसंद किया था आप सब श्रोताओं ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। साथ ही इसी गाने को सुनना चाहा था रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू और लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, ततरेंगी से भागवत वर्मा। अगला गाना आपको हम सुनवा रहे हैं।

अगली फरमाइश आप सबकी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा साथ ही इसी गाने को सुनना चाहते हैं। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, सरिता गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर और कुमार ध्वनि गवाड़कर परी। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म दबंग 2 का ये नगमा, जिसके संगीतकार हैं साजिद वाजिद और गीतकार हैं समीर अनजान। इसके गायक कलाकार हैं राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल। तो लीजिए सुनिए दबंग 2 का ये नगमा आप सबकी फरमाइश पर।

अगला गाना हमने लिया है फिल्म लुटेरा से, आवाज मोनाली ठाकुर की है, संगीत अमित त्रिवेदी का और इसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने। इस गाने को पसंद किया है आप सब श्रोताओं ने। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी रॉय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। इसी गाने को सुनना चाहते हैं शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। तो लीजिए सुने आप सबकी पसंद का ये नगमा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। अगली फरमाइश आप सबकी है। बड़ा बाम्बो गांव सुपाही साही से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, निशा प्रकाश, ललित प्रधान, किरण केशरी, राजकुमार केशरी, श्याम देव नायक और देवेन जी। चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बरमाली बेसरा, बसंती, अनु, सिद्ध कुमारी और पूजा। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म काइट्स का ये नगमा जिसे गाया है केके ने। संगीतकार हैं राजेश रोशन और गीतकार नासिर फराज। तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये नगमा।

फिल्म इश्किया में अभी आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज को, संगीतकार थे विशाल भारद्वाज। और इसी गाने के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 12 बज रहे हैं और इस वक्त आप सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। और आज का गृहलक्ष्मी कार्यक्रम आपके लिए होगा नागपुरी भाषा में।

0: कार्यक्रम सुनुइया सब श्रोता बहन मन के सुमन बहन कर जोहार। आसरा करीला रावरे मनक सब हाल खबर नगद नगद होवी और संगे हैं वंदा बहन राउर को हो जोहार।
1: कार्यक्रम सुनवैया सब बहन मन के वंदना बटले जोहार और सुमंदिर और कोह जोहार। कहो कैसन हाल समाचार है?
0: हमर बटे तो सब बेसे बेस है वंदा बहिन। और एगो बात एहो कहे चाहे ला कि हमरी के जी बहिन मन जे है ओहो मनक तो खबर भेस होवे करी और साथे साथे देखो कि उमन जे है स्वावलंबी बने और विपरीत परिस्थिति के पार करके हर चुनौती कर बीच में खुद ले अपन राह के चुनाए। और ई तभे संभव है जब गोटा विश्व कर बालिका बेटी नारी हमरे का जो है वो शिक्षित होवे। और शिक्षा एगो ऐसा हथियार है जेकर बिना कोई भी देश प्रगति उकर अधूरा है। और जब हमरे एगो लड़का के पढ़ाई ला तो खाली एगो व्यक्ति के शिक्षित करी ला, लेकिन जब हमरे एक बालिका के शिक्षित करी ला तो गोटा परिवार और आवे वाला कई एक गुपीढ़ी जो है से शिक्षित होवेला।
1: एकदम सही कहली रौरे सुमन बहन। और देखो नी, शिक्षा पाए के कोनवे बालिका न केवल अपन माए बाबा के घर कर नाव रोशन करेला, बल्कि दूगो खुल कर नाव भी उमने रोशन करेना। संगे भविष्य में एगो बहुत ही समझदार माय और जीवन संगनी बन के गोटा समाज के उ दिशा देवेला। शिक्षा बालिका के आपन अधिकार कर बटे जागरूक करेला और समाज में सम्मानजनक पहचान भी उमन के देवेला। आजकर आधुनिक जो युग है उकर में बेटी के शिक्षित करे खाली एगो सामाजिक जिम्मेवारी ना लगे, बल्कि एगो सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण ले सबसे जरूरी है। कोनवे देश का प्रगति तब तक अधूरा है जब तक उकर आधा आबादी यानी कि बालिका छोवा के शिक्षा कर समान अवसर नहीं मिले।
0: एकदम सही कहली वंदना बहिन। और देखो कि शिक्षा तो जरूरी है ये है और हर बेटी कर अधिकार इकरे से बदलेला। और जो पूरा संसार है बालिका शिक्षा के बढ़ावा देवेक और बेटी मन के बेहतर ढंग से बेस से शिक्षित करेक में एगो शिक्षक कर अहम भूमिका भी होवेला, है नी? और सबसे बगरा एक शिक्षक कर ही भूमिका रहेला। एगो शिक्षक ना खाली किताबी ज्ञान देवे ना, बल्कि हमरे कर समाज के रूढ़िवादी दक्यानुसी सोच के भी बदल के हमरे बालिका छुआ मन के एक सुरक्षित और प्रेरणादायक माहौल ले तैयार करेला। शिक्षक बालिका के हर गतिविधि जैसे कि उकर खेल कर क्षेत्र में, विज्ञान और भाषण के भी क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएना और सम्मान अवसर भी देवाना। विशेष करके महिला शिक्षिका ग्रामीण और पिछड़ा जे भी क्षेत्र है हुआ बालिका मन ले एगो आदर्श उदाहरण भी हैं। उ मन के देख के लड़की मन के भी एक विश्वास जागेला कि उ मन भी पढ़ लिख के एगो आत्मनिर्भर बन सके ना। और जे अपन शिक्षिका मन है चाहे और मन है उ मन तरी आगे बढ़ के अपन ने स्वावलंबी बन सकेना।
1: एकदम सही कहली रौरे। और संगे देखो नी, शिक्षक मन के सहयोगात्मक जे व्यवहार है उ भी रखे के चाही। शिक्षक के बालिका मन के कोनवे झिझक के भी समझाइक चाही। देखो नी, कोनो कोनो जगह हमरे मन देखीला कि मैया मन अपन बात के खुल के नी बोले पारे ना, तो ऐसन में शिक्षक मन के उमन कर संगे एकदम दोस्त नियर व्यवहार करे के चाही, जेकर से उमन के एकदम बिना किसी डर कर उमने सवाल पूछे पारबे। और देखो खाली किताब कर ज्ञान तो होवे काफी नखे, शिक्षक मन जब बालिका मन कर आत्मरक्षा, डिजिटल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता जैसन व्यवहारिक कौशल के भी जरूर मन के सिखाए के चाहिए। और देखो कक्षा में भी बालिका मन के भारत और गोटा विश्व कर सफल महिला मनक उदाहरण भी जरूर मन के देवे के चाहिए, जैसे कि होलक कल्पना चावला, मेरी कॉम, सावित्री बाई। और ई मने जे सफलता कर कहानी कैड है उके उमन के जरूर सुनाए के चाहिए, जेकर से कि बालिका मन कर उत्साह बढ़ी, हौसला बढ़ी और सपना उमन भी देखवे अपने के आगे बढ़ाई कर। और जीवन में कामयाबी हासिल करे के लिए अपने के उमने आत्मनिर्भर बनाए के लिए लागल रहबे।
0: सही कहली एकदम। और जैसे कि नारी हम भी कर समाज कर आधा आबादी हैं और एगो बेटी कर शिक्षा गोटा समाज कर सुरक्षा लागिन शिक्षा जे है से महिला मन के मानसिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत बनायला, है नी?
1: सही कहली। और जखन बेटी मन आगे बढ़े ना तभे राष्ट्र कर विकास भी बहुत तेजी से होवेला। एगो बेटी कर शिक्षा गोटा परिवार और उ मन कर अधिकार के बटे जागरूक करेला, संगे आर्थिक समृद्धि भी मिलेला और समाज में उमन के बराबरी कर हक भी दिवायला, उकर माध्यम बनेला शिक्षा। उ संगे अपन परिवार के भी कुपोषण, अज्ञानता और

0: कौनवे तरह कर संकट से बचाए कर रास्ता भी निकलाए पारे ला।
1: सही गली। और आज कल दुनिया में शिक्षा जो है सबसे शक्तिशाली हथियार है, और माए बाबा मन अपन बेटी के अपन पुत्री के कहो कि बेहतर भविष्य खातिर उच्च शिक्षा सर्वोत्तम शिक्षा दिवाए ना, और इकर में सहायक भी बनत है। और शिक्षा कर मामला में जो बालक है और बालिका दुयो के बेटा बेटी के दुयो के सम्मान महत्व देख चाहिए, एक लख शिक्षा देऊ। और एगो बालिका कर शिक्षित होवे खुद के स्वस्थ के लिए भी, और कल्याण और आर्थिक सामाजिक विकास खातिर बहुत ही दरकार है इकर। और यह बालिका कैल कर महिला हो गए जे कि अपन परिवार कर रीढ़ भी बन गए।
0: बहुत बढ़िया बात है सुमन जी। और चलो एखन हमारे मन जैसे बात कर ली कि बालिका शिक्षा कतई जरूरी है, और में शिक्षक कर भूमिका कतई बड़ होवेला, तो शिक्षा है से जुड़ल चलो हमारे मन एगो लोकगीत सुनब नागपुरी में कालिंदी कुमारी और संगीमन कर गावल।

0: का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हाँ तो सुनवैया बहिन मन, हमरे मन सुन ली नागपुरी लोकगीत कालिंदी कुमारी और संगी मनकर गावल। तो चलो सुमन बहिन, हमरे मन कार्यक्रम के आगे बढ़ाईला और आज नागपुरी साहित्य में हमरे मन जानकारी करब झारखंड कर वाद्य यंत्र कर महत्व कर बारे में, और उकरे संगे हमरे मन जानब कि कै तरह कर वाद्य यंत्र यहाँ होवेला।
4: तो देखो,
3: चलो रावरे बोलो।
4: देखो कि हमरे कर जे संस्कृति है कर सबसे सुंदर पक्ष है वो है संगीत, है नी, और नर्तन गायन और वादन। झारखंड प्रदेश में मानव शिशु के धरती में गुड़ पड़ते ही कांसा कर थाल और घंट बजाए के स्वागत करल जाएला। शिशु बजाल जाएला, घंटा कर आवाज सुन ले है वो रुदन गायन शुरू कर देवेला, और गोटा गांव नगर के संदेश मिल जाएला कि हमरे कर हिया अखरा कर एगो और भावी कलाकार कर आगमन हो जाए। घर परिवार कर आदमी मन खुशी से नाच उठे ना। और झारखंड में देखो कि एगो कहावत भी हमरे के लिए प्रचलित है कि चलते हैं आवत ही बहुत दिन से कि चले नृत्य हके और बोले गीत, जखन गीत और नृत्य चलेला तो वादन उकर पाछे पाछे चलेला।
3: एकदम सही कहली। और झारखंड धरती कर सबसे पुराना भूखंड है, आदि मानव कर निवास स्थली भी एह है। तखने हिया आदि मानव और आदि मानव के अवशेष मिलेला। हिया कर संस्कृति बहुते पुरना है, इकर में आदिम संस्कृति कर गहराई छाप आज भी दिखेला। जंगल से गोटा झारखंड आवृत रहे आदिम मानव और आदिवासी कर रूप में क्रमशः इमने विकसित होलय। भाषा संस्कृति कर विकास होवे लागलक। जिंदगी कर घोर संघर्ष में ओ मन आनंद और खुशी ढूंढे लागले। तखने संगीत कर विकास शुरू होलक। अपन संघर्ष कर श्रम परिहार कर खातिर झारखंड कर आदिवासी सदान समुदाय में जंगल कर माझे गांव बसाल गेलक। खेत खलिहान भी बहुत सुंदर से सजाल गेलक, लेकिन जंगली पशु मन से बाचे खातिर उमने तेज ध्वनि उत्पन्न करे वाला बाजा मन के भी बनाले। नगाड़ा सबसे पहले बनलक। इकर तेज ढम ढम कर आवाज से उजे भयानक जीव जंतु मने रहे से मने भयभीत होवे लागले। फिर एह तरी ढाक ढोल ढोलक करस चोड़ चोड़ी रबका भैर नरसिंघा टमक आदि बाजा मन भी बनलक। एते एते बाजा कर आवाज से जंगल पूरा दहले लागलक। ई बाजा मनक ध्वनि में सुंदर लयबद्ध ध्वनि कान के बहुत सुख देवेला। गांव कर माझे अखरा भी उकर संगे साजे लागलक।
4: सही कहली। और ई जे वाद्य मन बनाए के लिए सदान मनक भिन्न भिन्न पेशा कर आदमी मन अपन कला के पीढ़ी दर पीढ़ी देख लागले, है नी। जैसे कि नगाड़ा बनाए के लिए लोहार कर उकर खोल के बनालक, और मोची मढ़े के लिए चमड़ा तैयार कर लें, और ताता और झोरा उके बांधे के लिए रस्सी देवेला, और जो महली है वो चमड़ा के ऊपरे लेप लगाएला और उके नरम राखे के लिए तेली तेल देवेला, है नी।
3: और देखो नी, झारखंड कर जे वाद्य मन है से बहुते पुरना है। यह आदिवासी सदान कर आदिम वाद्य के संस्कारित रूप या परिष्कृत रूप में शास्त्रीय वाद्य के आगे बढ़ालक। जैसे मांदर से पहले पूरब बटे मृदंग रहे और पश्चिम बटे पखावज कर रूप में उदाहरण करल रहे। कृष्ण कर हाथ कर बांसुरी मुरली रहे। छोटा नागपुर झारखंड क्षेत्र से प्रतीत हुएला। जैसे कि राम कर हाथ कर धनुष बाण भी यह झारखंड कर आदि मानव से आए रहे।
4: सही कहली। और देखो कि झारखंडी जे गीत संगीत में मांदर है, बांसुरी कर गीत कर प्राण भी कहल जाए है, है नी। इकर बगैर झारखंड कर जो संगीत कर आनंद अधूरा है। और वाद्य कर शिक्षा अखरा में धुमकुरिया वाद्य कर प्रयोग नहीं कराना। उमन घुंघरू ठेचका और ताल जैसन वाद्य के नृत्य कर संगे बजाए ना। बाकी वाद्य मन इतना भारी होवेला कि जैसे कि नगाड़ा ढाक ढोल बांसुरी मुरली सहनाई और जे मनम है केंद्रा भेलक टुहिला है जैसन हल्का वाद्य भी महिला मन ले वर्जित है। वाद्य संगीत कर प्रधान अंग है ताल। यह ताल उपरे गीत कर राग और नृत्य मुद्रा आधारित होवेला।
3: सही कहली सुमन बहन। और चलो कर बादे हमरे मन जानब झारखंड कर वाद्य यंत्र कर बारे में जेके की तीन गो श्रेणी में बांटल जाए है। लेकिन उकर से पहले चलो बहन मन के सुनाई लगो लोकगीत जानकी देवी और संगीमन कर गावल
4: लय सुनू तब।

0: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एखन हमरे मन सुन ली नागपुरी लोकगीत जानकी देवी और संगीमन करगावल। तो चलो सुमंदी, एखन हमरे मन कार्यक्रम के आगे बढ़ाईला और झारखंड कर वाद्य कर बारे में जानब। तो झारखंड कर वाद्य के तीन गो श्रेणी में बांटल जा है। पहला है तंत्र, तंत्री या ताल वाद्य। ई जे वाद्य हुएला उकर में रेशम कर डोरी, तांत, लोहा, तांबा या पीतल कर धातु कर तार के बांधल जाएला और इकर दू गो शाखा हुएला। पहला शाखा हुएला जे की रेशम कर पातर डोरी, तांत या धातु कर तार कर अंगूरी, हाथी दांत, स्ट्राइकर, लकड़ी से ऊ बाजेला, जैसे कि टोहिला, केंद्रा, भुड़ाऊ और भुड़ाऊ, गोपी यंत्र, एकतारा आदि मन। और ई वर्ग कर वाद्य में तार कर नीचे चमड़ा के मढ़ल जाएला और तार के घोड़ा कर केस से बनाल जाएला और धनुष से रेत के उके बजाल जाएला।
4: और देखो कि जे संकरा है या फूक है कर बजाइक वाला वाद्य यंत्र है नी, इकर में भी स्वर पूरक या कुछ से संगीत निकसे ला। इस श्रेणी कर वाद्य मन है बांसुरी, मुरली, मोहन बासी, तिरोयो, सहनाई आदि। इकर से गीत बजायल जायला और दोना जे वाद्य यंत्र में भई है से नरसिंघा, शंख, अकशंख और कुडुत आदि से मात्र ध्वनि निकलेला। घन या पीठ के रगड़ के या हिलाए के बजायक वाला जे वाद्य यंत्र है, इकर में है नगाड़ा, मांदर, ढोल, ढाक, ढोलक, ढोलकी और टमक, करह, रपका, चौड़ चौड़ी, डमरू, करताल, झांझ और ठेचका, घंट घंटी, रेगड़ा, घुंघरू, रामकाठी, सेकोए मन के भी आवेला।
3: तंत, तंत्री या तात वाद्य जे हुवेला उकर में सबसे पहले चलो जानब टोहिला वाद्य यंत्र कर बारे में। ई कोमल और मधुर आवाज निकलाइक वाला वाद्य हके। एकदम धीमा आवाज में एक गीत इकर से बजाल जाएला। ई वाद्य लेकिन आप बहुत लुप्त होते जाते और इके बजाइक वाला वादक मन भी बहुत कम रह जाए है। इके लगभग 4 फीट कर खोखला बांस कर लाठी ऊपरे बनाल जाएला और इकर मोटा भाग ऊपरे सूखल कद्दू कर खोली कर आधा भाग के काट के कसल जाएला। काठी कर ऊपरे रेशम कर मोट धागा से कद्दू कर जे खोल होवेला उकर भीतरे एगो अंगूठी से कैस देल जाएला।
4: और देखो कि लाठी कर जे दोसर भाग में घोड़ा या कुन में पशु पक्षी कर आकृति बनाए के जड़ल जाएला। ई आकृति कर ऊपरी भाग में रेशम कर डोरी 3 या 4 बार लपेट के बांधल जाएला, जेके हल्का खेसकाए के रेशम कर धागा के ढीला करल जाएला और इके रोंदा कहेना। और कद्दू कर जे काटल भाग के खुलल छाती में वादक सटाए के रखेना और शेष लंबाई के दाहिना हाथ से नीचे तिरछा रखेना। बाया हाथ से कद्दू कर तुम्भो बंधल जे भाग है उके नीचे लाठी के पकड़ल रहेला और डोरी के ओंगरी से दबाएला और उठाएला, जेके की संगीत कर जे ध्वनि कर है उकर अनुसार अपन छाती से बजायले, सटायला और उठायला।
3: और दोसर बटे दाहिना जे हाथ हुवेला उकर अंगुरी से रेशम कर डोरी के छेड़ेला, ऊपरे बाया हाथ कर अंगुरी से धागा के फिर दबाएला और उठायला और घर्षण कर चलते गीत कर अनुरूप आवाज उकर से निकसेला। इके बजाइक बेरा शांत वातावरण कर होवे के बहुत दरकार है और ई जे वाद्य यंत्र है सिके बेसी पुरुष मन बजायना। और चलो दोसर एगो वाद्य यंत्र है सारंगी। सारंगी 1.5-2 फीट लंबा, 4-5 इंच चौड़ा और 3-4 इंच मोटा काठी कर कलात्मक फ्रेम में बनल होवेला और इके भी धनुष या गज से बजाल जाएला। धनुष कर जे निचला भाग होवेला सेके उमने पकड़े ना और 2-3 गो घुंघरू कर में बांधल जाएला। रेतेक बेरा लचक देके उके बजाल जाएला। सारंगी कर धुन में घुंघरू कर आवाज भी सम्मिलित होवेला और इके भलार मन बहुते बढ़िया से बजायना और बनायना।
4: सही कहली। और देखो कि इस सोबे लोकप्रिय और कर्ण प्रिय जो हुए ला मानवीय आवाज नियर बुझायला और जोगी भेल साधु रसिक मन इकर उपयोग बहुते करे ना। गीत कर संगे और ई वाद्य से पुनावृत्ति के इकर एक एक गो सबक जो है साफ साफ सुनाई देवेला है नहीं।
3: तो चलो सुमन बहन, हमरे मन एखन जानकारी कर ली झारखंड कर वाद्य यंत्र कर बारे में, और आप हमरे मन जानब मातृ वंदना योजना। तो मातृ वंदना योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कर नाव से जानल जाएला। ये योजना कर तहत देश कर जे भी गर्भवती महिला मन है उमन के आर्थिक सहायता देवल जाएला, और ये योजना 2017 से शुरू करल गेलक। इके एगो केंद्र सरकार बटले चलाल जाते और उमनक योजना है जेके की महिला और बाल विकास मंत्रालय बट से शुरू करल जा है।
4: बिल्कुल, और देखो कि मातृ वंदना योजना जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बटले चलल है और मंजूरी भी के दिल जा है, और गर्भवती महिला मन के कुल 6,000 रुपया एकर में देवल जाएला। ई योजना कर तहत गर्भवती महिला कर खाता में नगद लाभ भी भेजल जाएला, और पहला बच्चा कर जन्म में 5,000 के 2 किस्त में देल जाएला, और दूसर छुआ अगर बेटी है तो बालिका कर जन्म पर 6,000 एक मुस्त देवल जाएला।
3: और ई योजना कर उद्देश्य गर्भवती महिला और स्तन पान करवाई वाला माए मन के आर्थिक सहायता देवे है। जच्चा बच्चा कर स्वास्थ्य और पोषण के सुधार करे, और गर्भावस्था कर बेरा जे मजदूरी या वेतन कर नुकसान होवेला उके आंशिक रूप से भरपाई करे, एकर उद्देश्य है।
4: सही कहे।
3: तो सुमन बहन, आप तो हमरे कर जाई कर बेरा होते, तो अगला सोमवार के हमरे मन फिर से बहन मन कर संगे गोठियाब। तब तक खातिर करू विदा।
4: जोहार, जोहार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम में 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही श्रोताओं, आप ये हमारा कार्यक्रम सुन पा रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर भी। दिन के 12:30 हो चुके हैं और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपके दोस्त, कार्यक्रम की होस्ट राजश्री। तो सुनिए ये पहला नगमा।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं राजश्री के साथ। ये नगमा जो अभी आपने सुना है, इसे गाया कुमार शानू और अलका याग्निक ने। इसे लिखा समीर ने और संगीत से सजाया नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम दिलवाले। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दीवाना से। लिखा है समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का और आवाज कुमार शानू की।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और ये जो नगमा आपने सुना इसे हमने फिल्म बादशाह से लिया था। आवाजें थी कुमार शानू और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम था दिलवाले। अगला गाना आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म बादशाह से। संगीतकार हैं जावेद अख्तर, गीतकार अनु मलिक और आवाजें हैं अभिजीत तथा अलका याग्निक की।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आखिर में आपको सुनवा रहे हैं ए आर रहमान का गाया हुआ फिल्म दिल से का एक प्यारा सा नगमा, जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है ए आर रहमान ने। लीजिए सुनिए।

सर होगा दंगे तो दिल भी होगा मौसम गुजरते रहते दिल से तो दर्द होगा दंगे तो दिल भी होगा।

0: इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
3: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
4: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
3: There are rooms to operate from, both sides would do it.
1: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस समझौते में लगभग 2 अरब लोगों और वैश्विक जीडीपी के करीब 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पगांव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 71,992 पर और निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 22,450 पर था। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिन में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों, साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम अनुकूल होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल पहुंचे रांची। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरा। जनसेवा से देश सेवा अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से किया संवाद। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के महत्व को किया रेखांकित। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रामगढ़ में श्रीमद् भागवत कथा में हुए शामिल। लोगों से अपना आचरण बेहतर बनाने की अपील। हजारीबाग के चरही क्षेत्र में सीआईएसएफ ने ड्रोन सर्विलांस के जरिए की बड़ी कार्रवाई। 280 टन अवैध कोयला किया जब्त। और रांची में आयोजित खेलो इंडिया राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के हॉकी वर्ग में सिमडेगा बना विजेता। एथलेटिक्स के बालिका वर्ग में हजारीबाग और बालक वर्ग में लातेहार अव्वल। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल और सह प्रभारी सौरभ सिंह आज पहली बार रांची पहुंचे। हवाई अड्डे पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर श्री सेठ ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा।

0: भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपने पुराने कलेवर और आज माननीय प्रभारी जी का आगमन हुआ है। निश्चित रूप से राज्य सरकार की जो स्थिति है, फाइनेंशियल क्रंच है, रूल ऑफ लॉ कॉलेप्स है, हर कोई परेशान है। छात्र जिनका भविष्य बेच दिया वो परेशान है, किसान परेशान और महिलाएं परेशान। इसी तरह हम कह सकते हैं कि कोई वर्ग ऐसा नहीं जो खुश है, हर वर्ग नाराज है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे ट्राइबल फाइट म्यूजियम और गौरव दिवस की। इसी कड़ी में झारखंड की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और अस्मिता को वैश्विक पहचान देने के लिए गुमला में एक भव्य जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता यह जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्निशियस हाई स्कूल परिसर में स्थापित किया गया है। इस भव्य म्यूजियम में राज्य के पारंपरिक जनजातीय जीवन, कला और दुर्लभ कलाकृतियों को जीवंत रूप में सहेजा गया है। केंद्र सरकार के जनजातीय गौरव दिवस और ट्राइबल फाइटर म्यूजियम के विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है,
3: मेरे परिवारजनों, जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रति भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा है।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन को धरातल पर उतरते देख झारखंड के विभिन्न जिलों से इस म्यूजियम को देखने आने वाले दर्शकों और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। इस कला दीर्घा का अवलोकन करने के बाद दर्शक अपनी खुशी जाहिर करते नहीं थकते।
4: मेरा नाम बिलटपो है और मैं आदिवासी संग्रहालय को देखने के लिए आई हुई थी और आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
5: मेरा नाम इमिल किरकिट्टा है। हमारे पुरखे किस तरह से जीवन यापन करते थे?
2: संक्षेप में कहें तो गुमला का यह जनजातीय संग्रहालय सिर्फ अतीत की कलाकृतियों को सहेजने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह प्रधानमंत्री के जन सेवा से देश सेवा के उस बड़े संकल्प को भी पूरा कर रहा है जो देश की जनजातीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर गौरव दिलाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल के साथ रांची के समाचार कक्ष से मैं कुंदन कुमार वर्मा।
1: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जनसेवा से देश सेवा अभियान के तहत रांची के डिबडीह में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित खिलौना निर्माण केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से संवाद किया और उनके हुनर की सराहना करते हुए वोकल फॉर लोकल के महत्व को रेखांकित किया। इसके बाद उन्होंने हटिया लटमा वृद्ध आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार रामगढ़ के जिमखाना क्लब रिसोर्ट में आयोजित श्रीमद भागवत कथा में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। उन्होंने वृंदावन के कथावाचक महाराज मृदुल कृष्ण गोस्वामी से आशीर्वाद लिया और कहा कि समाज के लिए ऐसी धार्मिक कथाओं की बड़ी उपयोगिता है। राज्यपाल ने सभी से अपना आचरण बेहतर बनाने की अपील की। हजारीबाग के सीसीएल चरही क्षेत्र में सीआईएसएफ ने ड्रोन सर्वेलांस की मदद से बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 280 टन अवैध कोयला जब्त किया है। कमांडेंट अमित कुमार के निर्देश पर दो दर्जन जवानों की टीम ने तापीन नॉर्थ परियोजना के आसपास ठुमरी तिलैया नगर परिषद में अवैध चुंगी वसूली मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नगर अध्यक्ष रमेश हर्षधर की शिकायत के बाद हुई इस कार्रवाई में बरामद रसीदों पर कार्यपालक पदाधिकारी अंकित गुप्ता के हस्ताक्षर मिले हैं।
6: विभाग के द्वारा हम लोगों की एक कंट्रोल कमेटी बना ली है सारे शरारतों के लिए। साथ ही साथ है कि बहुत सारे शरारतों को 2 बार से हम लोग ज्यादा कर चुके हैं, तो किसी के द्वारा लिया नहीं गया है। इसके लिए विभाग के गाइडलाइन भी है कि शरारतों का 10 संशोधन, तो इसके लिए हमने अपर समाहर्ता के यहाँ फाइल में भेजी है 10 संशोधन के लिए, ताकि 10 संशोधन किया जा सके जिसके कारण लोग शरारत में रुचि ले सके।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 175 अंक बढ़कर 72,085 पर, निफ्टी 50 अंक की बढ़त के साथ 22,472 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,32,000 रुपए प्रति किलो है। रांची में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खेलो झारखंड 2026-27 प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। एथलेटिक्स अंडर 17 के बालिका वर्ग में हजारीबाग और बालक वर्ग में लातेहार प्रथम रहे, वहीं हॉकी के बालक और बालिका दोनों वर्गों में सिमडेगा ने खिताबी जीत हासिल की। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल पहुंचे रांची। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरा। जनसेवा से देश सेवा अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से किया संवाद। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के महत्व को किया रेखांकित। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रामगढ़ में श्रीमद् भागवत कथा में हुए शामिल। लोगों से अपना आचरण बेहतर बनाने की अपील की। हजारीबाग के चरही क्षेत्र में सीआईएसएफ ने ड्रोन सर्विलांस के जरिए की बड़ी कार्रवाई। 280 टन अवैध कोयला किया गया जब्त। और रांची में आयोजित खेलो इंडिया राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के हॉकी वर्ग में सिमडेगा बना विजेता। एथलेटिक्स के बालिका वर्ग में हजारीबाग और बालक वर्ग में लातेहार अव्वल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं उपशास्त्रीय संगीत का अनुरंजनी। आज आप सुनेंगे कलाकार गिरिजा देवी को, ख्याल अभोगी कानड़ा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार थी गिरिजा देवी। इसी के साथ उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं सुगम संगीत। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में चंद गजलें।

इसी गजल के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को हैं, इस वक्त आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।

0: Meanwhile, Saudi Arabia has placed full operational support to Yemen's armed forces, saying the campaign will continue until the state authority is restored. These developments could potentially escalate the Yemen conflict and open a new phase of fighting. Manish Shiva, Akashwani News, Dubai.
1: The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. IMD said conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from most parts of Marathwada and Vidarbh and some more parts of Maharashtra and Chhattisgarh during the next 2 to 3 days. The weather agency said thunderstorms and lightning conditions will continue over Uttarakhand, Telangana, Sub-Himalayan, West Bengal and Lakshadweep till tomorrow. Similar weather conditions are also expected over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura for the day. Meanwhile, strong surface winds are expected over Andhra Pradesh during the next 2 days. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in afternoon session today. The Sensex rose 218 points to 72,128, while the Nifty added 71 points to 22,493 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index gained almost 0.5% and the Small-Cap 100 Index advanced 0.2% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. Says India and Switzerland will work together to boost trade, investment and develop trusted supply chains for the world. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure. Finance Minister Nirmala Sitharaman hails India-EU free trade deal, says it reflects India's approach to negotiating and finalizing trade agreements. Punjab and Haryana High Court orders CBI probe into ED allegations of corruption against Punjab Chief Minister's office. And IMD forecasts heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया और मौसम विभाग ने कल तक कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कार्यकाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
3: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश

0: ने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे स्विट्जरलैंड को भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड के निवेश को आकर्षित करेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी पर सहमत हुए।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
1: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
4: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
5: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
4: There are rooms to operate from. Both sides would do it.
0: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया।
4: The mother of all deals

0: मुझे लगता है कि ये समझौता बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बीच होने वाला समझौता है। इस समझौते के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा कवर होता है। भारत ने इस समझौते के अंतर्गत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 92.5% को खोल दिया है और मूल्य के आधार पर लगभग 97% को कवर किया है।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना किया। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पंगाव बंदरगाह तक ले जाया जा रहा है। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा गया। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास 2 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज विश्व पर्यावास दिवस समारोह में श्री साहू ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ सरकार की प्राथमिकता शहरों और गांवों को हरित, स्वच्छ, सतत और रहने योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के विकास को किस प्रकार आकार दे रहा है।
2: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को PPP मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
3: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक हो गया है। एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है।
2: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि ये एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र को नई पहचान देगा।
4: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गाँव और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की नींव है।
2: पहले चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष है, जिसे भविष्य में 70 मिलियन तक ले जाने की योजना है। ये हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत देने के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से ये साबित होता है कि राज्य सरकार जानबूझकर अपने लोगों को बचा रही थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। RBI की नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही

0: है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तथा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। समिति मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 218 अंक बढ़कर 72,128 पर, जबकि निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ 22,493 पर था। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती नियंत्रित शेष क्षेत्रों को वापस लेने और पूरे देश में सत्ता बहाल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने कहा कि डी एस्केलेशन की सभी कोशिशें खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर यमनी फोर्सेस ने ताइज के कई मोर्चों पर भारी क्लैशेस की जानकारी दी है। उन्होंने हूती इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम करने और सैकड़ों हूती लड़ाकों के हताहत होने का दावा किया है। हालांकि हूतियों ने कुछ इलाकों में यमनी फोर्सेस की बढ़त के दावों को खारिज किया है। इस बीच सऊदी अरेबिया ने यमनी आर्म्ड फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है और कहा है कि यह अभियान स्टेट अथॉरिटी बहाल होने तक जारी रहेगा। इन डेवलपमेंट से यमन कॉन्फ्लिक्ट के और बढ़ने और लड़ाई के नए एक फेज में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। मनीष शिवा, आकाशवाणी दुबई।
0: मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, दोनों देश व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने और विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की, कहा ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं फौज भाइयों को समर्पित कार्यक्रम जय भारती। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म क्रांति का ये नगमा, जिसे गाया है महेंद्र कपूर और साथियों ने। इस गाने को लिखा है संतोष आनंद ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो लीजिए सुनिए फिल्म क्रांति का ये गाना।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म यादों की बारात से, आवाज आशा भोसले और मोहम्मद रफी की है, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो रांची पर।
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती। अगला गाना आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म दूसरा आदमी से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, साथ में मोहम्मद रफी की। इस गीत को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने और इसे कलमबद्ध किया है मजरूह सुल्तानपुरी ने। दिल्ली जी सुनिए ये प्यारा सा नगमा।

जय भारती कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम का अंतिम गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ग्रेट गैम्बलर से। आवाजें हैं अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार की। संगीतकार आर डी बर्मन और गीतकार आनंद बख्शी। लीजिए सुनिए ये नगमा।

द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे और इसी के साथ फौजी भाइयों को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम जय भारती यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपनी दोस्त कार्यक्रम के होस्ट राजश्री को इजाजत। आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है और इस वक्त आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड हाई कोर्ट ने आपराधिक मामले में बरी होने के बावजूद हजारीबाग डिटेंशन सेंटर में महिला को रखे जाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। गृह सचिव वंदना दादेल अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुई। झालसा की जांच रिपोर्ट में महिला ने 3 पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। अदालत ने हिरासत के कानूनी आधार पर स्पष्टीकरण मांगा है। जमशेदपुर के नरवा पहाड़ में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी UCIL ने स्थापना के 6 दशक पूरे होने पर हीरक जयंती वर्ष मनाया। समारोह में परमाणु ऊर्जा आयोग की सदस्य वित्त सीमा जैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों ने UCIL की खदानों और प्रसंस्करण इकाइयों का दौरा कर यूरेनियम खनन सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन की जानकारी ली।
1: पूरे होने पर जमशेदपुर के नरवा पहाड़ में हीरक जयंती वर्ष मनाया। समारोह में परमाणु ऊर्जा आयोग की सदस्य सीमा जैन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। इस अवसर पर पत्रकार कार्यशाला और DAE प्रौद्योगिकी की प्रदर्शन किया गया।
0: भाजपा के नव नियुक्त प्रदेश प्रभारी इंद्र सिंह पटेल के रांची दौरे पर सत्ताधारी गठबंधन ने तंज कसा। उसने कहा में कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है।
2: साली अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा, दे ऑल आर टेस्टेड एंड रिजेक्टेड। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी नेताओं को झारखंड की जिम्मेदारी दी है। नेता बदलने से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दा पर बात ही नहीं करते हैं।
0: खूंटी के रानी फॉल में शैक्षणिक भ्रमण पर गए तिलमी स्कूल के 18 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उल्टी, दस्त और सिरदर्द की शिकायत के बाद उन्हें कर्रा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। विधायक सुदीप गुड़िया और रामेश्वर मुंडा ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हालचाल लिया। डॉक्टर के अनुसार फूड पॉइजनिंग की आशंका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के JSCA स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने

0: भारत वेस्ट इंडीज T20 मैच के लिए आज सुबह 9 बजे से ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। काउंटर खुलते ही प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें राज्य के कई जिलों और पड़ोसी राज्यों से आए क्रिकेट प्रेमी शामिल हैं। टिकट मिलने के बाद दर्शकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है।
1: अमन राज बोकारो से आए, सुबह से ही लाइन में खड़े हैं, सुबह 7 बजे से। एक पर्सन को 2 टिकट मिलने वाला, खाने पीने का व्यवस्था नहीं, सुबह से ही लगे हुए, अब यहाँ से निकलने के बाद ही कुछ करेंगे।
2: मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, हम पलामू जिला से आए हैं। लाइन में भी लगे हुए 1 घंटा मेरा है, अपने लिए भी आए हैं और घर के लिए भी लेने आए हैं। इतना भीड़ है अभी तक तो कोई उसका उम्मीद नहीं है, लेकिन देखिए अगर जल्दी वहाँ होता है तो टिकट मिल भी सकता है।
0: उपायुक्त मेघा भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने पूजा समितियों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया। बैठक में सुरक्षा, यातायात, श्रद्धालुओं की सुविधा, पेयजल और प्रतिमा विसर्जन को लेकर आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। गिरिडीह में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर अनुमंडल सभागार में शांति समिति की बैठक हुई। SDM धीरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूजा पंडालों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, यातायात और प्रतिमा विसर्जन की तैयारियों पर चर्चा की गई। प्रशासन और पुलिस ने पूजा समितियों से सुरक्षा मानकों का पालन करने और अफवाहों से बचने की अपील की। राजमहल के उधवा झील पक्षी आश्रयणी में वन्यजीव सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीणों को स्थानीय और प्रवासी पक्षियों तथा उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के महत्व की जानकारी दी गई। उपवन परिसर पदाधिकारी अखिलेश मरांडी ने अवैध शिकार और पक्षियों को पकड़ने जैसी गतिविधियों पर रोक की जानकारी देते हुए ग्रामीणों से वन्यजीव संरक्षण में सहयोग की अपील की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। तो सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। भेजने वाले हैं अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी। वो लिखते हैं,
0: जो निश्चल प्रेम में रहते हैं वो छल समझ नहीं पाते और जो छल में रहते हैं वो निश्चल प्रेम नहीं समझ पाते।
2: जी आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
0: तो हमें पहला संदेश मिला है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, बंटी और बबली वर्मा।
0: और बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी और ख्याति सारवा।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू।
0: और छत्तीसगढ़ हसदा नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है,
2: हम उमंग कार्यक्रम में मासिक संस्करण श्रोता संवाद का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस कार्यक्रम से महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को प्राप्त होती है। सच मानिए ये कार्यक्रम जानकारी का महत्वपूर्ण खजाना है। 7 सितंबर के कार्यक्रम श्रोता संवाद में शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर डॉक्टर श्वेता तंवर जी से अजीत सर जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी सरल शब्दों में सुनवाई गई। ये जानकारी सुनवाने के लिए डॉक्टर श्वेता तंवर जी के साथ साथ अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: अगला संदेश हमें मिला है सहसपुर छत्तीसगढ़ से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सती बाई साहू जी का।
2: ईदूग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका उडुपी जिला कर्नाटक से एच सिद्धार्थ जी लिखते हैं।
0: आप लिखते हैं, आदरणीय कार्यक्रम के बारे में हमारी प्रतिक्रिया
2: जी।
0: स्त्री शिक्षण को अपने प्रोत्साहन देकर महिलाओं में हिम्मत बढ़ाई है। पुराने जमाने में पुरुष प्रधान समाज में सामाजिक कार्यकलाप ही नहीं किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को लोग खारिज करते थे
2: जी।
0: जेंडर डिस्पैरिटी पर आपका श्रोता संवाद बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब सुनिए पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण गंगोत्री क्या है और ये कहाँ स्थित है।
2: इसका उत्तर है साथियों, दक्षिण गंगोत्री दक्षिण ध्रुव पर स्थित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है।
0: और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया।
2: इसका उत्तर है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन द्वारा उसकी माता को दिया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न था, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के भीतर भूकंप, भूगर्भीय, ज्वालामुखीय और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण सुनामी आती है। समुद्र के भीतर भूस्खलन भी इसका मुख्य कारण है।
0: और हमारा अगला सवाल था कि मेघालय शब्द का क्या अर्थ है।
2: मेघालय शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, मेघ और आलय
0: जी।
2: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो अर्थ बना मेघालय यानी मेघों या बादलों का घर।
0: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए।
2: गांधी जी द्वारा रचित संभवतः सबसे अधिक चर्चित किताब का नाम है, मेरे सत्य के प्रयोग
0: जी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, तो हो जाइए तैयार। हमारा आज का प्रश्न है, सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं।
0: श्रोताओं, 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज का पहला कार्यक्रम। तो आज के पहले कार्यक्रम के क्रम में हम सुनेंगे हमारा मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
2: आइए सुनते हैं श्रोता संवाद।
0: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, प्रस्तुत है उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने के पहले सोमवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और NCERT द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही विभिन्न पहलों पर। तो आज इस क्रम में हम बात करेंगे NCERT की नई पाठ्य पुस्तकों की। तो श्रोताओं, आपको हम बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव। आप NCERT के सामाजिक विज्ञान और शिक्षा विभाग की अध्यक्षा हैं। तो प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव, आज के उमंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
3: नमस्कार, आप सभी को स्वागत करती हूं और आपने समय दिया मुझको सुनने के लिए, इसका मैं आभार प्रकट करना चाहती हूं। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि विद्यालय में सामाजिक विज्ञान एक बहुत अहम विषय है और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के बारे में बताने का कोशिश करूंगी।
0: तो डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे, मेरा प्रश्न ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में NCERT की पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे की विषय वस्तु के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए और बताइए कि यह सामाजिक विज्ञान से कैसे जुड़ा है।
3: हाँ अजीत जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं पूरा प्रयास करूंगी। आप सभी को पता है, जब हम सामाजिक विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं तो विषय तो समाज से जुड़ा ही होता है
0: जी।
3: दूसरा, समाज और प्रकृति में क्या समन्वय है उसके बारे में भी हम बताने का कोशिश करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से
0: जी।
3: और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बल दिया है कि जब भी हम बच्चों को समाज के अध्ययन के बारे में बताने का प्रयास करें तो हमें समाज के जो विषय हैं, जैसे आप जानते ही हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, ये इसका समावेश है और हम इस

0: सोशल साइंस कहते हैं, यानी समाज शास्त्र। आप हमारी पाठ्य पुस्तक मिडिल स्टेज की ले लीजिए और आप देखिए कि जितनी भी पाठ्य सामग्री है, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी, अतीत के चित्रपट, हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, शासन और लोकतंत्र, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन से क्या जुड़ाव है
1: जी।
0: इन विषयों को हम अपनी छठी सातवीं आठवीं में दिए हैं और उसके अंदर जब आप विषय वस्तु को पढ़ेंगे गहन ढंग से, आप देखेंगे कि उसमें एक लीनियर प्रोग्रेशन है। यानी कि हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए इतिहास ले लीजिए कि समय सारणी से जो भी घटना घटी है उसके बारे में हमारा विषय वस्तु आपको बताने का प्रयास करता है। साथ ही साथ घटनाओं का विवरण हम जब करते हैं तो हमारा विषय वस्तु आपको जोड़ने की कोशिश करता है, ताकि आपके मन में जिज्ञासा, आपके मन में उस विषय के बारे में और गहन ढंग से कहां से लें उसके बारे में, और तीसरा आप किन गतिविधियों के माध्यम से ये विषय को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्रकृति आपदा के बारे में आपकी जिज्ञासा हुई, तो प्रकृति आपदा के बारे में आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं, साथ साथ अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं कि क्यों ये घटती है और हमें क्या करना चाहिए
1: जी।
0: इसी तरह हमारे पाठ्य पुस्तक में आप देखिए, जो विषय हमारे भूगोल से जुड़ा है, हम बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी जो
1: प्राकृतिक संसाधन कह ले,
0: हमारी प्रकृति संसाधन है वो क्या है, और साथ साथ हम बताने की कोशिश करते हैं उसकी संरक्षण हम कैसे करें। ताकि आज आपने सुना होगा हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो छोटी छोटी गतिविधि से हम कैसे अपनी ये धरोहर का संरक्षण करें। जब आप पाठ्य पुस्तक उठाते हैं और ये विषय पढ़ते हैं, हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, तो एक गौरव जैसी भावना आती है कि हमारे भारतवर्ष में ये विषय कितना अहम था। हमारे जितने भी पर्सनालिटीज थे, आप कोई भी विषय ले लीजिए, उन्होंने गहन ढंग से अध्ययन करके, विज्ञान के क्षेत्र में ले लीजिए, साहित्य के क्षेत्र में ले लीजिए, कितनी अच्छी बातें बताई जो आज भी प्रासंगिक हैं और मनुष्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आगे ले जाता है। साथ साथ प्रकृति के बारे में भी बताने का प्रयास किया जाता है, क्यों और क्या, ऐसे सवालों का जवाब भी हमारी ज्ञान परंपरा में आपको मिलेगा जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे
1: जी।
0: अनेकता में एकता एक ऐसा पाठ है हमारी सभ्यता संस्कृति में जुड़ा है हमारे पाठ्य पुस्तक में, जहां मानचित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की कि हमारे जो रीति रिवाज है या हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो विभिन्न तो होते ही हैं, लेकिन हर विभिन्नता में एक एकता की भी
1: भावना
0: आती है। और हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको एक सूत्र में जोड़ करके हमारी विकसित यात्रा, सभ्यता और संस्कृति का भी एक बहुत अहम स्थान है, और हमारी पाठ्य पुस्तकों में इसको अच्छी तरह से छठी सातवीं आठवीं में दर्शाया है। इसको कृपा करके पढ़िए और अपने प्रांत में भी देखने की कोशिश कीजिए कि इसको हम कैसे मनाते हैं, कब मनाते हैं और किस तरह से हम उससे जुड़े रखते हैं। कितने समय से ये शुरू हुआ, लेकिन आज भी हम उसको बड़े ही धूमधाम से इसको मनाते हैं, गाना गाते हैं, और आप देखिए आज हम लोग की जो हेरिटेज है, आर्ट है, कितना लोग इसको लोकप्रिय ढंग से अपने जीवन में इसको उतारते हैं, और बच्चे आप लोग तो अपने प्रोजेक्ट वर्क में भी इसका समावेश करते हैं, और ये सारी चीजें आपको हमारी पाठ्य पुस्तक में मिलेगी। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में भी चर्चा किया गया, कौन कौन से विभिन्न कार्य करते हैं हमारे भारतवर्ष में, उसके बारे में भी चर्चा की गई है, और साथ साथ ये भी बताया गया है कि बार्टर से आज मोनेटाइजेशन में
1: हम वस्तु विनिमय प्रणाली से जी,
0: हमारी यात्रा कैसे रही, साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में भी विभिन्न ढंग से बताया गया है, तो हमारी पाठ्य पुस्तक में ये भी आप पाएंगे, और लोकतंत्र के बारे में भी अच्छी तरह से बताया गया है। तो ये एक जुड़ाव जो हमारी सामाजिक विज्ञान को बनाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे हम इसको पढ़ें, एग्जाम्पल्स कैसे हम दे सकें, और साथ ही साथ जब हम विश्लेषण करें तो तथ्यों के आधार पे हमें निष्कर्ष पे आना चाहिए, ना कि केवल पढ़ करके, क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो हमारे एनईपी 2020 में दिया गया है, वो भी आप तथ्यों का पहले एकत्रित करिए, उनका विश्लेषण करिए, तब आप नतीजे पे आ सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये भी हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया है, गतिविधि कई दी है जो आप कर सकते हैं और खुद जुड़ सकते हैं इस विषय से, क्योंकि जब हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ा है। कुछ ऐसे हमारे पाठ हैं जो अतीत से जुड़े हुए हैं, लेकिन अतीत को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह से हम धीरे धीरे प्रगति किए, और क्या बात है कि कुछ चीज आज भी प्रासंगिक है, उसको आर्ट है, संगीत है, हमारी सभ्यता संस्कृति है,
1: अलग अलग कलाएं हैं, हमारी
0: अलग अलग कलाएं हैं, इन सबको हम आज भी जोड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें खुद को गौरव महसूस कराते हैं और हमारी आइडेंटिटी को नेस्को।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े विस्तार से इस पाठ्य पुस्तक के बारे में जानकारी दी। मेरा एक प्रश्न और है आपसे, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, इस पुस्तक को पढ़ाने के लिए आप शिक्षकों को किस प्रकार का निर्देश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं भी शिक्षक रह चुकी हूँ और मेरा अपना मानना है कि हम विधि को बहुत ही सरल ढंग से और बाल केंद्रीय अगर हम बनाते हैं तो बच्चे का जुड़ाव होना चाहिए। कक्षा में हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चों को हम समय दें कि वो प्रश्न करें, अपनी जिज्ञासा के बारे में औरों को भी बताने की कोशिश करें, क्योंकि आप एक किरण बच्चों के अंदर लाते हैं कि ये विषय केवल पढ़ने का ही नहीं है, समझने का भी है, और आप खुद उसके साथ संवाद करें, क्योंकि बुक तो आपके सामने, आप अध्ययन भी करेंगे, उसको चर्चा करेंगे, इसका मौका आपको बच्चों को देना होगा। हम सब मानते हैं कि क्लास का समय जो है निर्धारित होता है, लेकिन उसको हम कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाने के लिए आप मटेरियल, उसको हम एक टीचिंग एड के माध्यम से बता सकते हैं, बच्चों का समावेश कर सकते हैं क्लास में, बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात बताएं, एक चर्चा करने का मौका मिले उनको, साथ ही साथ उनको हम डिबेट करने का मौका दें। और अगर हमने कोई पाठ के बारे में बताया, सभ्यता और संस्कृति मान लीजिए हमारी पाठ है, तो हम बच्चों को आसपास के जो ऐतिहासिक स्थल हो या हम बच्चों को भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं, तो उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं, यानी उनको विजिट कराने की बहुत जरूरी
1: उनको जरूरत
0: है,
1: उनको
0: लेके जाएं। और हमारा प्रयास ये होता है कि मान लीजिए गांव में कोई अच्छा आर्टिजन है या कुम्हार है, लोहार है, इनसे बच्चों का जुड़ाव होना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि ये जो कार्य हैं, ये कार्य कितने मुश्किल हैं और इनकी जो उन्होंने चीजें बनाई हैं वो आम जीवन से कैसे जुड़ा हो, और इससे बच्चों का जुड़ाव संस्कृति से भी होगा, कार्य से भी होगा, अर्थव्यवस्था से भी होगा। तो आप देखिए, आपने एक लिंकेज बताया, इंटरडिसिप्लिनरी भी बताया, बच्चों को अपने स्थानीय परिप्रेक्ष्य जोड़ने की कोशिश की, और साथ ही साथ पाठ को रुचिकर बनाया। बच्चों के अंदर बहुत जिज्ञासा होती है, सपना होता है उनके मन में, और ये आप ही कर सकते हैं। विषय को इतना रुचिकारक बनाइए कि बच्चों को लगे हाँ, समाज शास्त्र में है जिससे हम अपने जीवन को जोड़ सकते हैं। बच्चों के अंदर प्रोजेक्ट बनाने की बहुत जिज्ञासा होती है, मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, और जब भी मेरे क्लास में कोई विषय मुझे अच्छा लगता था तो मैं सोचती थी कैसा प्रोजेक्ट बनाऊं, क्या पेंटिंग करूं, क्या एक प्रोजेक्ट ऐसे ही बनाऊं, या ऑडियो वीडियो बनाऊं। तो ये सारी चीजें अगर उनके मन में आ जाती है तो इसका मतलब वो एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और जब ऐसा होता है तो समाज का जो अन्य विषय है उससे भी जुड़ाव होता है। इसीलिए आप देखेंगे 6ठी से 8वीं की जो पाठ्य पुस्तक है वो एक है, इट इज वन टेक्स्ट बुक, और इस टेक्स्ट बुक की जो विशेषता ये है कि वो जितने भी विषय हैं उसको पिरो करके एक पाठ बुक में बनाया गया है और इसको आगे करते हुए, क्योंकि आप पे बहुत दायित्व है कि आप इसको कैसे बच्चों तक पहुंचाएं, जब उनको इन सारे विषयों से जोड़िए, पिरोइए और उनके जीवन से जोड़िए और ये बताने की कोशिश करिए कहाँ थे और हम कहाँ आ गए।
1: जी
0: ये बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी एंड चेंज।
1: जी, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे कि हम ये जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं की ओर से कि इस पुस्तक में, यानी समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, इसी पुस्तक की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस पुस्तक में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है, हम ये जानना चाहेंगे।
0: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अजीत जी।
1: जी,
0: मैं बताने की कोशिश करूंगी कि हमारी पाठ्य पुस्तक में महिलाओं को जहां जहां उन्होंने योगदान दिया है उसको समावेश किया है और उन्होंने बॉक्स आइटम में भी दिया है, लेख में भी उनका विवरण किया है और जहां जहां समाज में अपना योगदान दिया है उसके बारे में भी दिया है। जैसे आप ले लीजिए हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6, कक्षा 6 में जो महिलाओं के बारे में दिया गया है, जैसे कि गार्गी जी के बारे में बताया है, वंदना बहादुर मैदा के बारे में दिया गया है जो एक सरपंच थी अपने गांव की और उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया था। इसी तरह कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में कनगी महारानी के बारे में बताया गया है और प्रभावती गुप्ता जी के बारे में भी इस पाठ में दिया गया है। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में मुतम्मा के बारे में बताया गया है और हमारी कक्षा 8 की पुस्तक में रानी दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई होलकर, रानी अकब्बा, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, इन महिलाओं का योगदान जिस जिस क्षेत्र में किया है उसके बारे में दिया गया है। और अगर आप हमारी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक देखें तो आप देखिएगा कि कक्षावार जहां जहां महिलाओं ने योगदान दिया उनके बारे में चर्चा किया गया है और ये क्यों किया गया है, ताकि आपको भी प्रोत्साहित किया जाए, ताकि आप एक खोज करिए कि ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज में गहन योगदान दिया है पर कुछ कारणवश, जिनको हम कहते हैं लेसर नोन, उनके बारे में भी आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, ताकि आपको खुद एहसास होगा कि जब भी समाज विकास के रास्ते पे चला महिलाओं का योगदान हमेशा ही रहा और आज भी आधुनिक भारत में भी आप देखिए कि हमारी महिलाएं किन किन क्षेत्र में कामयाबी के ढंग से अपना योगदान दे रही हैं। आर्मी में भी देख लीजिए, नेवी में देख लीजिए, पायलट देख लीजिए, जिनको पहले हम कहते थे अनकन्वेंशनल रोल,
1: कार्य के किसी भी क्षेत्र में आजकल महिलाएं देखी जा सकती हैं,
0: क्षेत्र में
1: जी
0: उनका योगदान है और हम बहुत गर्व के साथ भी कहना चाहते हैं कि हमारी एक पाठ्य पुस्तक फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग के में जब भी पुस्तक आप उठाइए तो खेल के क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है वो बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। तो आप देखिए कि पाठ्य पुस्तक में विजुअल कंटेंट में महिलाओं का समावेश है, जिसको हम कहते हैं जेंडर इंक्लूसिवनेस।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर गौरी जी कि आप हमारे स्टूडियो में आई और एनसीईआरटी की इस विशेष पाठ्य पुस्तक के बारे में आपने बड़े विस्तार से जानकारी दी। तो श्रोताओं की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारी आशा है कि इसके द्वारा हमारे श्रोता बहुत लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद अजीत जी, आपने मुझे मौका दिया। हम अपने सारे श्रोताओं का धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे सुना, पर मैं और धन्यवाद आपको दूंगी जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़िए और एक यात्रा में जाइए कि हम और इसको अपने जीवन से कैसे जोड़ें। तथ्यों को एकत्रित करिए और कोशिश करिए कि पाठ में आप और क्या जोड़ सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से। धन्यवाद सभी को, आपको अजीत जी
1: धन्यवाद। तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोता संवाद। तो अब सुनते हैं आज का अगला शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है आम का पेड़।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बच्चों को पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया है तथा बताया गया है कि मात्र पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी लगातार देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है।
0: आम का पेड़।
2: थे सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा,
3: ऐसे ही मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा।
2: उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा।
4: अरे वाह, पौधा निकलाया।
2: कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला,
4: ये पौधा मैंने लगाया है। ये आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे।
2: दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले,
5: क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो।
2: प्रिया बोली,
4: पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे का आम खाएंगे।
2: उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे, फिर प्यार से बोले,
5: अरे बच्चों, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में ये एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे।
2: ये सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला,
4: कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे, एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे।

0: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आम का पेड़।
1: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
2: वाहन चलाते समय

आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विशेष श्रृंखला जनसेवा देश सेवा।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 18वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, व्यापक निवेश और सुलभ कारोबार। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चेनॉय और संतोष तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक समय था जब भारत में एक नया कारखाना शुरू करने के लिए 50 से ज्यादा दफ्तरों की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं, महीनों की फाइलें, अनगिनत हस्ताक्षर और दबी हुई लाल फीताशाही। दुनिया भारत को एक विशाल बाजार तो मानती थी, लेकिन यहाँ कारोबार करने से कतराती थी। फिर आया अक्टूबर 2001, गुजरात की धरती पर जब नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में बागडोर संभाली, तो उन्होंने व्यवस्था से एक तीखा सवाल पूछा, व्यापारी पर अविश्वास क्यों, फाइलें दफ्तरों में महीनों क्यों रुके। और उसके बाद जन्म हुआ एक ऐसे विचार का जिसने भारत के आर्थिक भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। गुजरात के वाइब्रेंट सम्मेलनों और सिंगल विंडो डिजिटल 140 करोड़ से अधिक लोगों के देश की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। फाइलों की धूल से निकलकर वन क्लिक नेशनल सिंगल विंडो तक, बिचौलियों के मायाजाल को तोड़कर जेम पोर्टल के डिजिटल लोकतंत्र तक, और लंदन दुबई को सीधी चुनौती देते गुजरात के गिफ्ट सिटी के आसमान छूते टावरों तक। ये सिर्फ सुधारों की कहानी नहीं है, ये भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की रोमांचक पटकथा है। लोक कल्याण से राष्ट्र निर्माण तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और सुशासन के 25 ऐतिहासिक वर्षों पर आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति जनसेवा से देश सेवा। आज का हमारा विषय है कारोबार आसान, निवेश व्यापक। इस अभूतपूर्व बदलाव को आज हम डेटा, तथ्यों और दूर दृष्टि के चश्मे से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो आर्थिक विश्लेषक मौजूद हैं, प्रसिद्ध आर्थिक विश्लेषक दिलीप चेनॉय जी और वरिष्ठ अर्थशास्त्री संतोष तिवारी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद।
1: संतोष जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो इसकी नींव गुजरात से मानी जाती है। बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात सिंगल विंडो सिस्टम और इन्वेस्टर्स समिट का मॉडल पेश किया। आपसे समझना चाहते हैं कि उस सिंगल विंडो और प्रो बिजनेस गवर्नेंस मॉडल ने भारत के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के गठन में क्या भूमिका निभाई और उससे कितना बड़ा बदलाव पिछले एक दशक या गुजरात से देखें तो 25 वर्षों में आप देखते हैं।
2: आनंद, ये एक ऐसा सवाल है जो कि मेरे लिए काफी रोमांचक भी है, क्योंकि जब गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उस वक्त मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं दो बड़े प्रोजेक्ट्स जो गुजरात के समुद्र तट पर लग रहा था, दहेज और हजीरा में एलएनजी टर्मिनल, और मैं उस वक्त इसलिए कि मैं उसमें पत्रकार था और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते थे उनमें मेरा इंटरेस्ट भी था, तो मैंने दोनों के इनॉग्रेशन को कवर किया। और दोनों में जो एक बात निकल के आई जो आपने अभी कहा, वो उस वक्त लगता नहीं था कि ये कोई ऐसी चीज है जो कि नेशनल लेवल पर की बड़ी भूमिका अदा करेगी, और वो था सिंगल विंडो सिस्टम और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम।
1: जी,
2: तो जब इनॉग्रेशन के बाद जो बड़े बड़े व्यवसायी जो हुए थे मंत्री के तौर पर, उन्होंने सीधी बातचीत की, और कोई लबोलुभाव नहीं, वो सीधी बातचीत की, तो मैंने एक बड़ी कंपनी के सीएमडी से बाहर निकलने के बाद एक चीज पूछा। मुझे भी जिज्ञासा हुई कि भाई ये क्या बात है कि इतने सारे व्यवसायी जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं और एक मुख्यमंत्री के पीछे इतना आकर्षण है। उस वक्त ये कहानी लगती थी, लेकिन उस व्यवसायी ने मुझे उस वक्त बताया था कि संतोष, गुजरात में ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि ये वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है वो रियल में वन विंडो या सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। आपको एक बार अगर राज्य सरकार ने, यानी गुजरात की राज्य सरकार ने अगर क्लियरेंस दिया और आपसे कहा कि लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हर तरह के क्लियरेंसेस जो हैं वो आपके इस प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल हैं,
1: जी,
2: तो आप आंख मूंद कर ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में जब भी कभी आपको उस जो चीज अवेलेबल कराया गया है सिंगल विंडो सिस्टम के तहत, उस चीज की आवश्यकता है, आपको किसी और दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा और वही सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो काम आएगा। और आपने सही कहा कि इसी सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर गुजरात में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं, चाहे वो ऑटो सेक्टर में आप देख लीजिए, या मैं नाम ले सकता हूं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो बाकी जगहों पर अलग अलग राज्यों को छोड़कर गुजरात में जाकर लगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इंडिया सेमीकंडक्टर हब बनने की तैयारी कर रहा है, वहां भी धौलेरा अगर है या सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट का सेंटर अगर कोई राज्य बनना चाह रहा है तो वो गुजरात ही बन रहा है। ये सब ऐसे एक दिन में नहीं होता, ये एक सोच होता है। तो अगर व्यवसायी के लिए, इन्वेस्टर के लिए अगर सिंगल विंडो सिस्टम कोई चीफ मिनिस्टर अगर अवेलेबल करा सकता है, तो वो जब प्रधानमंत्री बने तो उसे बिल्कुल पता है कि ये सिंगल विंडो सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंस है, तो ये इंश्योर होता है। और बाकी राज्यों में भी कोशिश बहुत की गई है, की जा रही है, और जहां जहां इसमें सफलता मिली है वहां भी इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो उसी लिहाज से बढ़ा है। लेकिन गुजरात एक एक्सेप्शनल स्टेट हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर या बड़े इन्वेस्टमेंट को लाने में रहा है, और उसमें सिंगल विंडो सिस्टम की भूमिका बहुत अहम रही।
1: निवेश की बात कर रहे हैं संतोष जी, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दिलीप जी, तो भारत अब केवल एक घरेलू बाजार नहीं रहा बल्कि वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। और जब भी बात हम निवेश की करते हैं और राज्यों में निवेश की करते हैं, तो वाइब्रेंट गुजरात हमें याद आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वाइब्रेंट गुजरात की पहल की, तो उस समय शायद ही किसी ने सोचा था कि विदेशी कंपनियां भारत में आकर वो भी गुजरात जैसे राज्य में निवेश करेंगी। उसके बाद हमने देखा कि भारत के अलग अलग राज्यों में इस तरह के समिट्स होने लगे, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज होने लगी, और कई कंपनियां न सिर्फ भारत आई बल्कि उससे रोजगार की स्थिति भी बदली। तो उस शुरुआत को और आज के सफर तक कैसे देखते हैं आप?
3: ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जैसे संतोष जी ने आपको पहले बताया कि जो उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस किया था, और उसमें एक खास तौर है कि जो गुजरात का सिंगल विंडो सिस्टम है वो हालांकि 2017 में अनाउंस किया गया था, लेकिन उससे पहले 100 करोड़ के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स थे वो खुद चीफ मिनिस्टर एक तरीके से उनको ओवरसी करते थे, और वो एक सिंगल विंडो सिस्टम के तौर पर किया जाता था। और अगर आप देखें तो वाइब्रेंट गुजरात जो 2003 में मेरे ख्याल से शुरू हुआ था, उसको आप देखें तो जब तक कोई स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ नहीं करता था। इंडिया में नेशनल लेवल इन्वेस्टमेंट समिट्स भी नहीं हुआ करते थे, तो एक स्टेट गुजरात जो ये 2003 में जो इन्वेस्टमेंट समिट किया था, उस टाइम भी अगर आप देखें तो निवेशों को इंडिया से बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। और इसमें एक खास बात थी, तो अगर आप देखें संतोष जी ने ऑटो सेक्टर का जिक्र किया था, तो अगर आप देखें कि वेस्ट बंगाल में एक कंपनी का एक प्रॉब्लम था, तो वो अलग अलग जगह ढूंढ रहे थे जहां पे यहाँ पर लैंड है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में उन्होंने अनाउंस किया, और वहां पे जो उनको बोला गया था कि आपको आपको लैंड एक्वायर करना है ना कुछ करना है, लैंड एक्वायर्ड है, हम आपको सब्सिडी नहीं देंगे, आप MOU साइन करिएगा और आप कल से वहां पे अपना जो प्लांट है शुरू करें। आज की डेट में वो एक हब बन गया है। 2005 में वाइब्रेंट गुजरात में मैं खुद शामिल था, उसमें ऑटो सेक्टर के बारे में काफी चर्चा हुई थी। उस टाइम अमित शाह जी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, वहां के एक पूरा ऑटो सेक्टर पे सेक्शन किया गया था। उन्होंने उस टाइम कहा था कि भी हमें थ्री व्हीलर देखना चाहिए। जब उनको बताया गया कि भाई अहमदाबाद में भारत का थर्ड लार्जेस्ट ऑटो थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर, उन्होंने दिशा बदला और उन्होंने अलग काम किए। तो अगर आप देखें, तो आप स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे, आप इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, तो अगर आप देखें 2019 से आज तक लगभग 3.50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये वाइब्रेंट गुजरात समिट में कमिट किया गया है। अक्टूबर यानी कि 2019 से मार्च 2025 तक इस साल का जो वाइब्रेंट गुजरात का समिट है वो अभी होने वाला है। और दूसरा जो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात में जो किया था वो खाली फॉरेन इन्वेस्टर्स के नहीं था, वो देश में जाकर के अलग अलग जगह में इन्वेस्टर्स मीटिंग्स करते थे, वो भी एक नया ट्रेंड था, और अब सारे जो स्टेट्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं। और एक तरीके से जो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म आप देख रहे हैं, स्टेट्स कम्पीट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, सिंगल विंडो सिस्टम डाल दिए, उसकी शुरुआत वाइब्रेंट गुजरात से हुई थी, गुजरात में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
1: जी हाँ, जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे वहां से वाइब्रेंट गुजरात की पहल हुई, और उसके बाद दुनिया भर की कई कंपनियों ने भारत में निवेश किया। चर्चा को आगे बढ़ाते संतोष जी, भारत ने पिछले दशक में ऐतिहासिक FDI प्राप्त किया है। अगर थोड़ी चर्चा FDI की करें, फीमा सुधारों और 100% ऑटोमेटिक रूट के विस्तार से विदेशी निवेशकों का भारत ने भरोसा जीता है। इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं, क्या बदलाव किए गए? चूंकि एक अविश्वास का केंद्र भारत माना जाता था, वहां से विश्वास को जीतना, FDI की पहल, और उसमें भी बहुत रिकॉर्ड बने।
2: आनंद जी, निवेशक कोई भी जो विदेशी निवेशक होता है या जो कंपनियां होते हैं, वो दो तीन चीजें किसी भी देश में जाने के पहले देखती हैं। अगर आप विश्व परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि चाहे वो चीन हो या अमेरिका हो या वैसे देश जहां की निवेश ज्यादा हुए हैं या होते रहे हैं, वहां पर जैसा मैंने कहा दो या तीन चीजें होते हैं जिसको देखते हैं। एक, जो आपकी पॉलिसी है उसमें सर्टेनिटी कितनी है, चाहे वो राज्य हो या देश हो। निवेशक के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय ये होता है कि कहीं हम ऐसी जगह में निवेश तो नहीं कर रहे कि यहाँ पॉलिसीज जो है वो बहुत तेजी से चेंज होता है, सरकारें बदलती हैं, पॉलिसी चेंज होता है। एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि भारत जैसे देश में पिछले एक दशक से ज्यादा जिस तरह से निवेशकों को जो चाहिए वैसी पॉलिसीज जिस तरह से चेंज करके लाई गई है फॉर देयर बेनिफिट, यानी उनकी सहूलियत के लिए, वो एक दूसरी चीज है जो कि निवेशक देखता है कि जो हमारे लिए प्रॉब्लम का विषय है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट को दिक्कत में ला सकता है, वैसी पॉलिसीज अगर हम चाहें तो सरकार उस दिशा में सोच रही है या नहीं सोच रही। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात होती है और जो कि पिछले डेढ़ दशक में जिसने सबसे ज्यादा अहम भूमिका अदा की है भारत के इंडस्ट्रियल सिनेरियो को चेंज करने में, मैं चेंज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप आंकड़े देखोगे तो भी चेंज है, सेंटिमेंट देखोगे तो भी चेंज है, अगर स्टेबिलिटी देखोगे तो भी चेंज है, और जो एक्सपेंस होता है यानी कौन कौन सी कंपनियां आपके देश में आ रही हैं, आपके देश में आ रही हैं, उसमें भी चेंज है। ये चेंज जो है वो बिल्कुल रिकॉर्डेड है, कोई भी उसको देख सकता है। ये तीनों जो मैंने बात बताई आपको उसके चलते ये चेंज है। पहली बात, पॉलिसीज में सर्टेनिटी आई। जो भी पॉलिसी आज से डेढ़ दशक पहले जो भारत में चल रही थी उन पॉलिसीज में कोई मेजर बदलाव नहीं किया गया जो कि निवेशक जो आते थे उनको ये लगे कि नहीं, नई सरकार आई है या सरकारें दूसरी आएंगी तो हमारी पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसी रही। दूसरा, जब भी आप किसी देश में जाते हैं अगर नियम कानून को पालन करने में इतनी जहमत हो कि आपको ये लगे कि ऐसी जगह में हम निवेश करें क्यों, इस सरकार ने, आप चाहे फेमा ले लें या जो इंडस्ट्रियल एक्ट्स हैं उसको ले लें या जो सेंट्रल लेवल जो भी एक्ट्स जितने बने हैं, कंडीशंस ले लीजिए, यानी छोटी छोटी चीजों के लिए जो कंपनियां 2-3 चीजें बताई कि कन्विक्शन हो या निवेश की सहूलियत हो या फिर रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना हो, चाहे वो विदेशी फंड से रिलेटेड हो या देश में पैसा लगा रहे हो उससे हो, इन सब चीजों में एक बार में नहीं, धीरे धीरे धीरे करके साल दर साल जो है वो चेंजेस हुए। अगर आप देखोगे एफडीआई लिमिट, ऑटोमेटिक अप्रूवल या 100% एफडीआई जो है जहां जहां बचा हुआ था वहां वहां, मैं सेक्टर्स का नाम नहीं ले रहा, जहां जहां बचा हुआ था ऑलमोस्ट सेक्टर्स बदल देना बहुत मुश्किल है, बट जो डेढ़ दशक में बदलाव हुआ है वो निवेशकों का भरोसा हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए एक अट्रैक्शन हो वो क्वेश्चन हो या फिर ये सर्टेनिटी हो कि अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी अगर लेके आ रहे हैं तो हमें इस बात की चिंता नहीं रहनी चाहिए कि हमारा ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो हमें दिक्कत और परेशानी हो जाएगी। इन तीनों लिहाज से पिछले डेढ़ दशक के सरकार के नियमों और कार्यक्रम को आप अगर देखेंगे तो डेटा, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ है, आपने कहा कि

0: एफडीआई जो है हमारा बहुत बढ़ा है, वो सिर्फ इंटेंट है जो आया है। जिस तरह से अभी काम चल रहा है, चाहे वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लीजिए आप, चाहे आप सेमीकंडक्टर देख लीजिए, चाहे आप डेटा सेंटर्स देख लीजिए, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स लग रहे हैं आज इंडिया में, चाहे आप क्वांटम कंप्यूटिंग देख लीजिए जो सबसे नया विधा है जो अभी आ रहा है, किसी भी न्यू एज टेक्नोलॉजी को आप देख लीजिए, न्यूक्लियर एनर्जी देख लीजिए आप, हर जगह एक इंडिया टेक प्लेबुक तैयार हो रहा है। और उसके जो दो बड़े पहलू हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस इंडिया टेक प्लेबुक में, एक सर्टेनिटी ऑफ पॉलिसीज एंड टू द गवर्नमेंट इज रेडी, सरकार तैयार है। जो चीज आपको चाहिए आप मेरे से बात करिए, प्रधानमंत्री खुद बात करते हैं, बात करिए और हम ये कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा आपकी सहूलियत बढ़ा सके वो हम बढ़ाएंगे। एक इकोसिस्टम और सेंटिमेंट, ये दोनों तैयार हुआ है, कोशिश सिर्फ यही करनी है कि इसको कंटिन्यू किया जाए और इसको आगे इंडस्ट्री के साथ मिलकर बढ़ाए।
1: दिलीप जी, थोड़ी चर्चा गिफ्ट सिटी और आईएफएससीए की भी कर लेते हैं। आईएफएससीए, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है। इन दोनों की कोशिशों के तहत भारत को लंदन, सिंगापुर या दुबई की तर्ज पर एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने की कोशिश की गई है। कितने सफल हुए हैं हम और गिफ्ट सिटी के माध्यम से होने वाले बैंकिंग और फंड मैनेजमेंट के ताजा आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं?
2: तो अगर आप देखें तो गिफ्ट सिटी जो है, वो गिफ्ट सिटी के पहले इंडिया एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब के द्वारा बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं किया जाता था। गिफ्ट सिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज पूरे विश्व को इंडिया से कैसे दे जाए। इसका दो पहलू है, एक हम इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया से कैसे दें और दूसरा जो है इंडिया में जो फैमिली ऑफिसेज हैं, जो दूसरे एंटिटीज हैं वो जाके विश्व में सेटअप करते हैं, उनको क्या गिफ्ट सिटी एक अल्टरनेटिव सिस्टम दे कि वो विश्व भर दूसरे जाए, सिंगापुर जैसा आपने कहा, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, लंदन जाए, वो गिफ्ट सिटी से कर सके। अगर आप देखें तो उनका जो ढांचा है गिफ्ट सिटी का, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स का जो है, फंड मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, अगर आप देखें गोल्ड का एक खास तौर से है। सबसे बड़ी बात जो इंडिया में जो हमारी जो एयरलाइंस की एक्सपेंशन हुई थी, हम एयरक्राफ्ट लीजिंग बाहर से करते थे, वो एयरक्राफ्ट लीजिंग अभी गिफ्ट सिटी से हो सकता है। दूसरा शिपिंग, हम करीब $70 बिलियन जो हमारे डिफेंस बजट से ज्यादा है वो शिप के लीजिंग में खर्च करते हैं, तो उसको कैसे भी ऑनशोर करें और गिफ्ट सिटी में उसको पोजीशन करें, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पे है। फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के है और ग्लोबल इनहाउस, तो ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये कैपिटल अट्रैक्ट करने का एक्सपेरिमेंट नहीं है जैसे हम पहले एफडीआई के बात कर रहे थे। ये है इंडिया से हम फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे एक्सपोर्ट करें और इंडिया का जो फिनटेक सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है वो पूरे विश्व पे कैसे छाए और अपना एक नाम करें। गिफ्ट सिटी जो है आज की डेट में ये एक नया इंटरफेस बन सकता है इंडिया के डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ और ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स। अभी भी अगर आप आगे जाके देखें तो इस टाइम ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में टोकनाइजेशन और रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन पे काफी चर्चा हुई थी। उसका जो पायलट हुआ था वो गिफ्ट सिटी में हुआ था और गिफ्ट सिटी एक बड़ा एक पैनामे पे एक प्रोग्राम एस्टैब्लिश कर रहा है टोकनाइजेशन। अगर आप देखें उसी वैल्यू का, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन का, तो आगे जाकर के वो $16 ट्रिलियन का एक मार्केट बन सकता है। और अगर हम उसको एंकर करें गिफ्ट सिटी में, तो अगर आप उसका 20% या कुछ भी ले ले, फिर भी वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का एक हब हो सकता है। अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो राजा रामन है उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में ये कहा था कि अलग अलग नए प्रोडक्ट्स भी अभी आ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं टोकनाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स, टोकनाइजेशन ऑफ जो स्टॉक्स वगैरह, उसको हम कैसे करके एक ग्लोबल सर्विस इंडिया से दें। और या कि नहीं कि इंडियन कंपनीज जो है दुबई, हांगकांग, सिंगापुर या लंदन जा करके वहां पे अपना काम करें।
1: जी, कारोबार आसान, निवेश व्यापक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे स्टूडियो में दो बेहद खास अर्थशास्त्री मौजूद हैं, दिलीप चिनोय और संतोष तिवारी जी। संतोष जी, व्यापार का आधार स्तंभ हमारे सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग माने जाते हैं और जब से एमएसएमई की संशोधित परिभाषा आई है, ऐसे में क्या हुआ है कि छोटे उद्योग बिना अपना प्रारूप चेंज किए हुए स्केल अप हो गए हैं। कैसे देखते हैं इस बदलाव को और विकसित भारत की दिशा में इन कोशिशों को?
0: आनंद, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और ये रेवोल्यूशन है और ये रेवोल्यूशन ऑलरेडी इंडिया में आपको दिख रहा है। अगर आप निचले स्तर पर, गांव के स्तर से लेके आप जिला के स्तर

0: पर जाएं या देश के कोने कोने में अगर जाएं तो युवा जो है वो आज पहले जैसा नहीं रहा। आज उसको नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, उसको एक इंडस्ट्री चाहिए। आप कितने ही अपने फैमिली में देख लीजिए, कहीं भी जाइए, कोई भी यंग यूथ जो आ रहा है उसको अपनी कंपनी चाहिए, उसको अपना बिजनेस चाहिए, उसका अपना आइडिया है, वो उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है। और ये बदलाव ऐसे ही नहीं आया है, ये बदलाव इसलिए आया है कि एक समय था जब ये कहा जाता था, और आज भी दिक्कतें हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% जो है वो दिक्कत नहीं, आपको बिजनेस चलाना हो दिक्कतें हैं, लेकिन आज ये स्थिति है कि सरकार ने जिस तरह से, आपने कहा एमएसएमई के लेवल होते हैं उसमें डेफिनेशन में चेंज किया गया, और जो करोड़ में जो पैसा है जिस तरह से आप डिफाइन होते हैं एमएसएमई, वो बड़ा कर दिया गया, 100 करोड़ कर दिया गया। वो सिर्फ इसलिए है कि जो एमएसएमई से रिलेटेड सहूलियतें हैं वो आपको मिल जाएं, और जो भी सरकार कर सकती थी वो सरकार ने किया है, और दिशा उसमें यही है कि अगला जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है आपको वो बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं करेंगे इंडिया में। अगला जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया में होने वाला है वो स्काई रूट करेगा। जो एक छोटी सी कंपनी मानी जाती थी वो आज स्पेस में अपने जो है प्रोडक्ट्स वो भेज रहा है। इसी तरह से आप अगर स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप में जिस जिस तरह की कंपनियां आ रही हैं, मैं बिल्कुल रूबरू हूं स्टार्टअप वर्ल्ड से, जिस तरह से आ रही हैं वो आप देखकर हैरान रह जाओगे कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आइडिया है और उनको बड़ा बिजनेस बनाना है। तो जिस तरह के एमएसएमई के डेफिनेशन में चेंजेस हैं या फिर जो भी इंसेंटिव्स जो दिया जाता है, अलग अलग विभाग और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग इंसेंटिव्स हैं जो सरकार ने लाए हैं। अगर आप स्पेस सेक्टर में आपको काम करना है तो आज भारत में स्पेस सेक्टर में काम करने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक कंपनी है जो आपको सहूलियत देती है, आपको फंड तैयार करती है, फंड देती है। दूसरी है जो कि एक संस्था है जो कि आपको टेक्नोलॉजी में हेल्प कोई चाहिए वो देती है। तीसरी है जो सरकार से आप चले जाइए और आप बोलिए कि देखिए हमको ग्लोबल कोई अट्रैक्शन चाहिए, ग्लोबल कोई हमें चाहिए, सीखना है हमें, बाहर जाना और सीखना है, उसमें मदद करती है। और मैंने सिर्फ स्पेस सेक्टर को कहा, हर सेक्टर में सेमीकंडक्टर चले जाइए। और हर अगले दिन जो है सरकार सेमीकॉन 2 में कुछ नई चीजें आई हैं, जो कि सेमीकॉन 1 जो था जिसमें इतने इन्वेस्टमेंट जो आए गुजरात में उसके आगे की चीज है, उसमें भी फिर जो है छोटे मंझोले उद्योग जो है उन लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए वो सारी चीजें आ रही हैं, हम लिस्ट नहीं कर रहे यहां पर। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने ना सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज को बल्कि लोअर लेवल पे माइक्रो स्मॉल और स्टार्टअप्स को जिस तरह से सपोर्ट करना और हैंड होल्डिंग करना शुरू किया है कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह के छोटे और मंझोले उद्योग जो है आने वाले दिनों में आपको बड़े बड़े उद्योगों में हेल्प करने वाला एक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए बिल्कुल खड़े हैं, और ये हो रहा है।
1: दिलीप जी, थोड़ी चर्चा जेम की कर लेते हैं। पहले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या सप्लाई केवल बड़ी कंपनियों या रसूखों तक कर लोकतांत्रिकरण किया है, और आंकड़े बताते हैं कि जेम पोर्टल की शुरुआत होने से लेकर अब तक 18.4 लाख करोड़ से अधिक का सरकारी व्यापार दर्ज हुआ है। जो जेम के आंकड़े हैं उसमें एमएसएमई कारोबारी, महिलाओं और छोटे उद्यमियों का जो योगदान है उसको आप कैसे देखते हैं?
2: जेम पोर्टल जो है एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, और ये इसको हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं। तो इसमें जितने भी गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट है, और वो जैसे आपने आंकड़े बताए गवर्नमेंट की काफी प्रोक्योरमेंट होते हैं, तो उसमें आपको डायरेक्टली उस पोर्टल पे लिस्ट करने होता है, और देश में चाहे आप स्टार्टअप हो जैसे संतोष जी ने कहा, चाहे मध्यम उद्योग हो चाहे लार्ज उद्योग हो, आप उस पे अगर बिड कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ला सकते हैं। इसका एक काफी अच्छा फायदा है क्योंकि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एक तरह से ट्रांसपेरेंसी हो जाता है। दूसरा, अगर आप देखें तो इसमें जो छोटे और स्मॉल इंडस्ट्री है उनकी एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो पेमेंट की प्रॉब्लम है। अब जेम पोर्टल को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से लिंक करके उसमें बिल डिस्काउंटिंग का एक जो प्रावधान है वो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज और छोटे जो स्टार्टअप्स है, और स्टार्टअप्स को एग्जेम्प्ट किया गया है क्वालिफिकेशन के फ्रेमवर्क में, तो उसमें ये एक नेशनल काइंड ऑफ मार्केट प्लेस किया गया है, और ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और अभी उन्होंने सारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको भी बोला है कि आप इसी से आगे जाकर के करिएगा। एक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेस भी क्रिएट किया गया है ईनैम, उसमें जो है आप कहीं पे भी एक कृषि उत्पादक हो आप अपना प्राइस डिस्कवरी कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और अगर आप देखें तो टोकनाइजेशन में भी अभी जो कर रहे हैं वेयरहाउस रिसीट टोकनाइजेशन का एक काफी सिलसिला चल रहा है। तो अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जो पहले हम DGSND उसको कहा करते थे वो एक फिजिकल सिस्टम था, अब वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है। दिल्ली में अगर आप देखें तो छोटे छोटे कॉलेजेस में भी उससे प्रोक्योर करते हैं, बड़े डिपार्टमेंट्स भी प्रोक्योर करते हैं, और ये जो ग्रोथ हुआ

0: ये खत्म करना बहुत जरूरी होता है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात से लेकर अपने अब तक के सफर में इस पर भी बहुत ज्यादा काम किया है। जन विश्वास अधिनियम ने लगभग 40,000 से अधिक शिकायतों को खत्म किया, कई मामूली उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। सवाल ये है कि इसका भारतीय उद्योगपतियों के मनोविज्ञान और आर्थिक कार्य प्रणाली पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है।
1: मैं इसको एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करता हूं आनंद जी, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग अलग जो स्टेप्स हैं उनको लेकर ये सूत्र जो है ना वो रिफ्लेक्ट करना भी जरूरी है। क्योंकि ये सारी चीजें, जैसा आपने कहा कि जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो उन्होंने इन सब चीजों को ग्राउंड लेवल पर ठीक किया था
0: जी।
1: उसमें से भी ये जो डिक्रिमिनलाइजेशन उसको बोलते हैं, बहुत सरल भाषा में आपको मैं बताऊंगा, इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी चीजों के लिए, मैंने पहले उल्लेख किया था इस बात का, छोटे छोटे नियमों के उल्लंघन के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। आप व्यवसायी हो, जाहिर तौर पर तरह तरह की दिक्कतें हैं, नियमों का उल्लंघन अगर हुआ और आपको जेल में डाल दिया जाए कोई छोटे से उल्लंघन के लिए, बड़ी बात थी और वो एक सिग्नल गलत देता था। तो जो जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023 का जो आया था, उसमें 183 ऐसे माइनर ऑफेंसेज को, करीब 42 सेंट्रल लॉज में, जहां पर कि इन सब के चलते आपको इम्प्रिजनमेंट या जेल में डाल दिया जाता था फॉर टेक्निकल और माइनर लैप्सेस, उनको मॉनेटरी जो है वो पेमेंट करके आपको छूट जाएंगे आप। बहुत बड़ी सहूलियत है ये। 2025-26 के बजट में जो जनविश्वास 2 बिल आया, उसमें ऐसे 355 प्रावधान जो है अक्रॉस 16 मोर सेंट्रल एक्ट जो है उनको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। देखने में बहुत आसान सी चीज लगती है, लेकिन आप सोच के देखिए उस व्यवसाय के लिए या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि किसी एक छोटे नियम के उल्लंघन के लिए आपको जेल में डाल दिया जाए, तो भारत जैसे देश में तो आपके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। आर्थिक जगत में फिक्की जो है वो एक बहुत बड़ी संस्था है भारत के, वहां पर एक बार हम ये चर्चा कर रहे थे कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा तकलीफ बड़े बिजनेसेस को, छोटे बिजनेसेस को और सबको देती। तो निकल कर ये आया कि ये जो लॉज हैं जो रिडंडेंट हैं, यानी वैसे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जिनकी कोई जरूरत नहीं है और उनको पालन करने के लिए उसमें सबसे ज्यादा कंपनियों का समय जाता है। ये बात यहां लिखा हम नहीं चर्चा कर रहे, पर मैं आपको परिप्रेक्ष्य के लिए बता रहा हूं। तो हमने जाकर केंद्र सरकार में, जहां बताना चाहिए वहां पर ये बताया। पहली दफा फिक्की ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया वो इकोनॉमिक सर्वे में आया कि ये रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको बेकार में जो पड़े हुए हैं इतने सारे और हजारों की संख्या में, जिनकी जरूरत कोई नहीं है, अगले साल के बजट में इन रूल रेगुलेशंस को सरकार ने हटा दिया। ऐसी चीजें भी हुई हैं। डिक्रिमिनलाइजेशन जो है, जो जनविश्वास बिल है, वो तो है बहुत बड़ी बात, लेकिन सहूलियत बढ़ाने के लिए भी जो रिडंडेंट लॉज थे उनको भी हटा दिया गया। तो चेंज करने के लिए आप ब्यूरोक्रेसी में मत जाओ कि एक सरकार, एक डिपार्टमेंट, एक मंत्रालय, उससे घूमते घूमते 15 साल लग गए और ये चेंज हुआ। नहीं, आप आइए लाइन मिनिस्ट्री को बताइए, यानी जिस मिनिस्ट्री के अंडर में आप हैंडल होते हैं, ऊपर के तौर पर सबसे टॉप में प्राइम मिनिस्टर्स के लेवल पर, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के लेवल पर उसको समझा जाएगा और अगर जायज है उसको ठीक कर दिया जाता है।
0: दिलीप जी, आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे कि जब भी हम व्यापार को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो एक चीज जो परेशान करती है वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट, यानी माल ढुलाई की लागत। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ने देश में लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के 13-14% से घटाकर सिंगल डिजिट की ओर लाने में जो भूमिका निभाई है, इसका असर आप कैसे देखते हैं?
2: ये भी एक तरीके से गुजरात से ही शुरू हुआ था, क्योंकि गुजरात में भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कीम था, ठीक है, क्योंकि पहला जो गति शक्ति का जो पहला था वो एक प्रगति नाम का एक सिस्टम था, और वो जो पीएम गति शक्ति बनाया जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में बनाया। प्रगति में क्या होता था कि ये प्राइम मिनिस्टर खुद रिव्यू लिए करते थे, जिसमें जो प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो कहीं नहीं जा रहे, उनका क्या कारण है, और उसमें काफी अकाउंटेबिलिटी होता था, क्योंकि जिसके पास वो एक तरीके से एक्शन पेंडिंग था उसका डॉक्यूमेंटेशन होता था, उसको क्लियर करना पड़ता था। फिर प्रगति में क्या हुआ कि एक बहुत अच्छी चीजें हुए, एक तो डिजिटल डेटा आ गया हर प्रोजेक्ट के बारे में, दूसरा फिजिकल मीटिंग्स नहीं होते थे, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस होते थे, तीसरा ये जीआईएस और जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन आ गया, चौथा सारे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट मिनिस्ट्रीज और जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग अथॉरिटीज वो इकट्ठा आ गया, और पांचवी जो किसी का अगर ग्रीवियंस होता था वो रिजॉल्व हो जाता था। अगर आप देखें 2026 का जो डेटा है तो 382 प्रोजेक्ट्स प्रगति में रिव्यू हुए थे, करीब 85 लाख करोड़ के भी थे और करीब 3,000 इश्यूज एक दिन रिजॉल्व हो गए। इसको एक नई सोच आई, ये प्रोजेक्ट्स को एक तरह से सैंक्शन नहीं करना चाहिए, इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए था। फिर 13 अक्टूबर 2021 में ये पीएम गति शक्ति, उन्हें एक लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट खड़ा किया और एक सेक्रेटरी था लॉजिस्टिक्स के लिए।

0: उसमें क्या किया था कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में देखें, तो अगर आपके पास एक किसी इंडस्ट्रियल इस्टेट में शहर में आपका एक फैक्ट्री है, तो आपको लोकल इंडस्ट्रियल इस्टेट से हाईवे तक ले जाना या एयरपोर्ट तक ले जाना या पोर्ट तक ले जाना, वो एक ज्यूरिसडिक्शन आता है। पोर्ट में दूसरा ज्यूरिसडिक्शन आता है। अगर आप हाईवे में ले गए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी आ जाती है, फिर पोर्ट आ जाता है, फिर एयरपोर्ट आ जाता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सारे जो बॉडीज है इसमें इंटीग्रेट करते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सीमलेस कनेक्टिविटी और उसको कैसे करें, और हम उसको इतना ध्यान नहीं देते कि नहीं, जो फास्ट टैग सिस्टम भी आया है टोल हाईवेज में, वो भी इसी का, क्योंकि टोल में वेटिंग होता था और टाइम करेक्टर था। एक कोई नया मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जैसा संतोष जी ने पहले धोलेरा का सेमीकंडक्टर्स का बोला था, अब सेमीकंडक्टर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट और पोर्ट कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि वो क्विक टर्न अराउंड है। तो एक तो आपने कॉस्ट की बात की थी, कॉस्ट तो एक चीज है जो हम 16% या 17% से हम उसको एक सिंगल डिजिट 8% या 9% में ले आए हैं। दूसरा जो पोर्ट में टर्न अराउंड टाइम है, एयरपोर्ट में टर्न अराउंड टाइम है, अगर आप देखें तो आज आप दिल्ली से मुंबई 17 या 18 घंटे में कर सकते थे, जैसे आपको 3 दिन या 4 दिन लगते थे। और ये जो फैक्ट्री से, रोड से, रेलवे से, लॉजिस्टिक पार्क से, पोर्ट और शिपिंग और एयरपोर्ट, जो नेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है, जो सेक्टर एसोसिएशन है, उनसे फीडबैक लिया जाता है भी कहां प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। गतिशक्ति जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक बिल्डिंग कनेक्टिविटी एज ए नेटवर्क का एक तरीका है। और सारा स्कीम आप देखें तो इसमें पीएम गतिशक्ति के द्वारा उन्होंने एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी अनाउंस किया था, और ये पूरा इंडिया एक मॉडल हो सकता है।
1: विषय बहुत व्यापक है, समय बहुत कम है संतोष जी, हम कार्यक्रम के अपने समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। 25 वर्षों का सफर हमने बहुत छोटे छोटे तरीकों से चर्चा करने की कोशिश की। इस सफर का जो लक्ष्य है वो है 2047 का विकसित भारत। कैसे देखते हैं आने वाले समय में इस आधार पर किस तरह की इमारतें बनते हुए, संक्षेप में?
2: जिस समय में मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी जी, और उस समय चुनाव का वक्त था, तो मैंने एक बहुत ही सीनियर ऑफिशियल फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे जो मेरे दोस्त थे, और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, चल रही थी, मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उनको गुजरात का एक्सपीरियंस था। तो मैंने पूछा कि एक विजनरी या इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, वो पूरे देश को विजन के तौर पर देखता है, दूसरी तरफ एक चीफ मिनिस्टर है जो कि यहां आएंगे वो जीत जाएंगे तो आएंगे, तो आपको क्या लगता है? उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया था, और वो इस पूरे 25 साल के सफर को समअप करता है और आगे की बात जो आपने 2047 की उसको भी इंगित करता है। उन्होंने ये कहा, संतोष देखिए, पॉलिसी बनाना ये भी जरूरी है, लेकिन पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करना ये आज देश की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लाया है। भारत को आज बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, इसलिए इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो देश की तरक्की जो है वो बड़े प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने में दिखेगी। 1.5 दशक की जो उनकी सरकार का जो एक्सपीरियंस है, आपको प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होते हुए दिखेंगे। यही प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन अभी तक जो आप ओल्ड एज इकोनॉमी में या इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे थे, आज आपको न्यू एज इकोनॉमी में ले जाना है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। 2047 में भारत में जो ग्रोथ होगा और जहां भारत पहुंचेगा, वो टेक लेड ग्रोथ होगा, टेक्नोलॉजी होगा। अभी हाल में वित्त मंत्री ने कहा बेंगलुरु में कि सेमीकंडक्टर, AI, ये सारी चीजें जो हैं देश के जो टॉप पॉलिसी मेकर्स हैं अब वो ये बात करने लगे हैं। प्रधानमंत्री तो पहले से करते हैं, AI हो, सेमीकंडक्टर हो। आगे का भारत जो 2047 का आप देखेंगे, मैं आंकड़ों पे नहीं जा रहा क्या ग्रोथ रेट होगा क्या होगा, पर टेक लेड ग्रोथ होगा। और 2047 में हम सिर्फ विकसित भारत नहीं होंगे, हम एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब होंगे, जो बनाता भी है, टेक्नोलॉजी इनोवेट भी करता है और विश्व में सप्लाई भी करता है।
1: दिलीप जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स।
0: देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री का एक जर्नी देखें तो गुजरात से भारत तक जो ये एक यात्रा सिर्फ योजनाओं की नहीं है, ये एक बहुत बड़ी परिवर्तन की एक कहानी है। यह सरकार की ये बदलती भूमिका है, क्योंकि जहाँ पे पहले वो एक गेटकीपर थी, आके आपको सबके चीज के लिए एक परमिशन चाहिए होता था, अब सरकार की अनुमति चाहिए थी, फिर सुविधाएं देने के लिए और सब चीजें प्राप्त करने के लिए मल्टीपल विंडोज हुआ करते थे, आपको कहीं कहीं जाने से। अगर अब जो सरकार देखे, आप कोशिश है कि ये सरकार कारोबार, निवेश और रोजगार के नए अवसर बनाने की काम कर रही है, और जैसे जो आज की इकोनॉमी है वो 2047 में इकोनॉमी में काफी अंतर होगा, और इस सरकार का ये प्रयास है कि सबको

0: साथ लेके, सबका विकास लेकर के आगे करके एक विकसित भारत बनाए।
1: यदि हम देखें तो पिछले 25 वर्षों में सुशासन से समृद्धि की यात्रा केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये करोड़ों युवाओं के सपने को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से जोड़ने की कहानी है। गुजरात की सिंगल विंडो से शुरू हुआ ये सफर आज डिजिटल इंडिया और विश्व स्तरीय वित्तीय केंद्रों तक पहुंच गया है। दिलीप जी आपका और संतोष जी आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद आनंद जी।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 18वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, व्यापक निवेश और सुलभ कारोबार। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और संतोष तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। श्रोताओं आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला जनसेवा देश सेवा का 18वां संस्करण। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आओ साथ चलें।

श्रोताओं, कार्यक्रम आओ साथ चले की एक और कड़ी के साथ मैं सिंधु मिश्रा आप सबसे फिर मुखातिब हूँ। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे साइबर सुरक्षा आज की जरूरत।

इस विषय पर। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता आज का युग डिजिटल युग है। इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन सेवाओं ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। बैंकिंग, शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, हर क्षेत्र में तकनीक का उपयोग बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल सुविधाएं बढ़ी हैं, वैसे वैसे साइबर अपराधों का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। श्रोताओं, ऐसे में साइबर सुरक्षा आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। अब प्रश्न उठता है कि साइबर सुरक्षा क्या है? इसका अर्थ है इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क और डेटा तक अनाधिकृत पहुंच, चोरी, हमले या नुकसान से सुरक्षित रखना। यह केवल बड़े संगठनों के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि आज हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में ऑनलाइन है, बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान समय में साइबर अपराध कई रूपों में सामने आ रहे हैं, मसलन हैकिंग, यानी किसी सिस्टम या अकाउंट को बिना अनुमति के एक्सेस करना। फिर बारी आती है फिशिंग की, नकली ईमेल या लिंक के जरिए लोगों से निजी जानकारी चुराना। ऑनलाइन फ्रॉड तो आम बात हो गई है, बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से पैसे की ठगी इसमें देखी जाती है। आइडेंटिटी थेफ्ट भी साइबर अपराध के अंतर्गत आता है, किसी की पहचान का दुरुपयोग, फिर डेटा को लॉक कर फिरौती मांगना। भारत सहित पूरी दुनिया में ऐसे मामलों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, जिससे लोगों की आर्थिक और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। श्रोताओं, साइबर सुरक्षा क्यों जरूरी है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, आज हम अपनी फोटो, आधार नंबर, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड, ये सब ऑनलाइन रखते हैं। यदि ये जानकारी गलत हाथों में चली जाए तो गंभीर नुकसान हो सकता है। आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बेहद जरूरी है। ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स के बढ़ते उपयोग के कारण वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ गया है। साइबर हमले केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं है बल्कि देश की सुरक्षा, सरकारी डेटा और महत्वपूर्ण संस्थानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। व्यापार और उद्योग की सुरक्षा पर भी खतरा हो सकता है। कंपनियों के डेटा और ग्राहकों की जानकारी सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। इसके कई उपाय हैं जिसके तहत हम बच सकते हैं साइबर फ्रॉड से। जैसे मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, पासवर्ड में अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह शामिल करें और इसे समय समय पर बदलते रहें। इससे अकाउंट की सुरक्षा और मजबूत हो जाती है। संदिग्ध लिंक और ईमेल से बचें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी सत्यता की जाँच जरूर कर लें। एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर अपडेट रखें, अपने सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें ताकि नए खतरों से सुरक्षा मिल सके। पब्लिक वाईफाई का सावधानी से उपयोग करें, सार्वजनिक नेटवर्क पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचें। श्रोताओं, सोशल मीडिया पर सतर्क रहें, अपनी निजी जानकारी जैसे पता, फोन नंबर, इन सबको सार्वजनिक ना करें। सरकार और संस्थानों की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण है। सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा भी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेष हेल्पलाइन और पोर्टल बनाए गए हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। सिर्फ तकनीकी उपाय ही पर्याप्त नहीं है बल्कि लोगों को जागरूक होना भी जरूरी है। अक्सर लोग जानकारी के अभाव में धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, इसलिए स्कूलों, कॉलेजों और समाज में साइबर सुरक्षा के बारे में शिक्षा देना बहुत जरूरी है। साइबर सुरक्षा आज के समय की अनिवार्य आवश्यकता है। श्रोताओं, यह केवल तकनीकी विषय नहीं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमें अपनी डिजिटल आदतों को सुरक्षित बनाना होगा और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करना होगा। यदि हम सावधानी और समझदारी से इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो हम साइबर अपराधों से काफी हद तक बच सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सुरक्षित डिजिटल जीवन ही

0: आधुनिक जीवन की सफलता की कुंजी है। श्रोताओं, अभी हमने आपसे चर्चा की साइबर सुरक्षा आज की जरूरत इस विषय पर। आज इसी से जुड़ी विशेष जानकारी करवाने जा रहे हैं, साइबर सतर्कता डिजिटल जीवन की ओर एक सुरक्षित कदम। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं श्री मनोज रतन चौथे, डीआईजी स्पेशल ब्रांच रांची। तो इनसे लेते हैं साइबर सतर्कता डिजिटल जीवन की ओर एक सुरक्षित कदम इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम में। नमस्कार सर।
1: नमस्कार मैडम, और नमस्कार सभी श्रोताओं को जो आज हमें इस माध्यम से सुन रहे हैं।
0: सर, देखा जाए तो डिजिटल माध्यम आजकल काफी बढ़ गया है और नेटवर्क के जरिए बहुत सारे क्राइम भी हो रहे हैं, जिसमें साइबर अपराध को लोग सामान्य रूप से जान रहे हैं और इसके शिकार भी आए दिन लोग हो रहे हैं। सर, साइबर अपराध क्या है और इससे जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं, इस बारे में मैं जानना चाहूंगी और साथ ही हमारे श्रोताओं को भी ये जानकारी करवाना चाहूंगी।
1: बिल्कुल मैम, ये जो साइबर का आपने पॉइंट उठाया है, ये आज के समय में बेहद रेलेवेंट है। और हम लोग जब फील्ड में काम करते हैं तो हमें कई तरह के ऐसे विक्टिम्स देखने को मिलते हैं जो कि केवल अज्ञानतावश या अवेयरनेस के अभाव में साइबर के या साइबर फ्रॉड के वो विक्टिम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो केवल अभी साइबर फ्रॉड ओटीपी मांगने तक, या सामने वाला आपको, मैं बैंक का एम्प्लॉय बोल रहा हूँ, आपका डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का नंबर आप शेयर करिए, ओटीपी शेयर करिए, यहाँ तक सीमित नहीं रहते हुए उसका एक्सपांशन काफी बड़ा हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आज के तिथि में यह है कि आज हरेक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और खास करके लगभग सभी के हाथ में स्मार्टफोन है, जो कि एक बहुत अच्छा टूल है आपको अच्छा काम करने के लिए, लेकिन वो साथ ही साथ आपको पोटेंशियल विक्टिम भी बनाता है साइबर फ्रॉड का भी। क्योंकि जब आपके हाथ में स्मार्टफोन होता है तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं वल्नरेबल होते हैं, साइबर फ्रॉड आपके साथ होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और उसी के लिए मुझे लगता है कि कई सारी सावधानियां, कई सारे अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने का काम लगातार भारत सरकार की जो I4C जैसी संगठन है या स्टेट गवर्नमेंट के भी हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आज हम लोग उसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके बारे में श्रोताओं को भी जागरूक करने की कोशिश करेंगे।
0: ये बात आपने कही, दिन देखा जा रहा है कि इससे जुड़े बहुत सारी शिकायतें हमें मिल रही हैं और लोग इसके शिकार घर बैठे हो जा रहे हैं। सर, इसके बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
1: सबसे पहले तो मैं शुरुआत में ही आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कॉन्सेप्ट पुलिसिंग में नहीं होती है। पुलिस किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है और भारत सरकार द्वारा भी पिछले 1-1.5 साल से लगातार अभियान चला करके इस बात को सभी लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है। और हाल ही में आपको पता होगा कि जुलाई 2024 से नए BNS और BNSS लागू किए गए थे, जो पहले की IPC और CRPC हुआ करते थे। और उसके बाद कई लोगों को ये भ्रम हुआ या मिसअंडरस्टैंडिंग रही है कि BNS या BNSS के चेंज होने के बाद में अब लोगों को डिजिटली भी अरेस्ट किया जा सकता है या फिजिकली अरेस्ट करने के बजाय डिजिटली लोगों को अरेस्ट में रखा जा सकता है। पर मैं आप सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कॉन्सेप्ट BNS या BNSS में इंक्लूडेड नहीं है। पुलिस किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर आपको कोई भी इस तरह का फोन या मैसेज आता है कि आपका कोई पार्सल कस्टम्स द्वारा पकड़ा गया है या कोई आपके पार्सल में किसी कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस जैसे कि गांजा, अफीम या कोई रेयर चमड़े का बैग, पर्स आपके सामान में पाया गया है और आपको उसके लिए हम डिजिटलाइज कर रहे हैं और आपको आपके घर में रहना पड़ेगा, तो आपको समझना होगा कि ये सामने वाला व्यक्ति एक साइबर फ्रॉडस्टर है और वो आपसे पैसा ठगने के लिए केवल इस तरह के ये तरीके आजमाता है। तो आपको इस तरह के जो मैसेजेस है, इस तरह के जो कॉल्स है, उनको 1930 एक नंबर है जो साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन है, जो आपको साइबर फ्रॉड होने के स्थिति में आपको हेल्प मुहैया कराएगा। और आपको जो फोन से या नंबर से मैसेज आया है उस नंबर को तत्काल ब्लॉक करने का भी काम 1930 के हेल्पलाइन आपके लिए कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में डिजिटल अरेस्ट आज एक रूप ले चुका है और मुझे यकीन है कि जो हम लोग अवेयरनेस के कार्यक्रम कर रहे हैं विभिन्न जगहों पे, विभिन्न चैनलों पे, उससे निश्चित रूप से इसमें लोग अवेयर होंगे और इस समस्या में निश्चित रूप से कमी आएगी।
0: सर, इसमें हमने भी देखा है कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए एक वीडियो कॉल आता है और उसमें एक पुलिस की वर्दी पहनकर बैठे हुए एक व्यक्ति मिलता है, जो देखा जाता है कि अगर हमारे परिवार में कोई बच्चा है तो उस बच्चे की आवाज की भी कॉपी की जाती है और फिर कहा जाता है कि बच्चा हमारी कस्टडी में है और कुछ गलत कृत्य करते हुए पाया गया है, इसलिए आपको थाने में इतनी रकम जमा करानी होगी अगर इसे छुड़वाना है। ये कहाँ तक सही है?
1: ये भी एक साइबर फ्रॉड का ही तरीका है और कभी भी पुलिस इस तरह का कॉल आपको नहीं करेगी, ना आपको वीडियो कॉल करके इस तरह का कोई निर्देश या आदेश देगी कि आपका बच्चा या आपके घर का कोई भी व्यक्ति हमारे पास थाने में लॉकअप में बंद है और आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा। और इस तरह का अगर कोई बात आपके सामने आता है तो आप तत्काल इसको नजदीकी थाने के माध्यम से इसको वेरीफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि ये 99% से ज्यादा, मैं तो कहूंगा कि 100% ये साइबर फ्रॉड ही होता है। कभी भी कोई पुलिस आपको इस तरह का पैसा देने के लिए फोन नहीं करेगी अगर वो जेन्युइन पुलिस वाले हैं तो। और डिजिटल अरेस्ट या इस तरह का जो भी मामला होता है ये लीगली कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ही पुलिस इस तरह के डिजिटली अरेस्ट करने की कोई पावर रखती है।
0: और सर, देखा गया है कि जब अभिभावकों के पास इस तरह के कॉल्स आते हैं तो चूंकि ये मामला उनके बच्चे से जुड़ा हुआ होता है तो वे काफी घबरा जाते हैं और तत्काल उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और जिस वजह से वो इस ठगी के शिकार भी हो जाते हैं। तो ऐसे अभिभावकों को आप क्या कहेंगे?
1: मैं सबसे पहले ऐसे अभिभावकों को मैं बताना चाहूँगा कि आप जब भी अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं तो कुछ एक चेकलिस्ट है, उसको आप लोग ज़रूर फॉलो करें। पहले तो आप ये तय कर ले कि आपका बच्चा मोबाइल हैंडल करने के लिए सक्षम है, उसका उम्र उस मोबाइल को हैंडल करने के लिए उस उम्र का वो मकाम पे वो पहुँच चुका है, ये सबसे पहली बात है। दूसरा, आप रेगुलर उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री या यूट्यूब में वो क्या एक्टिविटी करता है या ब्राउजर में वो क्या एक्टिविटी करता है, आप रेगुलर उसको देखते रहे। तीसरी चीज, आप उसके पास जो भी मोबाइल दे रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल ऐप डाउनलोड ना करें, ना ही उस फोन पे किसी तरह के OTP लिंक्ड मोबाइल आप उसके साथ रहने दें। कई बार ये होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है, सामने का कोई अननोन आदमी फोन करके उससे OTP पूछ सकता है और बच्चे अनजाने में भी OTP शेयर कर सकते हैं, इसीलिए उनके हाथ में इस तरह का कोई भी मोबाइल डिवाइस नहीं देना चाहिए जो कि आपके बैंक के खातों से या किसी भी तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो डीमैट अकाउंट्स हो या अन्य किसी तरह के अकाउंट्स हो जिसके साथ वो जुड़ा हो, ताकि आपके साथ इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स नहीं हो पाए। साथ ही जो बच्चे वेब ब्राउजिंग करते हैं उसको नियंत्रित करना ज़रूरी होता है। आजकल हम लोग रेगुलर पुलिसिंग के दौरान ये पाते हैं कि कई सारे जो एडल्ट बच्चे हैं वो कई बार जो पॉन है उसके भी आदि हो जाते हैं, तो मेरी अभिभावकों से एक अपील रहेगी कि लगातार आप अपने बच्चों का ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करते रहे, वो किस साइट्स को विजिट कर रहे हैं, किस तरह के वो वीडियोस देख रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ वो बात कर रहे हैं आदि अगर आप चेक करते हैं। और बच्चों की ज़रूरी होता है कि काउंसिलिंग पेरेंट्स के द्वारा की जाए। कई बार अभिभावकों के और बच्चों के बीच में एक पर्दा रह जाता है और बच्चे जो बाहर हुई चीज़ें हैं वो घर में आकर के बताने से परहेज करते हैं। बच्चों को अगर ये कॉन्फिडेंस

0: है कि अगर मैंने घर में आकर के बाहर जो चीज हुई है वो अपने माता पिताजी को अगर मैंने बताया तो उसको उनके द्वारा पॉजिटिवली लिया जाएगा, मुझे उल्टी डांट नहीं पड़ेगी और उस समस्या का मुझे हल मिल सकता है। ये बच्चे में जब आत्मविश्वास आप जगाने में सफल रहेंगे, मुझे लगता है कि बच्चा इस तरह के कभी गलत राह पे नहीं चलेगा, और उसको अगर कोई परेशानी भी आती है तो निश्चित रूप से अपने अभिभावकों की, अपने शिक्षकों की वो सहायता ले पाएगा और वो फ्रीली उस बात को बोल सकता है। तो मुझे लगता है कि अभिभावकों इन चीजों का वो ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग को साइबर फ्रॉड या इस तरह के जो भी उससे रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं उसमें कमी लाने में मदद मिल सकती है।
1: बिल्कुल सही बात है सर, और बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए आपने बेहद महत्वपूर्ण संदेश दिया। अभी एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाएं जो घर में हैं उनके हाथ में भी मोबाइल हैं, मोबाइल फोन्स का वो भी काफी अच्छे खासे रूप में प्रयोग कर रही हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना या फिर कुछ सामान वगैरह मंगवाना। कई बार देखा जाता है ऐसे लिंक भी उनके पास शेयर किए जाते हैं जिसको कहा जाता है कि ये क्लिक करने से कुछ गिफ्ट, कुछ उपहार आपको मिलेंगे, और इसके जरिए भी कुछ फ्रॉड्स देखे जाते हैं। सर, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दें।
0: बिल्कुल, ये आज सबसे बड़े मात्रा में होने वाला एक फ्रॉड के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। आपके फोन पे कई बार SMS आते हैं या WhatsApp पे मैसेज आता है कि ये लिंक आपको मिला है, डिस्काउंट कूपन इसके द्वारा डाउनलोड होगा, या एक APK फाइल होती है जिससे कि कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको कहा जाता है, और जैसे ही उस लिंक को आप क्लिक करते हैं या उस APK फाइल को आप डाउनलोड करके कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, आपके फोन का पूरा एक्सेस दूसरे किसी व्यक्ति के हाथ में चला जाता है, और वो व्यक्ति रिमोटली आपके फोन को या तो कंट्रोल कर सकता है या आप अपने फोन पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग का पासवर्ड डालना हो, OTP हो, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स डालना हो या अन्य किसी तरह के पर्सनल व्यक्तिगत आपके जो मैसेजेस होते हैं वो सबको वो दूर बैठे देख सकता है और उसका वो निश्चित रूप से मिसयूज कर सकता है और करते भी है। तो सबसे पहला मेरा अपील सभी श्रोताओं से यही रहेगा कि आप किसी भी अननोन व्यक्ति द्वारा भेजा गया लिंक को कृपया क्लिक नहीं करें, और कोई भी इस तरह का ऐप या लिंक जो आपको कहता है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा या इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ कैशबैक मिलेगा, कृपया उन चीज़ों से आप परहेज करें। जो ऑथेंटिक साइट से, शॉपिंग की वेबसाइट से, उसका आप कृपया यूज़ करें।
1: बिल्कुल सही बात है, और सर अमूमन देखा गया है कि हम ATM कार्ड का भी प्रयोग करते हैं, बैंक से हमारा ATM लिंक्ड होता है। कई बार बैंक के अधिकारियों का भी फोन आता है कि इसे आपका ब्लॉक किया जा रहा है कार्ड को, आप जल्द से जल्द यहाँ KYC वगैरह के लिए OTP जो भेजा जा रहा है वो बताएं। तो ऐसे हालात में भी लोग घबरा जाते हैं और बैंक की बात आती है तो उन्हें थोड़ी घबराहट महसूस होती है, और ऐसे में वो अपना लिंक के माध्यम से जो OTP आता है वो शेयर करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो एक सतर्कता और एक जानकारी के लिए, आप जागरूक रहने के लिए हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे?
0: जब आपको बोल रहा हूँ और आपका KYC एक्सपायर होने वाला है या आपको कोई डेटा या ब्यौरा मांगा जाता है, तो मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि बैंक्स आपको कभी भी आपका व्यक्तिगत डेटा नहीं पूछेंगी। आपको यदि कोई डेटा जमा भी करना है तो आपको आपका जो होम ब्रांच है या नज़दीकी उस बैंक का जो ब्रांच है, आपको वहाँ जा कर के उस कॉल के सत्यता की जाँच कर लेनी चाहिए, और वाकई में अगर आपका KYC एक्सपायर हो रहा है या और एडिशनल डॉक्यूमेंट बैंक अगर मांग रहा है तो आपको फिजिकली उस बैंक में जाकर के देने चाहिए। बैंक आपसे कभी भी आपके व्यक्तिगत डिटेल्स जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका वोटर ID नंबर, आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर या किसी तरह का OTP आपसे नहीं पूछता है, और ना ही उनको पूछने की सरकार द्वारा इसकी परमिशन दी गई है। इसलिए ये सबको मन मन में एक बार कंफर्म रूप से रख लेना चाहिए कि आपको कोई भी व्यक्तिगत डिटेल किसी भी फोन कॉलर को शेयर नहीं करने हैं। यदि आप उसको शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं साइबर ठगी के शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल सही बात है। और सर, जितनी तेजी से हमने तकनीकी क्षेत्र में विकास किया है, जितने गैजेट्स हमारे पास हमारे हाथों में आ गए हैं, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स, तो इनके जरिए हम साइबर फ्रॉड के शिकार हो जा रहे हैं। जाने और अनजाने दोनों ही ढंग से ये फ्रॉड हमारे साथ हो जा रहा है। अमूमन देखा जाता है कि ग्रामीण इलाके के जो भोले भाले लोग हैं, इसके गिरफ्त में ज़्यादातर आ जा रहे हैं, चाहे वो वजह उनकी अशिक्षा हो, गरीबी हो, या फिर कोई और वजह या जानकारी का अभाव हो। तो सर, ऐसे लोगों को आप सतर्क रहने के लिए अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे?
0: जैसे आपने कहा कि ग्रामीण भागों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो इस तरह के फ्रॉड्स को ज़्यादा शिकार होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जागरूकता नहीं होती है। कई बार जो हम लोग जागरूकता के अभियान चलाते हैं वो शहरों तक ही सीमित रह जाते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में जानकारी नहीं मिल पाती है। परंतु मैं सबको, और आकाशवाणी मुझे लगता है ये एक सबसे अच्छा माध्यम है कि भारत के हर कोने तक ये माध्यम पहुँचता है, और हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ दे सकते हैं वो भारत के हर एक कोने में हम लोग पहुँचा पाएंगे। तो इस तरह के माध्यमों का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और जो साइबर हाइजीन है या जो साइबर सैनिटेशन है, चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, या इवन आपके जो CCTV कैमराज हो, ये सारे ससेप्टिबल है, ये सारे आपके डिवाइसेस वल्नरेबल है साइबर फ्रॉड के लिए। जो भी साइबर रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जाती है विभिन्न न्यूज़ चैनल के माध्यमों से, विभिन्न सोशल मीडिया हैंडलों के माध्यम से, जो वेरीफाइड हैंडल से, या इस तरह के जो इंटरव्यूज होते हैं दूरदर्शन पे, आकाशवाणी पे या विभिन्न चैनलों पे, उस पे दिए जाने वाले इन सुरक्षा के जो नियम हैं उसको यदि सभी लोग अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, तो काफ़ी हद तक मुझे यकीन है कि इस तरह के जो फ्रॉड से उससे हम लोग बच सकते हैं। साइबर फ्रॉड करने वाले लोग और पुलिस, ये एक तरह से बिल्ली और चूहा का खेल है। वो हमेशा ही एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा ही एक नया तरीका इजाद करने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोगों को ठगा जाए, और पुलिस भी उन तरीकों को ढूंढ करके उस तरीकों के पीछे जो लोग होते हैं उनको पकड़ने की और उनको सजा दिलाने की कोशिश लगातार रहती है। परंतु इन दोनों के बीच में जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो होते हैं हमारे आम नागरिक, जो कि इन साइबर ठगों के वो बलि चढ़ जाते हैं। जो साइबर अवेयरनेस की जो बातें आज हम लोगों ने यहाँ कही है, वो सभी लोग अगर अपनाते हैं और थोड़ा सा ध्यान वो अपने एक्टिविटी पर, हम क्या डाउनलोड कर रहे हैं, हम किस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, हम किसके साथ क्या जानकारी शेयर कर रहे हैं, उस पे अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो काफ़ी हद तक हम लोग इस तरह के साइबर फ्रॉड से बच भी सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये भी फिर दोहराना चाहूँगा कि जो बच्चे आपके मोबाइल यूज़ करते हैं उनको निश्चित रूप से आपको निगरानी रखनी पड़ेगी, वो फ़ोन पे क्या देख रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि एक तो कम उम्र के चलते और दूसरा कम एक्सपोजर के चलते, कम जागरूकता के चलते साइबर बुली होने का या साइबर फ्रॉड उनके साथ होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो बड़े बुजुर्गों के साथ ही बच्चों का भी जो साइबर अवेयरनेस है वो स्कूलों के माध्यमों से और कॉलेजों के माध्यमों से मुझे लगता है कि हमें बढ़ाना पड़ेगा, और उसके दिशा में हम लोग लगातार कार्य भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसको सभी लोग अगर फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो काफ़ी हद तक हम लोग को रिलीफ मिल सकती है। और जो साइबर हेल्पलाइन नेशनल लेवल पे जारी की गई है 1930, उसका आप अधिक से अधिक अगर इस्तेमाल करते हैं आपको है कि इससे आपको साइबर ठगी हो सकती है, उस नंबर को तत्काल आप 1930 जो कि टोल फ्री नंबर है पे आप रिपोर्ट करें, और उस नंबर के ऊपर में तत्काल एक्शन इनिशिएट हो सकती है। तो ये मुझे लगता है कि जो आम लोग हैं, जो विक्टिम होने के सबसे ज्यादा जिनकी आशंका बनी रहती है, उनके द्वारा थोड़ा सा भी जागरूकता दिखाया जाता है तो काफी हद तक हम इस साइबर फ्रॉड को लगाम लगा पाएंगे।
1: सर, स्टॉक एक्सचेंज में भी लोग

0: ऐसे धड़ल्ले से लगा रहे हैं, कई लिंक आते हैं उसके लिए भी, और उसमें करोड़ों तक की ठगी हो जाती है लोगों के साथ। तो इसके अवेयरनेस के लिए, इसमें सजगता के लिए आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल आपने है, खास करके कोविड के बाद में लोगों में स्टॉक मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट में काफ़ी रुचि दिखाई जा रही है, और उसी का फायदा उठाते हुए साइबर फ्रॉड्स द्वारा कई तरह के लिंक्स, कई तरह के डमी डीमैट अकाउंट एप्स बनाए जा रहे हैं, और उसमें पैसे लेने के बाद में वो पैसे गायब हो जा रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड टिप्स आते हैं तो कृपया उसके ऊपर यकीन नहीं करें। आज भी आप देख सकते हैं, आपको कई तरह के एसएमएस आते हैं जिसमें आपको एक स्टॉक का नाम दिया जाता है और कहा जाता है कि ये स्टॉक अभी ऊपर जाएगा, इससे आपको मल्टीफोल्ड पैसा आप बना सकते हैं। तो इन चीजों पर यकीन नहीं करें, ये मैनिपुलेटिव स्टॉक टिप्स होते हैं। वो पंप एंड डंप नाम की एक स्कीम होती है, उसके तहत स्टॉक को पहले ऊपर चढ़ाया जाता है और फिर नीचे गिराने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद फिर जो आम जनता है, इन्वेस्टर्स है, उनका पैसा हड़पने की एक कोशिश होती है। तो इस तरह की जितने भी ये साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा अपनाई जाती है तरीके, उसको कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, और खास करके पोस्ट कोविड जो डीमैट अकाउंट रिलेटेड फ्रॉड्स है, इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। कई बार आपको एक लिंक आ जाती है और कहा जाता है कि आप अगर ये डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको कुछ मनी बैक दिया जाएगा या कैश बैक दिया जाएगा, और उस लालच में लोग उस तरह के लिंक्स पे, ऐप्स पे क्लिक करते हैं और अपना पूरा का पूरा बैंक का खाता खाली करवा के बैठ जाते हैं। तो थोड़ा सा अवेयरनेस आप अगर इसमें अपनाते है, और आज के डेट में आपके पास, आपके हाथ में इंटरनेट है, किसी भी आपको सस्पिशियस लिंक का पता लगाने के लिए कई तरह के एप्स उपलब्ध है, आप उसका सहारा ले सकते हैं ताकि इस तरह के जो भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं उससे आप बचे हुए रहे।
0: सर, साइबर अपराध से जुड़ी क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं और किस तरह से हम इस ठगी के शिकार हो सकते हैं? आपने काफी विस्तार से इस बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दिया, और सर, कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला, हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद मैडम, और मुझे आशा है कि आज के कार्यक्रमों से हमारे श्रोताओं को भी काफी सहायता होगी, और अगर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर हम एक भी साइबर फ्रॉड होने से अगर बचा ले तो मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम सफल हुआ। धन्यवाद, जय हिंद।
2: चलें, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। सूत्रधार थी सिंधु मिश्र, प्रस्तुति एवं संयोजन प्रभुशंकर, ये प्रसारित किया गया। आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। हम आपको बताते चले आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम के विषय में। अब से बस थोड़ी देर बाद 4:35 पे आप सुनेंगे कार्यक्रम पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं कड़ी। सांझ सरगम कार्यक्रम 4:50 से आप सुन सकेंगे। प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम के 5 बजे और 6 बजे आप सुन सकेंगे। युवाणी कार्यक्रम 5:02 से और 5:30 पे श्रमिक लोक कार्यक्रम का प्रसारण होगा। खेती बाड़ी कार्यक्रम 6:02 पर। आज इस कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी का विषय है झारखंड में धान की प्रमुख बीमारियां, विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्यकांत मणिक। कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रभु शरण की। कार्यक्रम युवाणी की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की और श्रमिक लोक कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रभु शरण की। हमारे दूसरा कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 से। कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रभु शरण की है। शाम के 7 बजे प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। जिले में आजकल 7:11 पे 7:15 पे आदिवासी यात्रा कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम रात्रि 7:45, फिल्म संगीत कार्यक्रम रात्रि 8:00, कार्यक्रम का नाम है रजनीगंधा, सुर्खियों में रात्रि 8:30 पे, सुनहरी यादें रात्रि 10:00, और शास्त्रीय संगीत में आज सियाराम तिवारी, पंडित सियाराम तिवारी प्रस्तुत करेंगे राग जय जयवंती में ध्रुपद गायन, साथ में राग शंकरा में गायन। ये था आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं कड़ी।
3: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 18वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, व्यापक निवेश और सुलभ कारोबार। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चेनॉय और संतोष तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
4: एक समय था जब भारत में एक नया कारखाना शुरू करने के लिए 50 से ज्यादा दफ्तर

0: नमस्कार, आकाशवाणी की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कामिनी। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की धड़कन हमारे अन्नदाता यानी किसान हैं। हमारे देश की दो तिहाई आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। जब तक हमारा यह अन्नदाता समृद्ध और आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक एक सशक्त भारत की कल्पना अधूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से देश सेवा के महासंकल्प और सार्वजनिक जीवन में उनके ऐतिहासिक नेतृत्व को रेखांकित करते हुए केंद्र सरकार ने देश के छोटे और सीमांत किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया है। इसी दूरदर्शी सोच का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी उदाहरण है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। राज्य के गिरिडीह से लेकर गुड्डा जिले के सुदूर जंगलों पहाड़ों तक यह योजना कैसे किसानों को महाजनों के पारंपरिक चंगुल और कर्ज जाल से मुक्त कर रही है और उनकी आय बढ़ा रही है, आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। आइए सुनते हैं समाचार कक्ष की यह विशेष प्रस्तुति।
1: अंत्योदय और जन सेवा के मूल संकल्प को सच करने में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आज देश के आर्थिक इतिहास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। आजादी के बाद दशकों तक देश का छोटा किसान ऋण और आर्थिक सुरक्षा के साए में जीने को मजबूर था, लेकिन देश के छोटे और सीमांत किसानों को एक गरिमापूर्ण जीवन और प्रत्यक्ष आर्थिक संबल देने के लिए शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना ने आज तस्वीर बदल दी है। यह राशि किसी बिचौलिए या दलाल के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे तकनीक के इस्तेमाल से लाभार्थियों के बैंक खातों में 100% पहुंच रही हैं। बिना किसी कटौती और बिना किसी बाधा के सीधे किसानों के श्रम को सम्मान देने वाली इस योजना के मूल मंत्र और व्यापक विजन को स्पष्ट करते हुए आइए सबसे पहले सुनते हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।
2: साथियों, आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है।

0: प्रधानमंत्री के इसी दूरदर्शी विजन का असर आज हमारे राज्य के कोने कोने में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। गिरिडीह जिले की बात करें तो यहाँ की पथरीली, ऊबड़ खाबड़ और चुनौतीपूर्ण भूमि पर पसीना बहाने वाले किसानों के जीवन में इस योजना ने एक नया सवेरा लाया है। राज्य में खेती मानसून के जुए जैसी रही है। यहाँ पूंजी की कमी के कारण किसान उन्नत तकनीकों का उपयोग नहीं कर पाते थे। पहले जहां खरीफ और रबी फसलों के समय खाद, उन्नत बीजों और कीटनाशकों के लिए किसानों को स्थानीय साहूकारों और महाजनों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब समय पर मिलने वाली निश्चित सम्मान निधि ने उनकी आर्थिक राह बेहद आसान कर दी है। यह राशि भले ही किस्तों में आती है, लेकिन यह उस वक्त आती है जब किसान को अपने खेत में निवेश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। गिरिडीह के जागरूक किसान अशोक वर्मा, अमित वर्मा और रघुनाथ वर्मा अपने जीवन और खेती में आए इस अभूतपूर्व बदलाव को कुछ इस तरह साझा करते हैं।
1: मैं अमित कुमार वर्मा, जिला गिरिडीह का एक किसान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत सारे किसानों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें से एक प्रमुख योजना है पीएम किसान योजना। इस योजना के तहत पहले किसानों को जो ब्याज लेना पड़ता था और हम लोग उसका पैसा भरपाई नहीं कर पाते थे, उस योजना से अब हम लोग को राहत मिल जाती है।
2: मैं अशोक कुमार वर्मा, प्रखंड गिरिडीह का एक किसान हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों के प्रति बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें सर्वोपरि है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसमें किसान गणों को साल में 6,000 रुपया चार चार माह के अंतराल पर 2,000 रुपया करके दी जाती है। उन पैसों से किसान गण अपने खेती के जरूरी के लिए खाद, बीज व अन्य उपकरण की खरीदारी करते हैं।
3: मैं रघुनाथ प्रसाद वर्मा, ग्राम मोतीलेदा का किसान हूं, गिरिडीह जिला झारखंड का निवासी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो किसानों के लिए नई नई योजनाएं चलाई जा रहा है, जैसे किसान सम्मान निधि, जिसमें किसानों को कुछ राशि खेती करने के लिए मुहैया कराया जाता है, और इसके साथ पीएम कुसुम योजना जो कि बिना बिजली के सौर ऊर्जा से पटवन की सुविधा है, जिससे कि किसानों को सिंचाई में तेल की बचत, पानी की तेल की बचत होता है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, जिसके तहत हम लोग को ड्रिप सिंचाई योजना, बूंद बूंद सिंचाई योजना का लाभ मिला है, और इससे काफी किसान लाभान्वित हुए हैं और हमको भी इसमें फायदा हो रहा है। कम पानी में अच्छा खेती हो रहा है। और इसके साथ किसान सम्मान निधि, किसान समृद्धि योजना के तहत योजनाएं मिल रही है, बहुत यहाँ के किसान लाभान्वित हो रहा है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ।
0: गिरिडीह जिले में यह योजना केवल कागजों पर नहीं बल्कि किस व्यापक और पारदर्शी स्तर पर धरातल पर काम कर रही है, इसका अंदाजा प्रशासनिक और बैंकिंग आंकड़ों से आसानी से लगाया जा सकता है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लगातार कैंप लगा रहे हैं कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों का कोई भी योग्य और सीमांत किसान इस लाभ से वंचित ना रहे। तकनीक के माध्यम से लीकेज को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। आइए सुनते हैं गिरिडीह के जिला कृषि पदाधिकारी रंजीत मंडल का इस प्रशासनिक व्यवस्था और प्रगति पर क्या कहना है।
4: मैं रंजीत मंडल, जिला कृषि पदाधिकारी। किसान सम्मान निधि योजना में गिरिडीह जिला में 1,42,024 किसान इनरोल्ड हैं और इनको लाभ मिल रहा है। इस योजना से इस छोटे अमाउंट का बीज, खाद, कीटनाशक इत्यादि में प्रयोग करके वो समय पर खेती कर लेते हैं। साथ साथ जो छोटे किसान हैं, जो कि खेती के इतर बकरी पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन इत्यादि जो करते हैं, तो कम अमाउंट लगा के वो छोटे छोटे यूनिट का जो है काम करके काफी लाभ उठा रहे हैं। हमारे यहाँ पे लगभग समय से इनका जो है पेमेंट हो जा रहा है। साथ ही साथ किसान सम्मान निधि से जो किसानों को अमाउंट मिलता है 2,000 रुपया करके, उनसे जो है किसान के जो अपना खेती बाड़ी करना चाहिए।
0: वास्तव में इस योजना की सबसे बड़ी ताकत इसकी अभूतपूर्व पारदर्शिता है। पीएम किसान पोर्टल और आधुनिक तकनीक के समन्वय ने बिचौलियों की संस्कृति पर हमेशा के लिए विराम लगा दिया है। अब किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने या किसी बाबू की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। राज्य सरकार और बैंकों के सहयोग से सुदूर जंगलों और सुदूर पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर ई केवाईसी और आधार लिंकिंग की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। इसका सीधा परिणाम यह हुआ है कि राज्य का सबसे गरीब, अशिक्षित और सीमांत किसान भी आज सीधे डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन चुका है। तकनीक की इसी सुगमता ने किसानों के मन में व्यवस्था के प्रति एक नया विश्वास और सुरक्षा का भाव जगाया है।

0: ग्रीडी की पथरीली भूमि से आगे बढ़ते हुए जब हम संथाल परगना के ऐतिहासिक और जनजातीय बहुल गोड्डा जिले का रुख करते हैं तो वहां भी विकास की यही बयार दिखाई देती है। गोड्डा जिले के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों, पहाड़ियों और सीमांत गांवों में रहने वाले छोटे किसान, जो पारंपरिक रूप से सिर्फ वर्षा आधारित खेती पर निर्भर थे, आज डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से सीधे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन के मेल ने इन सुदूर क्षेत्रों के किसानों को सीधे देश की मुख्य वित्तीय धारा से जोड़ दिया है। गोड्डा जिले के अग्रणी बैंक प्रबंधक प्रभात रंजन आंकड़ों के साथ इस बैंकिंग और आर्थिक क्रांति की सफलता को रेखांकित करते हैं।
1: मैं गोड्डा एलियम बोल रहा हूँ, प्रभात रंजन। इसमें जो पीएम किसान का जो बेनिफिशियरी का डेटा मांगा गया, उसमें हमारे पास जो डेटा उसके अनुसार 109,736 ये नंबर है पीएम किसान बेनिफिशियरी का।
0: इस सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था और सीधे खाते में आने वाली राशि ने गोड्डा के सीमांत आदिवासी और सब्जी उत्पादक किसानों को कितनी बड़ी राहत दी है और उनके आत्मसम्मान को कैसे बढ़ाया है, आइए सीधे सुनते हैं गोड्डा के विभिन्न सुदूर गांवों से जुड़े इन किसानों की जीवनी।
2: मेरा नाम रजनीश कुमार है। पीएम किसान तो मिलता है, पीएम किसान से तो फायदा होता है खेती करने में, बहुत सारा जैसे खाद बीज, जब समय पे पैसा नहीं रहता है तो पीएम किसान का पैसा से ही उसको यूज कर लेते। सिंघाड़ी में तो सब्जी का ज्यादा खेती होता है, हम लोग का कृषि प्रधान है, सिंघाड़ी सबसे ज्यादा फेमस है सब्जी के लिए।
3: मैं बिहारी प्रसाद शाह, गोड्डा जिला के अंतर्गत में, मैं पीएम किसान योजना का हमें बहुत सहयोग मिला और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे

0: संथाल परगना के ऐतिहासिक और जनजातीय बहुल गोड्डा जिले का रुख करते हैं तो वहाँ भी विकास की यही पायार दिखाई देती है। गोड्डा जिले के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों, पहाड़ियों और सीमांत गांवों में रहने वाले छोटे किसान, जो पारंपरिक रूप से सिर्फ वर्षा आधारित खेती पर निर्भर थे, आज डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से सीधे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन के मेल ने इन सुदूर क्षेत्रों के किसानों को सीधे देश की मुख्य वित्तीय धारा से जोड़ दिया है। गोड्डा जिले के अग्रणी बैंक प्रबंधक प्रभात रंजन आंकड़ों के साथ इस बैंकिंग और आर्थिक क्रांति की सफलता को रेखांकित करते हैं।
1: मैं गोड्डा एलडीएम बोल रहा हूँ, प्रभात रंजन। इसमें जो पीएम किसान का जो बेनिफिशियरी का डेटा मांगा गया, उसमें हमारे पास जो डेटा उसके अनुसार 109,736 ये नंबर है पीएम किसान बेनिफिशियरी का।
0: इस सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था और सीधे खाते में आने वाली राशि ने गोड्डा के सीमांत आदिवासी और सब्जी उत्पादक किसानों को कितनी बड़ी राहत दी है और उनके आत्मसम्मान को कैसे बढ़ाया है, आइए सीधे सुनते हैं गोड्डा के विभिन्न सुदूर गांवों से जुड़े इन किसानों की जीवानी।
2: मेरा नाम रजनीश कुमार है। पीएम किसान तो मिलता है, पीएम किसान से तो फायदा होता है खेती करने में बहुत सारा, जैसे खाद बीज। जब समय पे पैसा नहीं रहता है तो पीएम किसान का पैसा से ही उसको यूज कर लेते। सिंघाड़ी में तो सब्जी का ज्यादा खेती होता है, हम लोग का कृषि प्रधान है, सिंघाड़ी सबसे ज्यादा फेमस है सब्जी के लिए।
3: मैं बिहारी प्रसाद शाह, गोड्डा जिला के अंतर्गत में। मैं पीएम किसान योजना का हमें बहुत सहयोग मिला और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। फसल योजना में हमें लाभ मिला और मिलते रहेगा आने वाला समय में भी।
4: मेरा नाम है जयराम माधव। हम लोग किसान क्रेडिट पैसा मिलता है समय पर, उसके फिर बीच में 2 महीना के बाद फिर पैसा घुसता है। हम लोग उसमें सब्जी के मतलब खाद उद बीज का टोटल चीज हमको मिल जाता है।
5: मेरा नाम है अंतलाल महतो। हमको किसान क्रेडिट पैसा मिल रहा है 6 महीना में 2000-2000 करके मिलता है, उससे वही खाद उद लेते हैं।
6: संतोष कुमार सिंह, मेरा घर सिंगारपुर, पंचायत धनगुड़िया पड़ता है। हमको सरकार 4 महीना पे 2000 करके देता है, 3 किस्त में 6000 रुपया। उससे हमको बहुत लाभ होता है, धान का बीज हो, खाद हो, उससे हमको खेती करने में बहुत सुविधा मिलता है हम लोगों को।
0: गिरिडीह के 1,42,000 और गोड्डा के 1,09,000 से अधिक किसानों की ये तृप्त और मुस्कुराती आवाजें इस बात की साक्षात गवाह हैं कि जन सेवा से देश सेवा का संकल्प किस तरह राज्य के खेतों में लहलहा रहा है। डिजिटल समावेशन, बिचौलियों का खात्मा और सीधी आर्थिक मदद ने सूबे के किसानों को न केवल साहूकारों के शोषणकारी कर्ज जाल से हमेशा के लिए मुक्त किया है, बल्कि उन्हें अपने देश ने गर्व से सिर उठाकर जीने का सम्मान भी दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर और गोड्डा से नीरव किशोर के साथ समाचार कक्ष से मैं कुंदन कुमार वर्मा।
7: अभी आप थे होने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर केंद्रित हमारी यह विशेष प्रस्तुति। स्पष्ट है कि जब देश का किसान आत्मनिर्भर और सशक्त होगा, तभी हमारा राष्ट्र विकसित भारत के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ेगा। इसी के साथ आकाशवाणी की इस विशेष प्रस्तुति को यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। समाचार कक्ष की इस विशेष प्रस्तुति की संपादक हैं महविश रहमान और प्रवक्ता तथा आलेखकार कुंदन कुमार वर्मा के साथ मुझे यानी अपनी

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम।

हेमंत कुमार के गाये इस गीत के साथ ही आज का सांझ सरगम कार्यक्रम बस यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची में झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल और कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने 5 गोल्ड मेडल समेत 207 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। उन्होंने इस मौके पर युवाओं से देश के विकास में सकारात्मक योगदान देने का आह्वान किया। रांची के मोरहाबादी में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि झारखंड की 9 जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और सुदृढ़ीकरण के लिए 9 अक्टूबर को भाषा मार्च निकाला जाएगा। इसमें विभिन्न जनजातीय भाषाओं से जुड़े छात्र और प्रतिनिधि पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने पर आंदोलन को विश्वविद्यालय स्तर तक ले जाया जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे के उप महाप्रबंधक मनीष जैन ने सोमवार को टाटानगर स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बर्मा माइंस छोर पर चल रहे स्टेशन विस्तार, 4-लेन सड़क पार्किंग और अन्य विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उप महाप्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करने का निर्देश दिया। रामगढ़ कॉलेज में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंतर महाविद्यालय पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय से संबद्ध 7 महाविद्यालयों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। कुलपति प्रोफेसर डॉ. चंद्रभूषण शर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने पढ़ाई के साथ खेल को भी जरूरी बताया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में पुलिस ने संगठित अपराध और कथित अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए कदीम खान से जुड़े बताए जा रहे ठिकानों की जांच शुरू की है। पुलिस ने किरायेदारों को खाली कराया और उनके सत्यापन की तैयारी शुरू की। साथ ही कदीम खान की पत्नी डॉली परवीन से जुड़ी बताई जा रही संपत्तियों की भी पड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारी आज की इस सांध्यकालीन सभा में। आज की सांध्यकालीन सभा में आप सभी श्रोता दोस्तों की हम सफर हूँ मैं संगीता। आइए श्रोताओं करते हैं आज के सांध्यकालीन सभा की शुरुआत और आप सभी को देते हैं जानकारी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा दे दें। अब से कुछ ही देर बाद श्रोताओं, यानी कि संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवाएंगे एक ही गायक कलाकार अभिजीत भट्टाचार्य को। कार्यक्रम खेती गृहस्थी, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा संध्या 5:30 पर। संध्या के 6:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार, और संध्या के 6:02 पर हम आपके साथ होंगे क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रम हो अखड़ा को लेकर। युवाणी, हमारे युवा दोस्तों को संबोधित इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे संध्या के 6:30 पर। संध्या 7:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार, यहीं से प्रसारित जिले में आजकल का प्रसारण होगा संध्या 7:10 पर। 7:15 पर आप आनंद लेंगे आप सभी श्रोताओं के फरमाइशी खतों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का। संध्या के 8:00 का प्रसारण समय रहेगा फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का। 8:45 पर प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। रात्रि के 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को, जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। गजलों का कार्यक्रम महफिल, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि के 10:00। 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11:00 आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और रात्रि के 11:10 पर श्रोताओं हमारे आज के सभा समापन की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं, ये थी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:05 हो चुके हैं। वक्त है कार्यक्रम गुलदस्ता का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ही गायक कलाकार अभिजीत भट्टाचार्य को। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत फिल्म यस बॉस के इस गीत के साथ। इस गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, धुन है जतिन ललित की।

0: फिल्म बेवफा सनम से ये गीत आपने सुना। इस गीत के बोल लिखे थे गीतकार अताउल्ला खान ने और धुन थी निखिल विजय की, और आवाज़ जैसा कि आप सभी को पता है गायक कलाकार अभिजीत भट्टाचार्य की। इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366 97, टोल फ्री नंबर 1444 99 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इन जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुलदस्ता में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से, आपकी रेडियो सखी संगीता के साथ। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म अंजाम से। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन है आनंद मिलिंद की, और आवाज़ जैसा कि आप सभी को पता है अभिजीत भट्टाचार्य की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

फिल्म अंजाम से ये गीत आपने सुना, गायक कलाकार अभिजीत भट्टाचार्य के स्वर में। इस गीत के बोल लिखे थे समीर ने और धुन थी आनंद मिलन की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म राजा बाबू से। इस गीत के आवाज़ें दी हैं गायक कलाकार अभिजीत भट्टाचार्य और साथियों ने। बोल समीर के हैं और धुन एक बार फिर से आनंद मिलन की।

फिल्म राजा बाबू के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हमने आपको सुनवाए एक ही गायक कलाकार अभिजीत भट्टाचार्य के स्वर में गाए हुए चनचुनिंदा नगमे। और इस गीत के साथ ही श्रोताओं, अब मुझे यानी संगीता को इस कार्यक्रम से विदा दें। नमस्कार, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम, खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को कोमल नायक का जोहार। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना इस विषय पर आप सभी को जानकारी देंगे। किसान भाई बहनों, ये योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना है। झारखंड सरकार इस योजना के तहत 50% से लेकर 90% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। बकरी, सुअर, मुर्गी और बत्तख पालन में लाभार्थियों को 75% से 90% तक का अनुदान मिलता है। गाय और भैंस यानी दुधारू गाय या भैंस खरीदने, मवेशी बीमा और उपकरणों के लिए सामान्य श्रेणी के डेयरी किसानों को 50% से 75% तक की सहायता दी जाती है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत गरीब परिवारों, विधवाओं और दिव्यांग महिलाओं को 90% तक की भारी सब्सिडी का लाभ मिलता है। पशुधन विकास मिशन के तहत मनरेगा को शामिल कर पशुओं के रहने के लिए शेड निर्माण का खर्च भी सरकार उठाती है। किसान भाई बहनों, आवेदनकर्ता झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं, स्वयं सहायता समूह, दिव्यांग और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। लाभार्थी ग्रामीण किसान, पशुपालक या खेतिहर मजदूर होना चाहिए। पशुओं को रखने और उनके लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज लगेंगे वो है आधार कार्ड, झारखंड का निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, भूमि के दस्तावेज या घोषणा पत्र लगेंगे। आप आवेदन के लिए अपने नज़दीकी प्रखंड कृषि अधिकारी या प्रखंड पशुपालन अधिकारी के कार्यालय से इस योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म को पूरी तरह भरकर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं। तो किसान भाई बहनों, अभी हमने आपको जानकारी दी झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के बारे में। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं पंचपरगनिया लोकगीत का सुभाष कोइरी और साथी के स्वरों में।

0: प्रस्तावना। जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समंदर का जल स्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
1: किसान भाई बहनों, आज हम फिर से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं निकेश जी से, जो कि पहले भी हमारे कार्यक्रम में जुड़कर भिन्न भिन्न साग सब्जियों की खेती के बारे में बता चुके हैं। और आज हम फिर से इनके गांव पहुंचे हुए हैं और हम इनसे अपराजिता फूल की बागवानी कैसे करें और इसकी देखभाल, इस विषय पर पूरे विस्तार से जानेंगे। तो निकेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार
2: जी। जोहार।
1: तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अपराजिता के पौधे के बारे में।
2: जी, अपराजिता एक तरह का बेल होता है। बेल यानी लता जो दीवार, फिर ग्रिल या फिर रस्सी जिसमें आप सहारा दिए होते हैं, उस पर चढ़े हुए आपको देखने को मिलेगा
1: जी।
2: यह एक लतेदार पौधा है। ज्यादातर आप देखेंगे कि लोग घरों के मुख्य द्वार की दीवार में लगाना पसंद करते हैं
1: जी। तो इस बेल, मतलब बेल की ऊंचाई या जो लते हैं, कितनी ऊंचाई तक ये जा सकती है?
2: जी, इस बेल की ऊंचाई लगभग 5 से 11 फीट तक जा सकती है।
1: अच्छा।
2: जबकि 2 से 3 फीट इसकी लते की चौड़ाई होती है।
1: अच्छा। कौन कौन सी किस्म होती है?
2: आप अधिकतर हमारे क्षेत्र में देखे होंगे कि नीले रंग के फूल वाली अपराजिता काफी पाई जाती है। अपराजिता ऐसे में इसकी 3 किस्म पाई जाती है।
1: अच्छा।
2: पहला नीले रंग के बैगनी रंग के फूल वाली अपराजिता बेल, दूसरा सफेद रंग वाली और तीसरा गुलाबी रंग वाली अपराजिता पाई जाती है।
1: अधिकतर तो हमारे क्षेत्र में देखते हैं निकेश जी की नीले रंग की काफी प्रचलित है फूल।
2: जी जी।
1: तो किस तरह की अपराजिता का पौधा लगाते हैं आप?
2: आप अपराजिता का पौधा 2 तरीकों से लगा सकते हैं। आप इसकी लगभग यानी कि कलम भी लगा सकते हैं और आप चाहे तो इसका बीज भी खरीद कर लगा सकते हैं।
1: अच्छा।
2: मैंने तो इसके पहले कलम लगाई थी, फिर बाजार से बीज लेकर अभी इसकी बागवानी किया।
1: अच्छा। तो एक बीज से पौधा कब तक निकल जाता है?
2: वैसे तो पौधा तो 15 से 20 दिन के अंदर आपको दिख जाएगा।
1: अच्छा।
2: लेकिन इसे पूरा बेल बनने में 5 से 6 महीना का समय लग जाता है। और आपने पौधों की कलम लगाई है तो महज 3 से 4 महीने में ही फूल देखने को मिल जाएगा
1: जी। तो आप तरीका बता सकते हैं पौधों को या बीज को लगाने का?
2: जी बिल्कुल। अगर आप अपराजिता के पौधे को बीज के माध्यम से उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी नज़दीकी बीज भंडार से इसका बीज खरीद लीजिए।
1: अच्छा
2: बीज खरीदने के बाद कुछ घंटे पानी में भिगोकर रख दीजिए। इससे बीज को उगने में आसानी होगा। इसके बाद बीज में भुरभुरी मिट्टी 2 से 3 इंच की दूरी पर 1 इंच जमीन में नीचे दबा दीजिए
1: अच्छा
2: और गड्ढों में कम से कम 2 बीज जरूर लगाएं। बाकी आप जगह के हिसाब से तय कर सकते हैं कि बीज को आप गमले या जमीन कहीं पर भी लगा सकते हैं।
1: अच्छा
2: फिर जब आप बीज लगा देते हैं इसके ऊपर हल्की नमी बनाए रखने के लिए पानी का थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए।
1: अच्छा
2: इसके बाद आपको जहाँ बीज लगाए हैं वहाँ पौधा उगना शुरू हो चुका होगा।
1: अच्छा निकेश जी, अभी तो आपने बताया वो बीज के माध्यम से, तो आपने और एक तरीका बताया था कलम के माध्यम से।
2: जी, कलम काटकर अपराजिता का पौधा लगाना सबसे सरल होता है। सबसे पहले आप अपराजिता के किसी बेल से एक ऐसी कलम काट लीजिए जो ना ज्यादा नरम हो ना ही ज्यादा सख्त।
1: अच्छा
2: इसके बाद कलम के पत्तों को तोड़ दीजिए। केवल इसमें ऊपर के हिस्से के 2-3 पत्ते छोड़ दीजिए। इसके बाद आप इसी कलम को गमले या जमीन जहां भी आप लगाना चाहें वहां मिट्टी में दबा दीजिए।
1: अच्छा
2: ध्यान रखें कि मिट्टी में वही हिस्सा दबाना है जिसे आपने बेल से काटा है।
1: अच्छा
2: इसे मिट्टी में दबाने के बाद थोड़ा पानी का छिड़काव कर दीजिए। पानी कभी भी सीधा मत डालिए
1: अच्छा
2: वरना कलम यानी जो अपराजिता का पौधे का हिस्सा काट के लगाए हैं वो खराब हो सकता है।
1: अच्छा
2: भले आप साइड साइड से पानी का छिड़काव कर दीजिए ये बढ़िया रहेगा।
1: अच्छा मौसम निकेश जी आजकल बेवक्त बदलते रहते हैं, तो उस स्थिति में पानी कब देना चाहिए पौधे में? क्योंकि निकेश जी आजकल हम देख रहे हैं कि बेमौसम बारिश हो रही है, तो इस स्थिति में आप मतलब कब कब पानी देते हैं इनमें?
2: जी मौसम के हिसाब से आप इसमें पानी का छिड़काव बस इतना कर सकते हैं कि मिट्टी सूखे ना हो।
1: अच्छा
2: साथ ही यदि आपने इस पौधे को गमले में लगाया है तो उसे छांव में रखें ताकि अधिक बारिश और गर्मी की वजह से वो खराब ना हो।
1: अच्छा निकेश जी, अगर हम किसी कारणवश जगह यानी गमला बदलना चाहते हैं, तो गमला हम कब बदल सकते हैं?
2: जब आप कलम लगा चुके हो 12 से 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपकी लगाई कलम से जुड़े माफ कीजिएगा जड़ें निकलेगी और उसमें ज्यादा हरियाली दिखाई दे रही होगी। तो 30 दिन या 40 दिन के अंदर ही गमला बदल दीजिए। इसके बाद यदि जगह बदलने हैं तो यह पौधा सूख जाएगी।
1: अच्छा यानी कि मर जाएगी।
2: जी
1: जी
2: इसलिए जितना जल्दी आप गमला बदलेंगे उतना अच्छा होगा।
1: अच्छा तो मिट्टी कैसे तैयार करना चाहिए इसकी बागवानी या खेती के लिए?
2: जी सबसे पहले आप अपराजिता के पौधे को लगाने की जगह तय कर लीजिए। यदि आप इसे गमले में लगाना चाहते हैं तो आसपास किसी नर्सरी से बड़े आकार का गमला खरीद लीजिए।
1: अच्छा
2: ध्यान रहे कि गमला सीमेंट या मिट्टी का ही हो तो ज्यादा अच्छा होगा।
1: अच्छा
2: इसके बाद आपको सबसे पहले साफ सुथरी मिट्टी लेनी है। आप इस पौधे को किसी तरह की मिट्टी में लगा सकते
1: यानी
2: हैं।
1: कि सब तरह की मिट्टी में ही
2: जी
1: आसानी से उग जाती है।
2: जी जी
1: जी
2: लेकिन वो साफ होनी चाहिए। इसलिए आपके पास जो मिट्टी है उसे ले ले सकते हैं।
1: अच्छा
2: मिट्टी लेने के बाद आप इस मिट्टी में थोड़ी मात्रा में जैविक खाद और रेत मिला दें। रेत यानी बालू मिला दीजिए। इससे पौधे का विकास जल्दी होता है। इसके बाद आप इस मिट्टी को गमले में डाल सकते हैं या जिस जगह आप पौधा लगाना चाहते हैं वहां इस मिट्टी को डाल दीजिए।
1: अच्छा
2: अब इस मिट्टी में अपराजिता का पौधा या बीज आसानी से उगा सकते हैं।
1: अच्छा तो निकेश जी, पौधे या बीज लगाने के कितने दिनों में मतलब कितने दिनों के बाद फूल आना शुरू हो जाते हैं?
2: अपराजिता का पौधा गर्मी में ज्यादा हरा भरा रहता है। साथ ही इसके पौधे अधिक फूल खिलते हैं दिखाई देते हैं। सर्दी के मौसम में इस बेल में कम फूल खिलते खिलते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि फूल इन बेलों में ना कम है और ना ज्यादा, यानी माध्यम है, पर मौसम आने पर पत्ते कम फूल और देखने को मिलते हैं।
1: अच्छा, यानी कि हल्की जो गर्मी है मतलब उस समय हम देखते हैं कि काफी हरा भरा रहता है इन बेलों में फूल।
2: जी
1: जी,
2: पत्ते कम फूल अधिक दिखते हैं उसमें।
1: अच्छा अच्छा, तो निकेश जी, भले ही अपराजिता के फूलों में किसी तरह की महक नहीं है, लेकिन ये फूल बेहद सुंदर और मनमोहक देखने को लग रहे हैं।
2: जी
1: निकेश जी, इन पौधों की देखभाल किस तरह मतलब करनी होती है?
2: जी, यदि आपके घर में या बागानों में अपराजिता का पौधा हो जाता है तो इसकी कोई विशेष देखभाल का जरूरत नहीं पड़ता है।
1: अच्छा,
2: बस यदि आप इसके लते के फैलाव को रोकना चाहते हैं तो समय से पर इनकी बेलों को हटाई छटाई कर सकते हैं। यदि आपकी बेल लंबी होती जा रही है तो इसकी ऊपरी हिस्सा आप तोड़ सकते हैं। इससे अपराजिता की बेल को और ज्यादा चौड़ा होगा, तो साथ ही इसमें फूल भी ज्यादा घने लगने लगेगा।
1: अच्छा,
2: सूखे फूल और टहनी को तुरंत तोड़ दीजिए, इससे पौधे का विकास रुक जाता है।
1: अच्छा,
2: और ये जो पौधे हैं धूप ज्यादा पसंद करते हैं,
1: हुँ.
2: इसलिए इसे धूप में उगाए ताकि उसे धूप नियमित रूप से मिलता रहे। अपराजिता का पौधा गर्मी में रोजाना पानी देने की जरूरत होती है, जबकि सर्दी में हफ्ते में 2 या 3 बार पानी देना काफी रहता है।
1: अच्छा,
2: हमें बारिश के दिनों में इन पौधों पर कुछ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। समय समय पर देखें अपने पौधों की जड़ों में कहीं पानी का जमाव तो नहीं हुआ है।
1: अच्छा,
2: इससे पौधा का जड़ सड़ सकता है, जो कि नुकसानदायक है। इसलिए पौधे के जड़ों में पानी जमा मत होने दीजिए, ध्यान देते रहें।
1: निकेश जी, इन फूलों में कोई बीमारी कीट वगैरह लगते हैं क्या?
2: इन पौधों में जल्दी कोई बीमारी नहीं लगता है।
1: अच्छा,
2: केवल जड़ में पानी रुकने से आपको परेशानी हो सकता है। अगर फिर भी कोई कीट या बीमारी पौधों में दिख रहा है तो नीम तेल का हल्का छिड़काव कर सकते हैं आप।
1: अच्छा, तो निकेश जी, अंत में कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे किसान भाई बहनों से?
2: जी बिल्कुल, हम अभी देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई बहन कहीं तरह तरह के फूल सब्जी लगाते हैं।
1: जी जी,
2: काफी मेहनत करते हैं और औषधीय फलों की खेती अधिक लोकप्रिय हो रहा है।
1: हाँ जी, यानी कि औषधीय फसलों की खेती। जी जी,
2: और अपराजिता एक औषधीय पौधों है। इन पौधों फूलों में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं। अच्छी बात तो यह है कि यह मिट्टी और जलवायु से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है।
1: अच्छा,
2: तो किसान भाई बहन, आप बेझिझक इन फलों की बागवानी या माफ कीजिएगा फूलों की बागवानी या खेती कर सकते हैं। इन फूलों और पौधों से भी आप काफी कमा सकते हैं।
1: अच्छा, तो निकेश जी, आज आपने हमारे किसान भाई बहनों को बहुत अच्छी जानकारी दी है अपराजिता के फूल के बारे में और इसकी देखभाल के बारे में। तो आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों, अभी आप जानकारी

तो किसान भाई बहनों, इस लोकगीत के साथ ही आज का हमारा खेती गृहस्थी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम से कोमल नायक को देविदा, जोहार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में संध्या के 6 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचारों का। तो आइए मुख्य समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी रांची।

কামিনী। राज्यपाल और कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने 5 गोल्ड मेडल समेत 207 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। उन्होंने इस मौके पर युवाओं से देश के विकास में सकारात्मक योगदान देने का आह्वान किया। चतरा कॉलेज के शिक्षा शास्त्र विभाग में विश्व शिक्षक दिवस पर समारोह आयोजित किया गया। सत्र 2025 से 27

0: और सत्र 2026 से 28 के प्रशिक्षुओं ने गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। विभागाध्यक्ष डॉ. नंद किशोर सिंह ने कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि आपके आचरण और संस्कारों से विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण करते हैं। पाकुड़ के रविन्द्र भवन में उद्यमिता, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तेजस जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। प्रतिभागियों को स्टार्टअप शुरू करने, नवाचार, प्रशिक्षण, मेंटरशिप, वित्तीय सहयोग और बाजार से जुड़ाव की जानकारी दी गई। चतरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से तेजस्विनी युवती सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में छात्राओं को आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जागरूकता के प्रति प्रेरित किया गया। महिला थाना प्रभारी सुषमा कुजूर ने महिला सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में पूजा समितियों को स्वयंसेवक पहचान पत्र और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र के पिपरा दामर जंगल में एक जंगली हाथी मृत मिला है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। डीएफओ एविन बेनी हेम्ब्रम ने बताया अब्राहम ने बताया कि हाथी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:02 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम। क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा।

0: ठीक है बुआ, यूं तन तेक ना दूरंग ना सुभाष चंद्र होना का ना तक नहीं जुड़ी को ताए थे इगा इन रे दो अयर पाम ये बु अयुमले या चिली के ते जीवन अनासुल लगे पैटी ते हो बा वा इला इला दारक नहीं तने लिंग अयुम की नहीं बु मर ठीक है हो अकड़ा यूं तन हागा बंदू को ते सिंग अलिंग मिते अलिंग हो जु के ने एंते अकिंग लो अलिंग लिंग जपगरा अबु ए अनासुल होरा चिली के ते बु असुल ना मंतिया होरा बु नमते बहुत सिंह दो एंदो लिंग बेपटतना चिए जोर गे मार
1: जोर जोर
0: एंदो चिली के अब ना उपरुम को दो
1: अलिंग दो बुदेन सिंह हेसा
0: या
1: हातो दो बेड़ा मुंडुई
0: या
1: कुमार डोंगी परकान जिला पश्चिम सिंहभूम झारखंड
0: अच्छा
1: या
0: अच्छा एंदो दो ना बरसिंग दो चिना अकुलांग चिकेते ने
1: ना बरसिंग दो निंता अब जेएमपी चौक हेसा म्यूजिक सेंटर देवगम मार्केट रे अलिंग दुकान लिंग खुलाओ तरा मोबाइल दुकान को मोबाइल रिपेयरिंग नेते पोटो को पेन कार्ड को बहितिया नेते जेरोस को बावा को हो किताब को मन लिंग आकरिंग तना
0: अच्छा
1: हाँ नेते डाउनलोड को मन हो बाव तना
0: अच्छा
1: हाँ
0: न निना दो कौन रे मिना
1: निना दो अबू चाइबासा हिसा म्यूजिक सेंटर जेएमपी चौक को मिनिया
0: इन
1: दो टाटा रोड लतार ना जो प्लाई ओवर मिना इन लतार बही किने
0: ओहो
1: हाँ
0: अच्छा इनका न्यायु मडे बेड़ा मुंडो ये दो एट का संग रिना उड़ीसा जपान अपार मिना ची इनका न्याट करिया
1: कहा गया सब निंता है तो चाईवासा है तो लगभग 5-5 किलोमीटर सनिंग मिना
0: अच्छा
1: हाँ कुमारडुंगी ते लगभग 6-7 किलोमीटर मिना अंधारी ते निपानो मिना अंधारी तोर पाए ना निपानो है ना उड़ीसा तो इंता है तो लगभग 20 किलोमीटर सनिंग बावा
0: सनिंग नेगा
1: हाँ या
0: अच्छा ठीक है तो ऑल पड़ा होगा
1: ऑल पड़ा तो गिरसन को कम्प्लीट ही है ना ते एलएलबी को मन कम्प्लीट ही किने
0: या
1: हाँ
0: अच्छा इंद्र दो अलंग निना एसुबनियन जगह बन जगह कर ची एलएलबी मन कर दो ओकिल रिया पढ़ाओ को त्या हाँ
1: या या
0: इंद्र दो अलंग चिना रिया अनें बिजनेस दो लंग बिजनेस थे
1: बिजनेस दो इना लगे लिंग बिजनेस था ना ची ना हो को एस पूरे बुलेल को तना काली पढ़ाओ रो दो नौकरी लगे के को पढ़ाओ बा
0: या
1: इंद्र दो नौकरी दो इनकम ची इतने ची नौकर को मिनिया नौकर को मिनिया
0: या
1: इंद्र दो आए चिली के मिता बिना इनका बन पाइटी या बन आको गुलाम रे बन टाइने ना एस पूरे जुड़ी को लिंग लेकेट को आले सात रे को कोई ऑफिसर ग्रेटर को नौकरी ने ओके रेलवे रे को नौकरी ने ओके बैंकिंग रे को नौकरी ने इन कोता एते काजलिंग आयुमिया अरे आले बैंकिंग रे पार्टी तने बोले चाड़ा चाबा आकना कमनिया सीता एते ड्यूटी ए मिता में 10 बजे ते ड्यूटी में ना 4 बजे मनिया एनरे सरकार इनका ना दबाव एम त लिया चिना 4 बजे आयु 6 बजे 7 बजे लगा वा कमनिया नीदे वाले ड्यूटी ए इन पात फोन जो इन द कमनिया इन द एन इनका के विभाग मिना दो ना दो चलिके दरवा को बयुवा इनको इनका के अलतार इमिन प्रसार मिना चितान पाए थे 24 घंटा ड्यूटी को मनिया
0: अच्छा
1: नेत आंडो इनका के मिना अकवा रेलवे को नौकरी तने चिनाई करे अरे चिनाई ते नजु इन पा जाना हासुरियो दुकुरियो तकलीफ रियो नजु रे इन पाए थे छुट्टी नि दिए के एक सप्ताह रिया उजु रे 3 दिन लगावा सेनो रे 3 दिन इनका उजु सेनो रे सप्ताह भर रिया छुट्टी चबावा इंगाव कान लेल दई अपो कान लेल दई को मनिया
0: अच्छा अच्छा
1: इन दो इना कोडू के तलिंग उडू किडा अरे पढ़ाओ माँ ऐसु दरकार तना काम इनते कागे पढ़ाओ माँ सब इन रे पढ़ाओ दो तंते दरकार खास करके अब होती आदो ऐसु स्पेशल दरकार होती आ ना पढ़ाओ कान और हो को हो बस अब हिले ते तना हो पढ़ाओ हिले ते तना नौकरी का नाम अंबु मनिया इन दो हो दो काहिले ते दरकार इन दो अब इंगा हयाम को मनिया ना दो इंगा दो काब रिंग ही ते दरकार तो एने निसब ते गलिंग आयर ते गलिंग उड़ूले टाइक ना बीच रे दो उड़िंग रे दो काको तो लिंग जाय अलिंग नौकरी लागि गलिंग पढ़ाओ मेले का लिंग उड़ उल्डा इन चिलके चिलके तलिंग पढ़ाओ डिन तलिंग चिरगिल बाकडा सिया एंड लिंग ची पढ़ाओ रे दो नेले का चक्कर बीर पास आवा या नेले का एटा को दसिर बु दसी केनो मत चिकन लागि ची इन त उड़ू बेकडा अच्छा सिया लिंग सिया ना पढ़ाओ ना लिंग बिजनेस मेडो लिंग रिके तर दो बिजनेस तर दो लिंग अलिंग इनता त अलिंग दवर लिंग असुल दई को निंता अर मिना को 4-5 जन हो को लिंग असुल कट को कम से कम नेतर पूरे में ना को या
0: अच्छा
1: अलिंग सात रे को पार्टी ए स्कूल रुक पढ़ाओ तना तरा कॉलेज रे को पढ़ाओ तना निंता दुकान को जुए कोचिंग पार्टी रे को त मिसे दुकान को सेनवा अंडो मिसे को कॉलेज को सेनवा
0: अच्छा
1: हां इन द इनका मिना को इन द अलिंग वे सुरा सागर इन चिरगले तना अलिंग साथ साथ अलिंग सुमे तो कलिंग असुल तना अलिंग साथ साथ रे 4-5 जन हो को लाई ओलिंग पेरे तना इना जे सो मरंग चीत ने एना त जब दुख तकलीफ वा रे ये हाथों रे समाज रे तुरंत को फोन किया निंदा तो 50 किलोमीटर अंजा अलिंग बिटा ना 2-3 घंटा बाद अलिंग बिटा ना इनको लीला तो को अलिंग जगरा तो को अलिंग तलिंग उजु रे निपा अंडो दुकान लिंग चला हुआ इन तनिंग तारे यो हन गणा को इनका लिंग लेल को तना परिवार ओनि पार मिना
0: अच्छा
1: तो जपा रे यो इन पार मिना अंडो इन सात रे सुरासा गलिंग चिर गेल केडा माने जाया बंधन रे बंगलिंग एक तो अलिंग अधिकार रे मिना अलिंग
0: अच्छा अच्छा हां मेन दो हाथ पेरन हो को मनिया चेन्नई रे नौकरी तन तो अरे चेन्नई रे नौकरी तने सहयोग कना को मनिया है ᱤᱝᱠᱟ ᱢᱟᱱ ᱥᱚᱢᱢᱟᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱮᱢᱮᱭᱟ ᱮᱱᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱱ ᱥᱚᱢᱢᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱨᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱭᱱᱟ
1: ᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱭᱚᱵ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱡᱟᱵᱚ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱛᱮᱱ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱛᱮᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱮᱥᱚ ᱠᱚ ᱡᱚᱣᱟᱨ ᱥᱟᱞᱟᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱤᱱᱯᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱯᱟᱨ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱢᱵᱟᱭ ᱨᱮ ᱤᱱᱯᱟᱨ ᱚᱣᱟᱫ ᱩᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱭ ᱠᱷᱮᱰᱟ ᱠᱚ ᱟᱥᱛᱤᱛᱚ ᱡᱤᱠᱟᱹᱱ ᱢᱤᱴᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱦᱚᱸ ᱤᱱᱛᱟᱨᱮ ᱮᱱ ᱵᱟᱥᱟ ᱠᱚ ᱮᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱞᱚᱜ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱞᱚᱜ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱚᱞᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝᱭᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱫᱚᱞᱮ ᱥᱟᱭᱚᱵᱮᱭᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱡᱮ ᱫᱚᱞᱮ ᱨᱤᱝ ᱠᱤᱴᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱠᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱤᱥᱛᱤᱛᱤ ᱚᱵᱟᱣ ᱞᱟᱥᱴ ᱨᱮ
0: ᱵᱟᱞᱟ ᱵᱚᱱᱫᱩ ᱠᱚ ᱤᱱᱯᱟᱨ ᱜᱮ ᱚᱵᱟᱣ
1: ᱤᱭᱟ ᱤᱱᱯᱟᱨ ᱵᱟᱞᱟ ᱵᱚᱱᱫᱩ ᱠᱚ ᱚᱵᱟᱣᱟ
0: ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚ
1: ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱠᱟᱠᱩᱨᱩ ᱱᱟᱭ ᱯᱷᱩᱞᱩ ᱱᱟᱭ ᱡᱩᱱᱤ ᱱᱟᱭ ᱥᱟᱵᱤ ᱢᱤᱫ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱢᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱱ ᱟᱯᱟᱱᱟ ᱫᱟᱥᱛᱩᱨ ᱠᱚ ᱨᱤᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱰ ᱱᱟᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱮᱱ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱞᱚᱜ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱮᱱ ᱵᱟᱨᱥᱤᱝ ᱮᱱ ᱠᱚ ᱨᱤᱝ ᱮᱛᱚ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱟ
1: ᱟᱠᱚ ᱵᱟᱜᱟᱲᱟ ᱨᱮᱱᱟᱣᱟ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱤᱱ ᱯᱟᱨ ᱜᱮ
0: ᱭᱟ ᱭᱟ
1: ᱱᱟ ᱱᱤᱯᱟᱣ ᱠᱟ ᱠᱚᱞᱮᱞ ᱫᱮᱭ ᱤᱱ ᱯᱟᱣ ᱠᱟ ᱠᱚᱞᱮᱞ ᱫᱮᱭ ᱤᱱᱟ ᱠᱚᱞᱮᱞ ᱠᱮ ᱛᱮ
0: ᱚᱻ ᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱛᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱤᱱᱠᱟ ᱵᱮᱱ ᱩᱰᱩᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱜᱩᱥᱤᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱮᱥᱩ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱵᱮᱱ ᱱᱟᱞᱟᱭᱟ
1: ᱱᱟ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱨᱮ ᱠᱟᱢ ᱥᱮ ᱠᱟᱢ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱨᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱨᱮ 1000 ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱨᱮ ᱠᱟᱢ ᱥᱮ ᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱟᱨ ᱯᱟᱨ ᱟᱠᱟᱵᱟ ᱮᱱᱟ ᱞᱟᱠᱟ ᱡᱮ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱢ ᱥᱮ ᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ 1000 ᱫᱚ
0: 1000 ᱫᱚ
1: ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱞᱟ ᱥᱩᱢᱩᱱ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱱᱟᱞᱟ ᱥᱩᱢᱩᱱ ᱜᱮ
0: ᱮᱱ ᱫᱚ ᱫᱩᱵᱮᱠᱮᱱᱚ ᱚᱛᱮ ᱜᱮ ᱦᱚᱵᱟᱣ ᱟᱜᱚᱴᱟ ᱥᱤᱝ ᱢᱮᱱ ᱨᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ
1: ᱤᱭᱟᱱ ᱤᱱᱛᱟ ᱫᱩᱵᱮᱠᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱡᱚᱠᱟ ᱠᱟᱥᱴᱚᱢᱟᱨ ᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚᱛᱮ ᱚᱵᱟᱣᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱵᱚ ᱫᱩᱠᱮᱱᱮ ᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱚᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱥᱟ ᱚ ᱫᱩᱠᱮᱱ ᱠᱚ ᱡᱩᱜ ᱠᱚ
0: ᱭᱟ
1: ᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱞᱤᱭᱟ ᱫᱩᱠᱮᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱭᱟ
1: ᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱤᱧ ᱱᱤᱱᱟ 15 ᱥᱟᱞ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱵᱟᱭᱱᱟ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱫᱩᱠᱮᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱭᱟ
0: ᱭᱟ
1: ᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱮᱣᱟᱨᱚ ᱦᱚᱛᱮᱞᱤᱧ ᱵᱮᱣᱟᱨᱮᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱩᱡᱩᱜ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱚ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱨᱟᱥᱟᱣᱟ ᱟᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸᱞᱤᱧ ᱨᱟᱥᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ
0: ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱡᱱᱮᱥ ᱛᱮᱱ ᱮᱢᱤᱛᱮᱱ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱤᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱦᱟᱨ ᱮᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱮᱥᱩ ᱛᱟᱠᱞᱤᱯ ᱱᱟᱢᱚᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱱ ᱵᱟᱨᱫᱟᱥ ᱠᱮᱫᱟ
1: ᱭᱟ ᱟᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱞᱮᱫ ᱞᱤᱧ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱦᱟᱨ ᱮᱲᱟᱜ ᱥᱤᱠᱟᱨ ᱱᱟᱞᱮ ᱞᱤᱧ ᱮᱱᱛᱮ ᱟᱥᱞᱤᱧ ᱡᱤᱫ ᱫᱤᱠ ᱮᱱᱟ
0: ᱭᱟ
1: ᱡᱟᱱᱟ ᱨᱮᱭᱚ ᱡᱤᱫ ᱫᱤᱠ ᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹᱧ ᱵᱮᱴᱟ ᱭᱟᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱱᱟ ᱵᱮᱴᱟ ᱫᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱟᱨ ᱠᱟᱢᱱᱟ ᱛᱤᱧ ᱛᱮᱭᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱦᱚᱸ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱤᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱮᱥᱩ ᱠᱚ ᱫᱟᱵᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱞᱤᱧ ᱱᱤᱯᱟᱛ ᱨᱮ ᱮᱥᱩ ᱠᱚᱢᱯᱤᱴᱤᱥᱚᱱ ᱴᱟᱭᱤᱱᱮ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱞᱤᱧ ᱫᱩᱠᱟᱱ ᱟᱠᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱫᱩᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱚᱞᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱮᱱᱨᱚᱭ ᱢᱤᱱ ᱠᱚᱢᱯᱤᱴᱤᱥᱚᱱ ᱴᱟᱭᱤᱱᱮ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱞᱤᱧ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱟᱫᱚ ᱮᱱ ᱫᱩᱠᱟᱱ ᱵᱟᱜᱮ ᱠᱮᱫ ᱟᱨ ᱠᱮᱥᱮᱴ ᱫᱟᱢᱟᱱᱟ ᱴᱟᱭᱠᱤᱱᱟ ᱠᱮᱥᱮᱴ ᱫᱩᱠᱟᱱ ᱞᱤᱧ ᱠᱚᱞᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱠᱚ ᱠᱮᱥᱮᱴ ᱫᱩᱠᱟᱱ ᱠᱚᱞᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ
0: ᱭᱟ
1: ᱮᱱᱫᱚ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱤᱱᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱪᱩᱭᱮᱥᱚᱱ ᱵᱚᱫᱚᱞᱮᱱᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱚᱡᱚᱭᱱᱮ ᱟᱠᱚ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱠᱚ ᱠᱚᱞᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱞᱤᱧ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱥᱴᱚᱢᱟᱨ ᱠᱚ ᱞᱤᱧ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱮᱱᱛᱮ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱫᱟᱢ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱨᱵᱷᱤᱥ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱛᱮ ᱠᱚᱡᱩᱭᱱᱮ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱟᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱩᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱚᱞᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ
0: ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱡᱤᱨᱮ ᱱᱟᱭ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱟᱢ ᱢᱟᱱᱟ ᱛᱤᱧ ᱠᱟᱢ ᱟᱨᱟ ᱛᱤᱧ ᱜᱟᱡᱨᱟ ᱥᱟᱸᱰᱮ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱵᱮᱱ ᱫᱟᱹᱭᱤᱭᱮᱱᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱠᱟᱡᱤ
1: ᱭᱟ ᱥᱟᱭᱚᱵ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱥᱩᱨᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱞᱚ ᱚᱛᱮ ᱱᱟ ᱯᱟᱭᱤᱴ ᱛᱮᱱ ᱥᱮᱯᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱵᱮᱱ ᱠᱟᱡᱤ ᱦᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱛᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱮᱯᱮᱫ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱥᱮᱯᱮᱫ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱟᱹᱪᱩᱛᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱥᱮᱱ ᱥᱮᱯᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ
1: ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮ
0: ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ
1: ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚᱜᱮ ᱞᱤᱧ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱮᱱᱫᱚ
1: ᱮᱱ ᱠᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱥᱚᱢᱡᱟᱣ ᱚᱴᱟᱭᱠᱤᱱ ᱮᱱᱫᱚ ᱞᱤᱧ ᱥᱚᱢᱡᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱟ ᱞᱤᱧ ᱞᱤᱞᱟ ᱠᱟᱰᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱪᱟᱱᱟᱜ ᱞᱤᱧ ᱥᱮᱱᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱯᱟᱛ ᱨᱮ ᱯᱟᱞᱤᱧ ᱦᱚᱱᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱠᱟᱞᱤᱭᱟᱜ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱞᱮ ᱯᱟᱹᱭᱴᱤ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱩᱞᱟᱢ ᱨᱮ ᱵᱚᱴᱟᱭᱤᱵᱟ ᱡᱟᱱᱟᱜ ᱨᱮᱭᱚ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱤᱨᱟᱝ ᱵᱩᱭ ᱠᱚ
0: ᱢᱟ
1: ᱵᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱨᱤᱥᱤᱵᱩ ᱮᱱᱨᱮ ᱵᱟᱯᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱮᱱᱮ ᱤᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱥᱤᱪᱩᱭᱮᱥᱚᱱ ᱤᱱᱠᱟ ᱛᱟᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱟ ᱮᱛᱮᱜᱮ ᱟᱹᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱚᱱ ᱠᱚ ᱡᱚᱣᱟᱯᱮ ᱥᱚᱢᱡᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱮ ᱟᱹᱧ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱤᱧ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱟᱴᱟ ᱤᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱪᱚᱠᱚᱱ ᱟᱹᱧᱟᱹ ᱥᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱧᱟᱹ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱠᱮᱱ

अभी आपने सुना क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चाय भाषा केंद्र है।

श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:30 हो चुके हैं। वक्त है हमारे युवा दोस्तों को संबोधित साप्ताहिक कार्यक्रम युवाणी का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

श्रोताओं कैसे हैं आप? आशा नहीं बल्कि पूरी पूरी उम्मीद और भरोसा है कि आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे और अपनी अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य ही व्यस्त भी होंगे, और इस व्यस्तता भरी जिंदगी में आप हमारे लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ बहुत सारी जानकारियां लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, युवा होना यानी असीम ऊर्जा, नए सपने और कुछ कर गुजरने का जुनून होना, लेकिन अक्सर कई साथी सही दिशा या पैसों की कमी के कारण वहीं रुक जाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ इसी विषय पर बात करेंगे, ताकि आपके सपनों को पंख मिले और आप जानें कि भारत सरकार आपकी प्रगति के लिए कौन कौन सी शानदार योजनाएं चला रही हैं। सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली हर योजना के बारे में तो हम आपके साथ इस कार्यक्रम में इस तय समय में जानकारी साझा नहीं कर सकते श्रोताओं, पर कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में आज इस कार्यक्रम में हम आपके साथ संक्षिप्त रूप से उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, ताकि आपको उन योजनाओं की जानकारी हो और आप इसे ऑनलाइन सर्च करके या फिर इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपके बगल नज़दीकी केंद्र में जा कर के आप ले सकें। तो आइए जानते हैं हमारे सरकार के द्वारा चलाई जा रही हमारे युवा साथियों के लिए योजनाओं के बारे में। तो श्रोताओं, सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम कौशल विकास योजना के बारे में। ये योजना या फिर पढ़ाई के बाद कोई व्यवहारिक स्किल सीखना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना खास आपके लिए ही बनी है। इस योजना के तहत आप AI, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, कोडिंग और हेल्थ केयर जैसे 200 से अधिक आधुनिक कोर्सेज को सीख सकते हैं। ये आधुनिक कोर्स बिल्कुल मुफ्त में सिखाए जाते हैं। कोर्स पूरा करने पर सरकार की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर मान्य NSDC प्रमाण पत्र

और 8,000 रुपये का प्रोत्साहन बोनस भी डीबीटी के जरिए सीधे खाते में दिया जाता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि इसके लिए पात्रता क्या है और क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत हमें इस योजना का लाभ लेने के लिए पड़ेगी। तो हम आपको बता दें श्रोताओं कि भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 15 से 45 वर्ष के बीच की है और जो नया हुनर सीखने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज में से आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी जो कि आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर आपका अपना होना चाहिए। और इसके लिए आवेदन करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट skillindiadigital.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी कौशल विकास केंद्र स्किल हब पर जाकर संपर्क कर सकते हैं और इस योजना से जुड़ी हुई विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। तो आप अपने नज़दीकी कौशल विकास केंद्र जाएं और वहां जाकर इस योजना से जुड़ी हुई समुचित जानकारी लें और इस योजना का लाभ उठाएं और अपने सपनों को पंख दें, उड़ान दें। इसके अलावा एक और जो योजना है वो हमारे सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वो है PM इंटर्नशिप योजना, यानी कि कॉरपोरेट अनुभव और वजीफा। इसके तहत दोस्तों पढ़ाई तो पूरी हो जाती है लेकिन जब पहली नौकरी के लिए हर जगह अनुभव मांगा जाता है तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। तो इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार लाई है PM इंटर्नशिप योजना। देश की शीर्ष 500 कंपनियों में युवाओं को एक साल तक व्यवहारिक इंटर्नशिप करने का इस योजना के तहत मौका मिलता है। साथ ही हर महीने रुपये 5,000 की वित्तीय सहायता यानी कि स्टाइपेंड और शुरुआत में एकमुश्त 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के लिए पात्रता है 18 से 24 वर्ष के युवा जिन्होंने 10वीं, 12वीं और ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया हो और जिनके परिवार में किसी भी व्यक्ति की कोई सरकारी नौकरी न हो या फिर जिनकी पारिवारिक आय 8,00,000 रुपए से सालाना कम हो, उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। और इस योजना का लाभ लेने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज आपको चाहिए वो है आपका आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाता का विवरण। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप सरकारी पोर्टल pminternship.mca.gov.in पर जाकर छात्र अपना प्रोफाइल बनाकर अपनी मनपसंद कंपनी में इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस के लिए आप आवेदन करें और इंटर्नशिप में अपना नाम, एडमिशन उसमें आप अपना करवाएं और अपने सपनों को उड़ान दें। इसके अलावा एक और अहम योजना है हमारे सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली, वो है PM मुद्रा योजना। इस योजना में आपका अगर खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना है या फिर आपके पास कोई शानदार बिजनेस का आइडिया है या फिर स्टार्टअप का विचार आपके मन में है और आपके पास पूंजी की कमी है तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपके लिए मददगार साबित होगी। बिना किसी गारंटी के 50,000 से लेकर 10,00,000 तक का लोन आपको बहुत कम ब्याज की दर पर यहाँ दिया जाता है। और इस योजनाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, शिशु लोन जो 50,000 तक का होता है, किशोर लोन 5,00,000 तक का और तरुण लोन 10,00,000 रुपए तक का। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता है 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जो अपना नया काम, स्टार्टअप जैसे कि दुकान, सर्विस सेंटर, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, एग्री बिजनेस इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको जो आवश्यक दस्तावेज चाहिए वो है आधार कार्ड।

0: पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और आपके बिजनेस का प्लान, जो भी आप करना चाहते हैं उसका एक रिटर्न लिखित पूरा प्लान प्रपोजल और पिछले 6 महीनों का बैंक का स्टेटमेंट और आपकी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसके लिए आवश्यक दस्तावेज है। और इसके लिए आवेदन करने के लिए आप किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण बैंक में जाकर मुद्रा लोन फॉर्म भर सकते हैं या फिर जनसमर्थ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन भी आप इसके लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप इन योजनाओं का लाभ लीजिए और इसके बारे में जो भी योजनाओं की जानकारी हमने आपको दी है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप अपने नज़दीकी बैंक में जा कर के या फिर जो भी आपके अगल बगल में केंद्र हैं स्किल इंडिया के, उसमें आप जा कर के पता करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुड़ जाइए। बहाना बनाना छोड़िए और अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाइए, चाहे हुनर सीखना हो, अनुभव लेना हो या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना हो। हर राह पर सरकार की योजनाएं आपके साथ हैं। आज ही आप आधिकारिक पोर्टल्स पर जाइए और सही जानकारी ले और सही योजना का चुनाव करके आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी इसका आवेदन कर सकते हैं। सही आवश्यक दस्तावेजों को लेकर आप अगर जाएंगे तो आपको इन योजनाओं का लाभ जरूर मिलेगा और आपके सपनों को पंख भी मिलेंगे। तो इसी योजना के बाद श्रोताओं, आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इन जरूरी संदेशों के बाद श्रोताओं, आइए अब हम आपका मनोरंजन करते हैं इस गीत के साथ।

श्रोताओं, इस गीत के साथ अभी हम आपका मनोरंजन कर रहे थे और इस मनोरंजन के बाद आइए अब हम आपको साथ कुछ ज़रूरी बातें करते हैं। हम बातें करते हैं आपसे एक खास योजना के बारे में जो कि है मिशन वात्सल्य योजना। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। तो श्रोताओं, हमारे ज़िले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश वो अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रहे, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण योजना, देखरेख योजना भी कहा जाता है। ये योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार की देखरेख की आवश्यकता है और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख की योजना से लाभान्वित किया जा सकता है। तो आइए इसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बताते हैं। तो श्रोताओं, ये गोद लेने की प्रक्रिया नहीं है पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में न चला जाए। तो श्रोताओं, अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर इस नेक कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे का पालक बनना चाहता है तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि माता और पिता दोनों को मिलाकर उनकी सम्मिलित आयु का जोड़ जो है 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर अकेला कोई व्यक्ति किसी बच्चे का पालक अभिभावक बनना चाहता है तो उनकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो एकल पुरुष यानी कि अकेले पुरुष को बालिका की नहीं दी जा सकती है। तो अगर आप पश्चिम सिंहभूम जिला के निवासी हैं और आपके पास मुखिया के द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है और पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप भी पालक माता पिता बन सकते हैं, क्योंकि परिवार हर बच्चे का अधिकार है। तो आइए जरूरतमंद बच्चों की तरफ हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा सा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान

की जाएगी। इस योजना से जुड़ी हुई अधिक जानकारी हेतु आप जिला बाल संरक्षण इकाई, जिसका फ़ोन नंबर है 9955131364 और 9090070489

के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:55 हो चुके हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का। तो आइए

0: पापा की जमा पूंजी, उनकी सीख
1: और हमेशा हमारी फिक्र करना। वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है,
0: पर क्लेम करना मुश्किल होगा।
1: अब और भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
2: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
4: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
3: अरे बहन, परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
4: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
3: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
5: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
8: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
9: कंडोम,
8: गर्भ निरोधक गोलियाँ,
10: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
5: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
11: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में 207 विद्यार्थियों को दी उपाधि। रक्षा क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर दिया जोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने का किया आह्वान। जनजातीय भाषाओं के संरक्षण की मांग को लेकर 9 अक्टूबर को रांची में निकाला जाएगा भाषा मार्च। सभी 9 भाषाओं से जुड़े छात्र और भाषा प्रतिनिधि होंगे शामिल। भारत वेस्टइंडीज T20 के टिकट खरीदने उमड़े क्रिकेट प्रशंसक। JSCS स्टेडियम में टिकट काउंटर खुलते ही लगी कतार। 9 अक्टूबर को होगा मुकाबला। और विनोबा भावे विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू। पहले मुकाबले में आनंदा कॉलेज हजारीबाग ने आदर्श कॉलेज राजधनवार को हराया।

0: आया और अब समाचार विस्तार से। रांची में झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल और कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने 5 गोल्ड मेडल समेत 207 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। उन्होंने इस मौके पर युवाओं से देश के विकास में सकारात्मक योगदान देने का आह्वान किया।
1: आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। इस यात्रा में आर्थिक एवं तकनीक की प्रगति के साथ साथ सुरक्षित सक्षम समाज की आवश्यकता भी है। इसलिए सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित युवा केवल कानून व्यवस्था के दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे, बल्कि देश के विकास के लिए आवश्यक विश्वास, स्थिरता और सुरक्षित वातावरण के निर्माण में भी योगदान देने का कार्य करेंगे।
0: वहीं मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना और अनुशासन के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। समारोह में फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के निदेशक जीके गोस्वामी भी शामिल हुए।
2: बैटलफील्ड को तो अब तो साइबर पे ही है, तो बच्चे यहाँ से निकल के दक्ष हो। हमने कहा इन बच्चों को कि यू आर ऑल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत, आप सीखो, आप मोटिवेट हो, आप जो काम करें ट्रांसपेरेंसी हो उसमें, वर्क डिसिप्लिन, फूड डिसिप्लिन, हर चीज की डिसिप्लिन होनी चाहिए। डिसिप्लिन होगी तो आगे आपको जीवन में बहुत बड़ा आधार मिलेगा।
0: झारखंड हाई कोर्ट ने आपराधिक मामले में बरी होने के बावजूद हजारीबाग डिटेंशन सेंटर में महिला को रखे जाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। गृह सचिव वंदना दादेल अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुई। झालसा की जांच रिपोर्ट में महिला ने 3 पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। अदालत ने हिरासत के कानूनी आधार पर स्पष्टीकरण मांगा है। रांची के मोरहाबादी में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि झारखंड की 9 जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और सुदृढ़ीकरण के लिए 9 अक्टूबर को भाषा मार्च निकाला जाएगा। इसमें विभिन्न जनजातीय भाषाओं से जुड़े छात्र और प्रतिनिधि पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने पर आंदोलन को विश्वविद्यालय स्तर तक ले जाया जाएगा।
3: हमारी जो भाषा, हमारा परंपरा, वो 9 भाषा जो है उसको हम मार्च के माध्यम से हम सरकार को उस पर हम बताना चाहते हैं। पूरे 9 भाषा भाषी छात्र छात्राएं से लेकर सभी लोग एकजुट हैं पूरा इसमें, क्योंकि देखिए चाहे राजनीतिक शक्ति हो, चाहे यहाँ का विकास से संबंधित हो, ये तमाम चीज भाषा से ही हो सकता है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने की 26 तारीख को जारी प्रेस विज्ञप्ति को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह प्रेस विज्ञप्ति उपलब्ध है और निर्वाचन आयोग ने इसे नहीं हटाया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के उप महाप्रबंधक मनीष जैन ने सोमवार को टाटानगर स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बर्मा माइंस छोर पर चल रहे स्टेशन विस्तार, 4-लेन सड़क, पार्किंग और अन्य विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उप महाप्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM तरुण हुरिया समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में ABVP की ओर से मातृवंदन नारी शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं और छात्राओं को सामाजिक मुद्दों, सोशल मीडिया कंटेंट और युवाओं से जुड़े विभिन्न नैरेटिव को लेकर जागरूक किया गया। इस मौके पर IRS अधिकारी निशा उरांव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने महिलाओं को अधिकारों, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने की अपील की। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्ति

0: करण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे ट्राइबल फाइटर म्यूजियम और गौरव दिवस की। इसी कड़ी में झारखंड की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और अस्मिता को वैश्विक पहचान देने के लिए खूंटी में एक भव्य जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया गया है।
1: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए, इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए देश लगातार काम कर रहा है और इसी कड़ी में 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हमेशा के लिए ये जनजातीय गौरव दिवस होगा।
0: इधर जनसेवा से राष्ट्र सेवा के संदेश को लेकर बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी से पेश है एक रिपोर्ट।
2: बिरसा मुंडा को यूं ही नहीं धरती आबा भगवान और झारखंड के महानायक जैसी उपाधियों से नवाजा गया है। बिरसा मुंडा के संघर्षों ने अंग्रेज साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी और उनके संघर्षों का ही प्रतिफल है कि आज झारखंड में CNT एक्ट जैसे कानून हैं जिसे आदिवासियों का सुरक्षा कवच कहा जाता है।
0: पाकुड़ के रविंद्र भवन में उद्यमिता, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तेजस जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। प्रतिभागियों को स्टार्टअप शुरू करने, नवाचार, प्रशिक्षण, मेंटरशिप, वित्तीय सहयोग और बाजार से जुड़ाव की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने युवाओं से स्थानीय समस्याओं के व्यावहारिक समाधान तलाशने और नए विचार विकसित करने की अपील की। गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र के पिपरा दामर जंगल में एक जंगली हाथी मृत मिला। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। DFO एविन बेनी अब्राहम ने बताया कि हाथी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। रांची के JSCA स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत वेस्टइंडीज T20 मैच के लिए आज सुबह 9 बजे से ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। काउंटर खुलते ही प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें राज्य के कई जिलों और पड़ोसी राज्यों से आए क्रिकेट प्रेमी शामिल हैं। टिकट मिलने के बाद दर्शकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। रामगढ़ कॉलेज में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंतर महाविद्यालय पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय से संबद्ध 7 महाविद्यालयों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। कुलपति प्रोफेसर डॉ. चंद्रभूषण शर्मा ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने पढ़ाई के साथ खेल को भी जरूरी बताया।
3: हम संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से आए हुए हैं। प्रधानमंत्री जब बोल रहे ये बात, तो उससे क्या हो रहा है कि जितने भारत के लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं खेल के प्रति। ऐसा आयोजन हमारे झारखंड में हमेशा हो, हर एक साल हो। ऐसा आयोजन का एक ही उद्देश्य है ताकि मतलब प्लेयर्स लोग मतलब अपना जो ट्रेनिंग है, प्रैक्टिस है जो कर रहे हैं हर एक साल, वो खेल में आकर के दिखाए।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में 207 विद्यार्थियों को दी उपाधि। रक्षा क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर दिया जोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने का किया आह्वान। जनजातीय भाषाओं के संरक्षण की मांग को लेकर 9 अक्टूबर को रांची में निकाला जाएगा भाषा मार्च। सभी 9 भाषाओं से जुड़े छात्र और भाषा प्रतिनिधि होंगे शामिल। भारत वेस्टइंडीज T20 के टिकट खरीदने उमड़े क्रिकेट प्रशंसक। JSCA स्टेडियम में टिकट काउंटर खुलते ही लगी कतार। 9 अक्टूबर को होगा मुकाबला। और विनोबा भावे विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू। पहले मुकाबले में आनंदा कॉलेज हजारीबाग ने आदर्श कॉलेज राजधनवार को हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: बहन मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं।
5: अरे बहन 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
4: 104 नंबर वो क्या है बहन?
5: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
6: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: माँ मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
9: नहीं तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
10: अरे अरे आप ये क्या कर रही हैं?
11: बढ़ती बच्ची किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
10: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
11: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
10: माहवारी प्रारंभ होती है,
11: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
10: याद रखें स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
12: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
13: नहीं झुमके
14: ना, पहले बचत,
13: पहले झुमके।
14: सुनो हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
13: लेकिन झुमकों का क्या,
14: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
15: आरबीआई कहता है
16: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
17: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
18: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
19: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पलामू संवाददाता।
1: पलामू में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छता मैराथन का आयोजन किया गया। समरणालय परिसर से अमानत नदी तक दौड़ का आयोजन हुआ। पलामू के उपायुक्त ने 48 मिनट में 9 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बापू के आदर्शों को अपनाने की अपील की।
2: सांकेतिक तौर पे दौड़ का आयोजन किया गया, मैंने स्वयं भी इसमें भाग लिया और कोशिश की कि जो दौड़ने में हम लोग संघर्ष करते हैं कि हमको कम समय में रेस को कंप्लीट करना है, वही संघर्ष हमें हम सभी युवाओं को करना है, चाहे वो स्वच्छता का उद्देश्य हो, चाहे हमारे समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य का संचार, इसके लिए युवाओं पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज के समय में जिनको हम लोग कहते हैं जेन जी, ये जो वर्ग है इस पे देश की भविष्य की बागडोर निर्भर करती है और मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि हम लोग सबसे पहले तो अपने आप को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखे, मजबूत रखे और उसके बाद देश निर्माण के अंदर हमें जो भी कदम उठाना उसके लिए हम लोग संगठित, हम लोग जाति धर्म समुदाय इस सबसे ऊपर उठे।
1: झारखंड आंदोलन की के संघर्ष मोर्चा के द्वारा आहूत झारखंड बंद का आयोजन डाल्टनगंज में देखने को मिला। रेड़मा चौक पे को 3 घंटे तक जाम रखा गया। आंदोलनकारियों का नेतृत्व वीके शुक्ला कर रहे थे। उन्होंने आंदोलन करने की वजह बताई।
3: झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के द्वारा पूरे झारखंड को आज बंद किया गया। झारखंड बंद करने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में जो राज्य का निर्माण हुआ है, आंदोलनकारी जो निर्माण के राज्य बनाए हैं, उनको मान सम्मान पेंशन बहुत कम, जो जेल गए हैं उनको पेंशन मिलता है और जो जेल नहीं गए उनको नहीं मिलता है। तो चूंकि जेल गए हैं वो अकेले तो आंदोलन किए नहीं है, जेल जाने से मरने से मारने से डरते नहीं है और न डरेंगे, चूंकि डरते तो राज्य अलग होता नहीं। जब राज्य का निर्माण हम लोग किए हैं तो राज्य में सभी लोग को स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाने का काम हम लोग करेंगे, हर हाल में करेंगे, चाहे इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा, हम लोगों जितना संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। तमाम राज्य के लोग आंदोलन किए हैं और आंदोलन करने के बाद झारखंड अलग हुआ और झारखंड आंदोलनकारी को मान सम्मान पेंशन और स्वाभिमान बाल बच्चे को आरक्षण का सुविधा उपलब्ध कराया सरकार।
1: पलामू जिले के तरसी प्रखंड के सैलारी में भी नल जल योजना का लाभ मिल रहा है। एक लाभुक बजरंगी कुमार मेहता ने कहा कि इस योजना से साफ स्वच्छ पानी प्राप्त हो रहा है।
4: नमस्कार, मैं बजरंगी कुमार मेहता, ग्राम देल्हा, पंचायत सैलारी, प्रखंड तरसी, जिला पलामू, झारखंड का निवासी हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पहले हम लोग गंदा और मटमैला पानी पीने के लिए मजबूर रहते थे, लेकिन और बच्चे लोग खास करके बहुत बीमार रहते थे और हम लोग का सारा कमाई बच्चे की बीमारी में चला जाता था। जब से मोदी जी ने नल जल योजना लाए हैं और नल के पानी हम लोग के घर घर आ रहा है, मीठा और साफ सुथरा, तब से बीमारी भी कम हो गया है। खास करके गाँव गरीब महिलाओं के लिए मोदी जी ने बहुत उपकार का काम किया है।
1: पलामू जिले में जीतिया विसर्जन और नहाने के दौरान तालाब में डूबने

0: से 13 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। बताते चले कि द्वितीया पर्व संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है। घटना छतरपुर थाना क्षेत्र के खाटिन गांव की है। मृतक की पहचान उपेंद्र गुप्ता के 13 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार के रूप में हुई है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
1: अभी आप सुन रहे थे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेश जिले में आजकल। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:18 हो चुके हैं। वक्त हो चला है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम आपके फरमाइशी खतों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा नमस्कार जोहार। आइए श्रोताओं करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और लेते हैं हमारे श्रोताओं के द्वारा भेजे गए बहुत सारे खतों और देखते हैं कि हमारे आज किन किन श्रोताओं ने हमें अपनी फरमाइश खतों के माध्यम से भेजी है। तो कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी खत हमें लिखा है मछली गोदाम कैंदीमोड़ा रायगढ़ से और हमें खत लिखा है पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका सिंह, पूजा सिंह, लीलू सिंह और रितु सिंह और ऋषभ सिंह ने। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें मिली है सनी इनक्लैब मोहाली से और हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। ग्राम नवा गाँव बुढ़ई पार से अपनी फरमाइश हम तक भेजी सोहन साहू, श्रीमती रुक्मणी साहू, संतोष साहू, श्रीमती शांति साहू, तेजेश्वर, टाकेश्वर, कुशाल और तुलेश साहू ने। ग्राम बन बघेरा राजनंदगांव से योगेश सारवा, श्रीमती आशा सारवा, नीरज, नीलेश और कुमारी अंजलि सारवा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के अभिजीत गवांडकर, श्रीमती सरिता गवांडकर और प्रिंस एकांश गवांडकर ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर के श्रीमती वैशाली सलेस गवांडकर, श्वेता सुमित गवांडकर और कुमारी ध्वनि गवांडकर की फरमाइश भी हमें मिली। बदलापुर मुंबई से हमें खत लिखा है सिद्धांत गवांडकर, प्रणीता गवांडकर और टुकटुक गवांडकर ने। बड़ा बॉम्बो गोपालपुर से संतोषी महतो और जय कुमार महतो की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनहटी बरेली से हमें खत लिखा विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान ने। अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हमें खत लिखा है आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद ने। कोट रोड बागपत से यूसुफ आजाद, वसीला, साहिल आजाद और अंजुम नाज ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है गायक कलाकार कुमार शानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में गाया हुआ ये गीत फिल्म हम सब चोर है से। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं मलोट कैंप पंजाब से सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, किशन, लखविंदर सिंधु, महावीर

तो गुरचरण ग्रोवर, ग्राम धुराबांधा भाटापाड़ा के प्रमोद कुमार साहू, दीपक देव कुमार साहू, कुमारी संगीता, कुमारी सरिता साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमेत कुमार दामोदर और बर्ड सिंह की बुलढाणा से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, श्लोक और दीपाली की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। दौलतबाग मुरादाबाद से हमें मिला है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत और हमें खत लिखा है जाफर हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी ने। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा के अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी है। इसी गीत को सुनना चाहा मोहल्डिया सोनवा झारखंड से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गितेश, अनु, तनु, डिस्को महतो और भाई नंदू महतो ने। मेन रोड सोनवा झारखंड के गुरुशरण नायक, अनसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पानी प्रधान, तनुसी प्रधान, नील पानी प्रधान और नीक पानी प्रधान की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हमें खत लिखा है विष्णु सोही साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी ने। न्यू कॉलोनी टुंडली कसर फॉर्म रोड चायबासा के रश्मिता राउत, मधुष्मिता राउत, प्रकाश जायसवाल, रीना जायसवाल और वैष्णवी कुमारी की फरमाइश भी हमें फिल्म हम सब चोर है के इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। रामभाटा संजय मैदान रोड रायगढ़ से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं रोहित लक्ष्मी, ऋषभ लक्ष्मी, अंश लक्ष्मी, रानी दीपा लक्ष्मी, सुनीता लक्ष्मी और लक्ष्मी लक्ष्मी। ग्राम हतनांग टोडंग टोला महली साई के बीरवल महली, सरस्वती महली, फुलवंती महली, सगुंतला महली, सुमानती महली और यशोदा महली की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत गायक कलाकार कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में फिल्म हम सब चोर है से। आनंद लीजिए श्रोताओं आपके पसंद के इस गीत का।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है पाकुड़ झारखंड से, और हमें खत लिखा है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशोर तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद ने। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल के मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी है। रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से अपनी फरमाइश हम तक भेजने वाले श्रोता हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी लोग। लालपुर मारो से अपनी फरमाइश हम तक भेजी कीर्ति कुमार ध्रुव, सतीश विनय ध्रुव, निम्मी पम्मी ध्रुव और रितेंद्र कुमार ध्रुव ने। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं प्रमिला श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर, अशोक श्याम कुंवर और दीपक श्याम कुंवर। चायबासा के मोहम्मद समीम अख्तर, इकबाल भाई, लीलू खान और महमूद आलम ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी है। पिपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से हमें खत लिखा है उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर और योगिता दिवाकर ने। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें मिली है आदर्श नगर मलोट से, और हमें खत लिखा है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा ने। हमारे इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म ब्रह्मचारी के इस गीत की, जिसे आवाज़ें दी हैं गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू और चीर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। छोटा निमड़ी चायबासा से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं बाबूराम, शांति देवी, ऋतिक कुमार, कोमल कुमारी और रोहन कुमार। सद्भावना रेडियो श्रोता संघ पीएम सिटी बनारस यूपी से हमें अपनी फरमाइश भेजी आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक, मोहिनी, मोहित सिंह, हर्षित और पुलकित ने। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष। बड़ी बाजार चायवासा के मौजम बिहारी, समीमा खानम, जिम्मे, बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान, परी और नबीहा ने भी अपनी फरमाइश हमें फिल्म ब्रह्मचारी के इसी गीत के लिए भेजी है। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं चंदा रेडियो श्रोता संघ चंदा चौक आंध्रा ठाड़ी मधुबनी बिहार के सोभिकान झा सज्जन, हेमलता सज्जन, मनोज सज्जन, लक्की सज्जन, मोहित सज्जन, परी सज्जन, सरोज सज्जन, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी सज्जन, अर्चना सज्जन, विवेक सज्जन और एस के सज्जन। गांव चांदपुर पोटका से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, आयुष भगत, राजू और बसंत कुमार भगत। कॉलेज रोड घाटशिला के सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष आनंद ने भी अपनी फरमाइश हमें फिल्म ब्रह्मचारी के इसी गीत के लिए भेजी है। मुसाबनी से इसी गीत को सुनना चाहा है कमल भगत, रूपाली भगत, सनी, सोनू और अर्णव राज ने। बड़ा बाम्बू जोरडीहा के मोहिना महतो, डिम्पी महतो और राहुल महतो ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हुए यह आ गया आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वरों में फिल्म ब्रह्मचारी से। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी चाईबासा से हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं फरमाशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है गांव के तासरायकेला से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं राधा कृष्णा गोप, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक, आशीष, सुमित, अनामिका, सुनीता, गीता, रीता, सुलेखा, आराध्या गोप, माहिर गोप, खुशी गोप और राहुल गोप। खमरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमें अपनी फरमाइश भेजी है साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू और प्रतीक कुमार ने। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क साजापुर के मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रीक्षित, शशिकांत रियारीत, स्वीटी सागर, अंसुरितिका, नीरज रिचा, नीरज चित्रंजन, उमेश, सरोज रेखा, ऋषभ राजावत और राजावत परिवार के सभी लोगों की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। पटेल नगर मलोट पंजाब से हमें खत लिखा है रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और अर्जुन जाजोरिया ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब के हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जतेक बिरक और मीका बिरक की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। तालुका बुरहानपुर से अपनी फरमाइश हम तक भेजी है भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारेकर ने। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से हमने अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता है अशरत तड़वी, आरी सरसलान और यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला बुरहानपुर से हमें खत लिखा है मुशर्रफ खा तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोजमिन तड़वी, तैमूर तड़वी और तड़वी परिवार के सभी लोगों ने। लक्षनपुर से हमें अपनी फरमाइश भेजी जीवनलाल रजक, सरोजनी रजक और रामजी साहू ने। बाबा कुटी रायगढ़ से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं शिव कुमार चौहान और सक्रांति चौहान। भड़गांव बलौदा बराज बाजार के रामदुलार साहू और नीलिमा साहू ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। हमारे इन सभी श्रोताओं के फरमाइश है फिल्म दिल मांगे मोर का ये गीत, जिसे आवाज़ें दी है सोनू निगम और अलका याग्निक ने। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं तुरी टोला चायबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, संगीता देवी, खुशी कुमारी, अर्पिता कुमारी, सुमित ठाकुर, लाडो और भोला रजक। यमुनानगर हरियाणा से जयपाल धीमान, यशपाल धीमान और अर्जुन धीमान की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। चितलवाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश इंगले, अधरा इंगले और समस्त इंगले परिवार ने भी अपनी फरमाइश हमें फिल्म दिल मांगे मोर के इसी गीत के लिए भेजी है। जरूर वरुट महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं बाबा साहब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, कार्तिक और युवराज। पुरानी भिलाई तीन चरौदा छत्तीसगढ़ के नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीउद्दीन सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, सहनबाज अहमद सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार के सभी लोगों की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। लुधियाना पंजाब से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिवा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद के वलीउल्ला फकीर, डब्लूउल्ला फकीर, परवीन आसमा फकीर और बुलंदशहर के बद्रुवली अंसारी, फर्जी वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हुए यह आ गया आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत फिल्म दिल मांगे मोर से। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

फिल्म दिल मांगे मोर के इस गीत के बाद श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है बिलासपुर देवरी खुर्द से। और हमें खत लिखा है संतोष तलरेजा, आरती अर्चना, सोनू तलरेजा, कुंवर सिंह, गुड्डू भाई और रामदास ने। बठेना पाटन से बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली और शिवम की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। चटादा सारा गांव से सुजान, सुहद्रा वर्मा, आयुषी, निर्मला और कृष वर्मा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला से हमें फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत, गुरशब्द और राहुल। अनारकली बाजार जगराव के सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गाव्या और जयपाल यादव की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है कासम कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से, और हमें अपनी फरमाइश भेजी है यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरिश खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, कासिफ हासिम और इरफान मीना ने। चांडिल ग्राम हारूडी के तुलसीदास महतो, कल्पना, मनोरमा, दीनबंधु महतो और मनमोहनी महतो की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। नांगलोई दिल्ली से हमें खत लिखा है मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्डा ने। अलगीनाट कोरबा छत्तीसगढ़ के जोहित यादव, विपिन यादव, आयुष यादव, श्रीमती फुलजी यादव और यादव परिवार के सभी लोगों ने अपनी फरमाइश हमें फिल्म जोश के गीत के लिए भेजी है और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है गायक कलाकार अभिजीत भट्टाचार्य ने। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता है कोचाई बिद्री गाँव के केपी सोए, सरिता, दुर्गामती, रेशमी, राजकुमारी, विशाल, मुन्ना सोए और सनी सोए। ग्राम सोराबेड़ा से पासिंग सरदार, धनी सरदार, कमल सिंह सरदार, सुखपति सरदार, रमेश, अंशु और बिरु सरदार ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी है। बक्सर बिहार से हमें खत लिखा है सरफुरुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी ने। पुराना तालाब डुमराव के वलीउल्ला अंसारी और आसमानाज अंसारी ने भी हमें खत लिखा। चमन पार्क दिल्ली से सोनम और आदिबा, सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से हमें खत लिखने वाले श्रोता है अकरम हुसैन, इसरत अकरम, वरुबीना वसीम, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, आबिया नाज, साजिया साहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू सैक और चीना सैक, कोकिलवाड़ा उड़ाई मुजफ्फरपुर के मोहम्मद फैसल सैक, नुजर जहां नाज की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। कांति निकेतन राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और रुद्र गुप्ता की फरमाइश भी हमें मिली है। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म जोश का ये गीत गायक कलाकार अभिजीत भट्टाचार्य के स्वर में। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है भाटापाड़ा से सोहन जोशी, हरविंदर चावला और पुणेन्द्र लहरे, डबावली हरियाणा से जेके बाकोलिया, श्रीमती सुनीता बाकोलिया, संजय अनिल और मीनू बाकोलिया की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। खरसवा पतिसाई से इसी गीत को सुनना चाह सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक ने। सोनवा गाँव पोड़ाहाट के मिथुन नायक, मुकेश नायक, राकेश नायक, मुखरू आचार्य और सुखराम नायक ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हुए ये आ गया आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत फिल्म जोश से। आनंद दीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

कार्यक्रम का आज के कार्यक्रम का ये आखिरी फरमाइशी गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म उत्सव से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार लता मंगेशकर और आशा भोसले की। इस गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, धुन है इलिया राजा की। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, सोनू भाटिया और तमन्ना भाटिया। मॉडल टाउन पानीपत से इसी गीत को सुनना चाहा है संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा, आनिया, अनाया, नेहा सागर गुंबर, हिमांशु गुगलानी, इम्बू कुरैसी और सुधीर नूतन ने। बेरड़ी से अपनी फरमाई समय इसी गीत के लिए भेजने वाले श्रोता है राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन कवनेकर और धीरज सवासेरे ने। बड़ा बाम्बू गांव सुपाईसाई से इसी गीत को सुनना चाहा है देवेंद्र ताते, राकेश ताते, निशा कुमारी, प्रकाश ताते, ललित प्रधान और देवेंद्र जी ने। ग्राम गेलिया लोहार से खत लिखा कोमल बेसरा, बासंती, अनु बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा ने। शास्त्री नगर बीड शहर से हमें अपनी फरमाइश भेजी है किशन सपकाल, आशा सपकाल, दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और परभणी से सी आर कुलकर्णी। इचलकरंजी महाराष्ट्र से कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है और हमें खत लिखा है बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, आदित्य हजारे और मितांशु हजारे ने। पुरानी टोली जसपुर छत्तीसगढ़ के मालती नागदेव, कुमारी सोनाली नागदेव, मैंक नागदेव, अनिमेश नागदेव और अंसल नागदेव की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। ग्राम बादुड़ी से नारायण कुदादा, हेमा कुदादा, कैलाश कुदादा, सुषमा, पप्पू, प्रीति, विक्की और पुष्पा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा के चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नुमेश सिंगरौल, नेहा सिंगरौल और वान्या सिंगरौल की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। दादरी गेट भिवानी के

श्रोताओं, फिल्म उत्सव के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं समाप्त होता है। तो अब इस कार्यक्रम से हमें विदा दें, नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं। वक्त है कार्यक्रम रजनीगंधा का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, आइए करते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा की शुरुआत और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत फिल्म गदर से। इस गीत को अपनी आवाज़ें दी हैं गायक कलाकार प्रीति उत्तम और उदित नारायण ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन है उत्तम सिंह की। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं ग्राम पैजनिया, तहसील कौर, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के सत्येंदु चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और आराध्या चंसौलिया, सरोज चौक, अमरावती, महाराष्ट्र से। इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश हमें भेजी है कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा, सालिया, सोएब खान, मुस्तफा खान, राउफ भाई और साहिद भाई ने। गांधीबाग अकोला के रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। इसी गीत को सुनना चाहा है चौहल्दा बागपत से संजय ढीगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल ने। बरकुंडिया से इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश हमें भेजने वाले श्रोता है मीना बिडोली, सुंदरलाल बिडोली, गुरजन बिडोली, लाल मार्शल बिडोली, चांदमनी देवगम, सशमिता बिड़वा बिरवा, नील मार्शल बिडोली और तरल मार्शल बिडोली ने। बड़ा निमड़ी चाय बासा के तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार और सुमित कुमार की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। आमजोड़ा मालुका से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है शिवा गोप, प्रेम गोप, संगीता गोप, शिवांश गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। पटिंडा रोड डबावली के राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी है। आरती टाउन गोदनी, नागपुर, महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता है अल्जियार अब्राहम, उज्जैन अब्राहम, एलन अब्राहम, ग्लोरी अब्राहम, एलेक्स अब्राहम, जोसेफ रूफर्ड, अविनाश क्षेत्रपाल, सिद्धार्थ गोंडा ने, हीरावन सेंडे और उनके साथी। सहावर टाउन, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश से हमें खत लिखा योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक ने। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी है। इसी गीत को सुनना चाहा बेरेड़ी से हुकुम कर्मकार, सुनीता कर्मकार, हार्दिक कर्मकार, प्राची कर्मकार और तनु कर्मकार ने। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें भेजी है प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर ने। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश हमें मिली है सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी खत हमें भेजा है आम्मा खोंडरा रेंगाखार के राजेंद्र कृष्ण नेताम, देवी संदीपा नेताम और चंद्रदीप दक्षप्रिया नेताम ने। डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़ के रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत फिल्म गदर से। आनंद दीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

है पुणे से और हमें खत लिखा है पंकज बाड़ोदे, आर्या प्रियंका, प्रीति बाड़ोदे और चंद्रप्रभा बाड़ोदे ने छत्रपति संभाजी नगर से हमें अपनी फरमाइश भेजी है। राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने रेलवे रोड गंजू डबरा के मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख और अब्दुल सत्तार अंसारी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। बोरखेड़ा विप्रमाल जिला उज्जैन से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं विनोद मूनत, कुमारी नेहा जैन, दीपक मयंक मूनत, चेतन नाहटा और परी मूनत। कुचाई टोडांगदी दो के मुकेश महतो, विजय महतो, दिलीप महतो, सूरजमणि महतो, सुमन महतो और रविंद्र महतो ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है गायक कलाकार कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वरों में गाया हुआ ये गीत फिल्म जुड़वा से। इस गीत के बोल लिखे हैं देव कोहली ने और धुन है अनु मलिक की। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर के मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान रजान और अबान अब्बासी। गांव फ्रांसी के राजकुमार डोडी, सरजीत सिंह डोडी, प्रमोद कुमार डोडी, हांसी शहर के राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। मोपका भाटापाड़ा से हमें खत लिखा भवेंद्र कुमार साहू, लक्की, हर्षित और सुमित्रा साहू ने। सरायकिला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं शिवम, शिवाजी मुंडरी, सुरमणि मुंडरी, हीरामणि मुंडरी, हेमांती मुंडरी, डोबरू मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरू मुकेश, कुशल मुंडरी, जानम सिंह मुंडरी, सिदिबो, सोना बाबू और एफएम सिवा मुंडरी। कनेरा मोहल्ला पटियाला से पत्ता परिवार के मुकेश पत्ता, नीलम पत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से हमें खत लिखा है नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश नरवाड़े ने। आमला टोला चायबासा के कौरक प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद की फरमाइश भी हमें फिल्म जुड़वा के इसी गीत के लिए मिली। ग्राम सोंगा मंगरलोड धमतरी छत्तीसगढ़ के फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन ने भी फिल्म जुड़वा के इसी गीत को सुनना चाहा है। प्रयागराज से इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी पीयूष प्रताप सिंह, स्नेहा सिंह, फट्टन सिंह और शिवनाथ सिंह ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म जुड़वा से, खास खास और खास आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस छोटे से विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम रजनीगंधा में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें मिला है वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से। और हमें खत लिखा है भोला राम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल मधुर, प्रशांत मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और सनी मधुर ने। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ के अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से हमें खत लिखा है दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव ने। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है गांव कैरो से और हमें फरमाइश भेजी है गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशब्द ने। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। आलिका डबावली से अपनी फरमाइश हमें भेजी बसंत सिंह चांद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी ने। लालमाता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान के हर्षिता, रामेश्वर कान्हा, कपिल, मीनाक्षी सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बागड़ी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है गायक कलाकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल सुरों में गाया हुआ ये गीत फिल्म प्रेम कहानी से। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा, किशनगंज बिहार के रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव दास और कीर्ति भानु की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। बंसाई चाईबासा से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है परमेश्वर कुमार, दयावंती देवी, नीलम कुमारी, रचना कुमारी, अमृता कुमारी, पंखुड़ी कुमारी, मीना कुमारी, शिवा खंडायत, शिवम खंडायत और सोनाली खंडायत। डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ के देवशंकर तामोरिया, अजय, रोशनी, पूजा, तुषार और प्रभा देवी तामोरिया की फरमाइश भी हमें फिल्म प्रेम कहानी के इस गीत के लिए मिली है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हैं और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म प्रेम कहानी से।
3: मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। मैं तुझे

इल्ज़ाम कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत सुनवा रहे हैं इसी फिल्म से। आवाज़ें हैं आशा भोसले और सबीर कुमार की, बोल लिखे हैं अनजान ने, धुन है बापी लहरी की। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडावा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दतरंगी से इसी गीत को सुनना चाहा द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छविंद्र कुमार वर्मा ने। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया के ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने भी इसी गीत के लिए हमें अपनी फरमाइश भेजी है। दुबिहा निवादा गाजीपुर से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कलाम गाजीपुर के अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी है। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब के विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, रमापुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी और आरएसपुरी ने भी हमें अपनी फरमाइश इसी गीत के लिए भेजी। गाँव दलाई किला खरसावा के लक्ष्मण सोए, आयुष सोए, सोनू हरजन, गीता सोए, सरिता सोए, सारिका, हारिका, तनुजा, विम्मी सोए, मनीषा सोए, शीतल सोए और सिनेमाए सोए की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। बड़काकाना से हमें इसी गीत को सुनना चाहा अफजाल ताज और साहिल सुल्ताना ने। मुंबई से महेंद्र मोदी और राजा बाबू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। ग्राम खेड़ियाघर प्रखंड मंझारी के बसंत बेंकुरा, सुलोचना बेंकुरा, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, रिंकी कुमारी, रूपाली कुमारी, झिम्पी कुमारी, जयमनी और जयंती की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। बड़बिल ओडिशा से हमें खत लिखा है सुरजीत भाटिया, प्रीतपाल कौर और जीत प्रीत ने। कोटा बहादुर जिला मंदसौर के नेपाल डांगी, राहुल डांगी, पप्पू लाल और विके डांगी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है ग्राम उघड़िया बड़ा बाम्बो से और हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता है नायडू महतो, उषा महतो, प्रियो महतो, डोली महतो, तरुण महतो, पंकज महतो, राहुल बोदरा, अर्जुन बोदरा और रवि बोदरा। मझगांव से अहमद हुसैन, शाह हुसैन, मजहर अली, मजहर हुसैन, रहमत अली, अब्दुल्ला, आजम भाई, विरंची गोप और सबा अहमद ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। सिमधर पार विरमगाम गुजरात के अजित, प्रमिला, भाविस, सनी भावसार, हेतल कृष्णा और जैमिन भावसार ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी। इसी गीत को सुनना चाहा है जामटी वरुण अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश दिनकल कासलेकर और विमल विशाखा कासलेकर ने। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सोमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिन ठाकुर, सुरेश ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से इसी गीत के लिए हमें खत लिखा गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनवीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जी एस रामगढ़िया ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म अनजान से, खास खास और खास हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर।

दुनिया से अब तो हम ना डरेंगे, दुनिया की ऐसी की तैसी।

श्रोताओं, फिल्म इल्जाम के इस गीत के बाद आइए कार्यक्रम को अंजाम की ओर लिए चलते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें मिला है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। और हमें खत लिखा है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, अमनदीप और अनिल शर्मा ने। कालका से सुबचंद बजाज और बिट्टा बजाज साहिल ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। कुचाई ग्राम ईचाहातू से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं गोलाराम लोवादा, लूदरी सोमनाथ, पूर्णिमा लालमुनी और बिंजना और लुवादा परिवार के सभी लोग। ग्राम लोसोदिकी से अपनी फरमाइश हमें भेजी है कोमल महतो, पेमी, गोविंद, जीतुस और साइमन ने। बोरसरा नैला के प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियासु साहू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। ग्राम हंडेरा से मानतारिम सिंह कुंटिया ने भी हमें खत लिखा है। फाजिलका पंजाब से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, सालनी खेड़ा, अरबी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और खेड़ा परिवार के सभी लोग। ओल्ड लिस्नर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी से शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, रुद्र गुप्ता और रिद्धि गुप्ता ने भी हमें खत लिखा है। ऐसबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता और पंखुड़ी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक से गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मय राज और गुनगुन की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म हस्ते जख्म से ये गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी और बलवीर ने। तो और इसी गीत के लिए हमें एक और फरमाइशी खत मिला है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से और हमें खत लिखा है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साफिर राही और मेहरा शाह ने। टावर चौक गुमला के एसएम जावेद, सगुप्ता, अंजुम और जेनिस जोहरी की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हुए यह आ गया आपके रेडियो सेट पर फिल्म हस्ते जख्म का ये गीत। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

श्रोताओं, फिल्म हंसते जख्म के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम रजनीकंठा अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीकंठा। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना, 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता, क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए राज्य में 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे और जर्मनी तथा अमरीका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का

0: इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पामला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए।
2: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
3: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
2: And Department of Science and Technology, our DST.
1: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
4: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही। उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने शांति, कूटनीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की। यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई दिल्ली कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति अमेरिका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि नई तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि AI ने काम करने, लेन देन और फैसले लेने के तरीकों को बदल दिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क आज डिजिटल हाईवे बन चुका है और डेटा AI अर्थव्यवस्था का ईंधन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR News हिंदी और पब्लिक पर एट AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद शुरू हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीधा, पर्यावरण अनुकूल और किफायती व्यापारिक गलियारा शुरू हो जाएगा।
6: भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जब मिथानोल की एक खेप डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल टर्मिनल से बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह के लिए रवाना हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टर्मिनल क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने घोषणा की कि केंद्रीय सरकार बोगीबिल टर्मिनल पर 200 करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग क्षेत्र के लिए एक नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगी। यह केंद्र अगले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे उन्हें समुद्री और शिपिंग उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू और

0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।
1: आज MOUs में हमने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की लक्ष्य हमने रखा है, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एनक्लेव्स बनाने का, वहाँ पे 2700 मीटर का ऑलरेडी उपस्थित रनवे है जिससे कि दूर की कनेक्टिविटी भी वहाँ से हो सकती है। उसके साथ ही बालूरघाट में जहाँ पे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी लैंड है, वहाँ पे भी हम जो उपस्थित स्ट्रिप है उसको भी एक्सपैंड कर वहाँ से भी एयर ऑपरेशंस को शुरू करने का MOU में शामिल किया है।
0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार से कोलकाता से यूरोपीय शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और आंदल से प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। शुरू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को स्वीकृति नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थियों को शामिल होने की संभावना है।
2: इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024, 2025 और 2026 इन 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ 3 विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल दिलाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में जो नामित मेडल है विभिन्न लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है 20-20-20 यानी 60 बच्चों को हम गोल्ड मेडल देंगे, 240 PhD स्कॉलर्स को PhD का सर्टिफिकेट देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा की मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत के जरिए इस परिकल्पना को किस तरह साकार किया गया।
3: 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेन देश के अलग अलग शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल सेवा प्रदान कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। पिछले साल नवम्बर में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
4: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
5: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया।

0: डाइसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की गई। एक रिपोर्ट।
1: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैन लारोडोप्सिस के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल डाइसेरोथ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग, मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हिगमैन जर्मनी के बायो फिजिसिस्ट और जॉर्ज नागेल न्यूरो साइंटिस्ट हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में डिजिटल युग में ई कचरी की चुनौतियां, समाधान और भविष्य की कार्य योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। और जर्मनी तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियां नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग। This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India and Switzerland signed 5 pacts to cooperate. Identified new avenues for defense cooperation. As Jay Shankar says, India's multi-alignment approach enables engagement with major powers. First cargo vessel since independence sails from Assam to Bangladesh via Brahmaputra, reviving international trade route after 80 years. West Bengal to get 4 new airports in 2 years to strengthen regional air connectivity as the center and state sign MOU. And German and U.S. scientists win Nobel Prize in Medicine for breakthrough technique unlocking mysteries of the brain. And now the news in detail. India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, young professionals, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, Prime Minister Modi said, during their talks, the two sides identified new avenues for defense cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
3: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने आज हमने एग्रीमेंट किया है।
2: सेक्रेटरी वेस्ट एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सीबी जॉर्ज एड्रेस्ड मीडिया इन न्यू दिल्ली दिस इवनिंग ऑन अग्रीमेंट साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज।
4: Both sides exchanged the following memorandum of understanding agreements and letters of intent signed during one agreement on exchange of young professionals. Third, MOU on mobility between the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research and the Ministry of Road Transport and Highways. Fourth, letter of intent between Departments of Science and Technology and Swiss National Science Foundation. And fifth, implementation agreement between Zurich

0: York Nagel won the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine for developing a breakthrough technique to decode the inner workings of the brain. This method, known as optogenetics, acts as a light-sensitive switch, allowing scientists to potentially map which cells are responsible for which function in the brain. The Nobel Assembly of Sweden's Karolinska Institute made the announcement today. The Nobel Committee said in a statement that the German duo of Hegemann and Nagel discovered a protein in algae known as channel rhodopsin before American scientist Dicer Roth transformed the protein into a light control switch for nerve cells. It added that the work has laid the foundation for a new era in neuroscience. Benchmark domestic equity indices rose around 0.6% today, snapping a four-day losing streak. The Sensex gained 473 points to close at 72,382. Nifty climbed 134 points to settle at 22,556. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Switzerland signed 5 pacts to strengthen cooperation in transport technology, infrastructure and mobility, identify new avenues for defense cooperation and deepen collaboration in nuclear energy. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India's multi-alignment approach enables engagement with major global powers including US, Russia and China. First cargo vessel since independence sails from Assam to Bangladesh via Brahmaputra, reviving international trade route after 80 years. West Bengal to get 4 new airports in 2 years to strengthen regional air connectivity as center and state sign MOU. And German and US scientists win Nobel Prize in Medicine for breakthrough technique unlocking mysteries of the brain. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत और स्विट्जरलैंड ने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में तावुन को तकवीत देने, बुनियादी ढांचे और मोबिलिटी, दिफाई इश्तराक के मैदान में नए इम्कानात की तलाश और न्यूक्लियाई तवानाई में तावुन को वसत देने से मुतालिक 5 मौहिदों पर दस्तखत किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत का कसीर जहती वाबस्तगी का नुकता नजर उसे अमरीका, रूस और चीन समेत सभी अहम आलमी ताकतों से मसरूफ अमल रहने के काबिल बनाता है। बैनुल अक्वामी तिजारती रास्ते की बाजियाबी के तहत 80 साल के वक्फे के बाद आसाम से पहला कार्गो बहरी जहाज ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए बांग्लादेश पहुंचा। मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत ने एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत अगले 2 साल के दौरान इलाकाई फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के मकसद से मगरबी बंगाल को 4 नए हवाई अड्डे मिलेंगे। और जर्मनी और अमरीकी साइंसदानों ने दिमाग पुरअसरार पेचीदगियों का इंकशाफ करने वाली तकनीक तैयार करने पर अद्वियात के मैदान का नोबेल इनाम जीता है। अब खबरें तफसील से। भारत और स्विट्जरलैंड के दरमियान आज नई दिल्ली में 5 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। ये मुआहदे वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर गी पहमला के दरमियान 2 तरफा मुजाकरात के बाद तय पाए। इन मुआहदों में माइग्रेशन और मोबिलिटी, शराकतदारी, नौजवान पेशावर अफराद का बाहमी तबादला, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी निजाम और मखसूस शोबों में बुनियादी ढांचे के फरोग और तावुन जैसे उमूर शामिल हैं। बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड में भारतीय बरामदात के लिए मार्केट तक बेहतर रसाई का अमल कायम करने और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को मजीद आसान बनाने के लिए कई अहम फैसले किए हैं।
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: वजारत खारजा के मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सी बी जॉर्ज ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफा मीटिंग के बारे में आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में मफाहमतनामे, समझौते और बाहमी तावुन से मुतालिक इकरारनामों का भी तबादला किया।

0: हेमंत बिस्व शर्मा वर्चुअल वसीले से जहाज को रवाना करने की तकरीब में शामिल हुए। राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अनथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के खातिर अनथक काम कर रही है। खुसूसी सीरीज के तहत आज इस बात पर रोशनी डाली जा रही है कि किस तरह वंदे भारत ट्रेनों की आमद ने इस विजन को हकीकी शक्ल दी है। पेश एक रिपोर्ट।
2: ऐसे में जब भारत साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की जानिब गामजन है, मोबिलिटी कौमी तरक्की के मरकजी सुतून की हैसियत से उभरी है। वंदे भारत ट्रेनें मुल्क भर में भारतीय रेलवेज की तेज, महफूज, ज्यादा काबिल एतबार और मुसाफिर मरकूज रेल खिदमात पहल के तौर पर नुमाया हुई हैं। फरवरी 2019 में शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ने नई दिल्ली वाराणसी रूट से अपने सफर की शुरुआत गुज़िश्ता 4 नई वंदे भारत ट्रेनों के इफ्तिताह के दौरान वजीर आजम ने कहा कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवेज की अगली नस्ल की बुनियाद रख रही हैं।
3: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
2: नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरी बंगाल में फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के खातिर अगले 2 साल के दौरान 4 नए हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे। इस बारे में मरकज और मगरी बंगाल हुकूमत के दरमियान आज नाबन्ना में मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस दौरान शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू और मगरी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। इस मनसूबे में हासीमरा और कलाईकुंडा में शहरी इनक्लेव, बालोरघाट हवाई अड्डे की तोसी और पुरोलिया में नए हवाई अड्डे की तामीर शामिल है। जनाब नायडू ने कहा कि कलाईकुंडा में वाक 2700 मीटर का रनवे बोइंग 20 और काबिल होगा। इस दौरान वजीर आला सुविंदु अधिकारी ने कोलकाता और यूरोपीय शहरों के दरमियान सीधी परवाजों और अयोध्या तिरुपति जैसे भारत मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्तरका फौजी मश्क माउंटेन गार्डियन 2026 आज उत्तराखंड में शुरू हुई। ये फौजी मश्क पहाड़ी इलाकों में जंगी सलाहियत पर तवज्जो मरकूज करते हुए बाहमी मफाहमत और तालमेल में इजाफा करने के मकसद से की जा रही है। वजारत दिफा के मुताबिक दोनों मुल्कों की अफवाज की यकसां तादाद में नुमाइंदगी है और इस मश्क में कुल 92 फौजी अहलकार शिरकत कर रहे हैं। के ग्रेड्स कायम करने, ड्रोन कार्रवाइयों, जंगी हिकमत अमली की तरबियती मश्क, जिस्मानी कुव्वत बर्दाश्त की तरबियत, चट्टानों पर चढ़ना, रुकावटों को पार करना और मजबूत मवासलात के मरकज वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत के मामले में दुनिया की क्यादत करेगा। आज नई दिल्ली में इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिंपोजियम 2026 से खिताब करते हुए जनाब सिंधिया ने कहा कि भारत टेली मवासलात के आला दरामद करने वाले मुल्क से निकलकर अब बरामदकार बन गया है। भारतीय इंतखाबी कमीशन ने लोकसभा में अपोजिशन के लीडर जनाब राहुल गांधी के इन इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है कि आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने वोटर फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी और यकतरफा तौर पर तब्दीली की है। कमीशन ने वजाहत की कि SIR के लिए फॉर्म 6 के साथ मुंसलिक डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कमीशन ने यह भी कहा कि बिहार में SIR से मुतालिक हुक्म पिछले साल 24 जून को कमीशन के जरिए इत्तेफाक राय से मंजूरी के बाद जारी किया गया था। कमीशन ने इस बात को भी उजागर किया कि इस साल 27 मई के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस हुक्म को बरकरार रखा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी के अमल के दौरान इंतखाबी कमीशन के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म 6 में कमीशन की जानिब से किसी तब्दीली की मंजूरी नहीं दी गई है। साल 2026 का फिजियोलॉजी

0: अद्वियात के शोबे के नोबेल इनाम अमरीकी शहरी कार्ल डाइसरोथ और जर्मन शहरियों पीटर हैगमैन और गेओर्ग नागेल को दिया गया। इन अफराद को दिमाग के अंदरूनी कामकाज के तरीक़ेकार का पता लगाने की तकनीक तैयार करने में काबिले जिक्र हुसूलियाबियों की बिना पर दिया गया है। ये तरीक़ेकार, जिसे ऑप्टोजेनेटिक्स कहा जाता है, रोशनी पर मबनी स्विच की तरह काम करता है, जिससे साइंसदान ये पता लगा सकते हैं कि दिमाग के कौन से खलियात कौन सा काम करते हैं। स्वीडन में स्टॉकहोम के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली में आज इस बावकार इनाम का ऐलान किया गया। अपने बयान में कमेटी ने कहा कि हैगमैन और नागेल की जर्मन जोड़ी ने चैनल रोडोस्पिन नामी प्रोटीन का पता लगाया, जबकि अमरीकी साइंसदान डाइसरोथ ने प्रोटीन को आसाबी खलियात के लिए रोशनी से चलने वाले स्विच में तब्दील किया। और अब खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में तआवुन को तकवीत देने, बुनियादी ढांचे और मोबिलिटी, दिफाई इश्तराक के मैदान में नए इम्कानात की तलाश और न्यूक्लियाई तवानाई में तआवुन को वसत देने से मुतालिक 5 माहदों पर दस्तखत किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत का कसीर जहती वाबस्तगी का नुक्ता नजर उसे अमरीका, रूस और चीन समेत सभी अहम आलमी ताकतों से मसरूफ अमल रहने के काबिल बनाता है। बैन अलाक़वामी तिजारती रास्ते की बाजियाबी के तहत 80 साल के वक्फे के बाद आसाम से पहला कार्गो बहरी जहाज ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए बांग्लादेश पहुंचा। मरकज और मगरीब बंगाल हुकूमत ने एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत अगले 2 साल के दौरान इलाकाई फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के मकसद से मगरीब बंगाल को 4 नए हवाई अड्डे मिलेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार दोस्तों, हमारे साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या है वो एक चीज जो हमारे सबसे करीब रहती है? जाहिर है आप कहेंगे हमारा स्मार्टफोन, लेकिन इसके अलावा लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, हेडफोन, हमारी जिंदगी इन गैजेट्स के बिना जैसे अधूरी सी हो गई है। साथ ही एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन वगैरह ने हमारी जिंदगी को आसान तो कर दिया है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है दोस्तों कि जब ये गैजेट्स पुराने हो जाते होंगे, खराब हो जाते हैं, तो आखिर कहां जाते हैं? हर साल दुनिया भर में करोड़ों टन ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा हो रहा है। आज हमारा देश और पूरी दुनिया इस डिजिटल कचरे के पहाड़ के नीचे जैसे दबती सी जा रही है, और रिसाइकलिंग की सही व्यवस्था न होना, जागरूकता की कमी और गैजेट्स को कचरे में फेंक देने की हमारी आदत, इसने एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबके लिए खड़ी कर दी है। इस कचरे में मौजूद लेड, मर्करी और कैडमियम जैसी जहरीली धातुएं हमारी हवा, हमारी मिट्टी और पानी को जहरीला बना रही हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जहां समस्या है वहीं समाधान भी है। अगर हम जागरूक हो जाएं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के मंत्र को अपनाएं और अपने ई कचरे को सिर्फ अधिकृत रिसाइकलर्स को ही सौंपें, तो शायद हम इस बड़े संकट को बहुत हद तक टाल सकते हैं। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम गहराई से समझेंगे कि ई कचरे की ये चुनौती आखिर कितनी गंभीर है और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमारे पास इसके क्या समाधान है। और आज ऐसी ही बातों की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ई वेस्ट रिसाइकलिंग विशेषज्ञ मयंक सिन्हा जी को। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन मयंक जी।
1: धन्यवाद।
0: और दोस्तों, हमारा आज का विषय जो हमने पहले ही आपको बताया भी है, वो है डिजिटल युग में ई वेस्ट चुनौतियां, समाधान और आगे की राह। और हम आपको बता दें, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारे नंबर हैं 2331 08 1 23 71 71 7 अलावा 2331 44 44। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर हैं तो इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें, यदि आप लैंडलाइन से हम पर संपर्क तो 940044। तो इस पर आप लिख करके हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारे लैप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, शुरू कर, मैं देख रहा हूं कि अभी हमने आपसे बात शुरू ही की कि हमसे जुड़ गए एक श्रोता रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी। जी वाजपेयी जी, कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा?
2: नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि इलेक्ट्रिक कचरा जो है रिसाइकलिंग कैसे किया जाएगा।
0: जी आप अपना सवाल एक बार दोहराएंगे।
2: मैं ये कहना चाहता था कि इलेक्ट्रिक कचरा जो है, वेस्टेड जो है, इसको रिसाइकलिंग कैसे करेंगे।
0: इलेक्ट्रिक कचरा जो है इसको रिसाइकल कैसे करेंगे, ये इनका प्रश्न है। जी।
1: देखिए, आप अगर अपना AC, फ्रिज, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक देखेंगे तो वो किस से बना है? वो मेटल से बना है, उसके अंदर चिप्स हैं। तो जैसे मैं अगर आपका फ्रिज देख लूँ तो फ्रिज में लोहा है, एल्यूमिनियम है, कंप्रेसर है जिसमें कॉपर है, उसमें जो सर्किट है उसमें गोल्ड और सिल्वर भी है, तो ये सारे मेटल्स हैं। तो रिसाइकलिंग का मतलब ये है कि क्या हम जो आपके पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसको साइंटिफिक तरीके से तोड़ें। उसके बाद अलग अलग किस्म के प्रोसेसेस हैं, जैसे हम इंजीनियरिंग में करते हैं कि मेटल्स जो हैं कुछ मैग्नेटिक होते हैं तो उनको मैग्नेट से अलग करें, कुछ मेटल्स हैं जो कुछ कुछ अलग अलग केमिकल में डिसॉल्व होते हैं, हम उससे अलग करें। तो इस तरीके से बड़े बड़े प्लांट, फॉर्मल रिसाइकलिंग जो प्लांट हैं, उसमें ये मेटल्स, जिस जो आपके गैजेट जिस मेटल से बने हैं, वही मेटल उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो मेटल्स वापस, वो लोहा, वो पदार्थ वापस जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनको दिए जाते हैं। तो आप समझिए, रिसाइकलिंग बहुत टेक्नोलॉजी के साथ है। सारे जो मेटल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और फिर नए प्रोडक्ट में डाले जाते हैं।
0: जी, दरभंगा बिहार से हमसे जुड़ चुके हैं हमारे श्रोता मोहन पासवान जी। पासवान जी, कहिए, क्या प्रश्न है आपका?
3: अरे इकट्ठे प्रणाम सर।
0: जी जी,
3: हेलो, इकट्ठे प्रणाम सर
0: जी। नमस्कार नमस्कार, कहिए
3: सर। ई कचरा प्रबंधन में होने वाले कमी से किस प्रकार से लोग बच सकते हैं सर? सर, गांव में ई कचरा से होने वाले हानि से बचने के लिए गांव के लोग जैसे कि डिजिटल सामान और कुछ सुई, इस प्रकार के जो दिए जाते हैं, उसे बचने के लिए क्या करें सर?
0: जी, तो इनका प्रश्न सिन्हा जी गांव को लेकर है, खास तौर पर कि जो गांव में जो हमारी आबादी रहती है वो कैसे ई कचरे की इस समस्या से निजात पा सकती है?
1: देखिए, गांव में, छोटे शहरों में, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो कलेक्ट कैसे किया जाए। अब हम सबको पता है कि जब कोई अपना कोई भी टीवी हो, फ्रिज हो, मोबाइल को छोड़िए, एसी हो, जब हम नया खरीदने जाते हैं तो हमें उसके लिए दुकानदार कोई वैल्यू देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसमें से, जैसे मैंने पिछले सवाल के बारे में बताया, उसमें से मेटल जो है, लोहा, कॉपर निकलता है और उसकी एक मूल्य है। अब दिक्कत ये है कि गांव में जो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो ई वेस्ट हो, वो इकट्ठा कैसे किया जाए और वो इकट्ठा होके रिसाइकल इंडस्ट्री से तक कैसे पहुंचा जाए। तो इसमें मुझे लगता है हमें लोकल जो म्यूनिसिपल है या जो ब्लॉक में है या जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ मिलके, पंचायत है, मिलके एक हमें पूरा एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि ये सारा अच्छे से इकट्ठा भी हो और फिर ये रिसाइकलर के पास पहुँचे। जब ये पूरा सिस्टम आएगा तब मेरे ख्याल से ये होगा। तो ये जुड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये पूरा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा और सरकार के साथ जुड़ना पड़ेगा। सरकार की बहुत पॉलिसीज हैं पर शायद वो आप तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो आप अगर आवाज उठाएंगे तो पक्का ये होगा।
0: जी, हमारे एक और श्रोता सासाराम बिहार से हैं, अमित उपाध्याय जी। अमित जी, कहिए, क्या है प्रश्न आपका?
4: जी नमस्कार मेरे सारे, आपको अभी और आपके जितने भी विशेषज्ञ है, मेरा दो सवाल था। ये सवाल था कि जैसे कि जितना भी कचरा हम वो फैलता है, इसको मतलब क्यों नहीं जैसे व्यापक तौर पर एक प्रचार प्रसार हो जाता कि जन जन तक लिए पहुंच सके। जैसे कोई भी चुनाव होता है या कोई भी ऐसा कैंपेन होता है, सरकारी कैंपेन, तो इसको हम लोग ऐसे तक व्यापक तौर पर इसको प्रचार प्रसार करते ताकि गाँव गाँव तक पहुँच जाए। और दूसरा सवाल ये था कि जो हम लोग उपग्रह में जितना भी हम लोग छोड़ते हैं आकाश में, तो बहुत सारा वो एक समय 4 साल या 5 साल के बाद वो ग्रह में हमेशा वो घूमते रहता है, तो वो भी कचरा है, तो बहुत सारा का तो कचरा आकाश में घूम रहा है, तो उसको निपटान के लिए कैसे क्या किया जाए ताकि वो धीरे धीरे नष्ट हो जाए, वो भी कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी के लिए खतरा है। जी
0: जी, तो आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल बहुत वाजिब है और हम तो अभी घरेलू ई वेस्ट की बात कर रहे थे, आप तो अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं बिल्कुल, तो ये तो हमारे विशेषज्ञ ही इस विषय में बताएंगे। जी
1: देखिए, अंतरिक्ष का जो मामला है, शायद ये मेरे भी नॉलेज से बाहर है, क्योंकि जो ये सैटेलाइट हैं, जो ये यंत्र आसमान में जा रहे हैं, स्पेस में हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद इस पे अभी रिसर्च चल रहा है, इस पे सब देश कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या किया जाए, पर ये बहुत सही सवाल है, इस पे थोड़ा हमें भी स्टडी करना पड़ेगा, तब हम आपको इसका जवाब दे पाएंगे।
0: जी, तो दरअसल एक ऐसा सवाल है, हालांकि हमारे एक और श्रोता, पहले इनका सवाल ही ले लिया जाए फिर मैं अपना प्रश्न आपके सामने रखूंगा सेना जी। ये हमारे श्रोता हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से, योगेश जी। तो योगेश जी कृपया कहिए क्या प्रश्न है आपका।
5: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।
1: नमस्ते।
5: मेरा प्रश्न रहेगा कि ई वेस्ट को लेकर, जैसे कि हमारे गांव में भी इसके बारे में जागरूकता का अभाव रहता है, तो सबसे पहले जरूरत तो ये रहेगी कि लोगों को ई वेस्ट के बारे में जागरूक किया जाए। जैसा कि आपने बताया कि ई वेस्ट को रिसाइकिल करके भी हम ई वेस्ट के खतरे से बच सकते हैं, लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि ई वेस्ट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, और हमारे पास जो ई वेस्ट मतलब ये जनरल में वेस्ट को कलेक्ट करने आते हैं वो इस तरह के वेस्ट को लेने से ही इनकार कर देते हैं, तो ऐसे में ये ई वेस्ट एनवायरमेंट में चला जाता है, पानी में चला जाता है, नदियों में जाता है, प्रदूषण फैलाता है, इसके भीतर की जो हानिकारक धातुएं हैं और केमिकल्स हैं वो हमारे वातावरण पर बुरा प्रभाव डालती हैं, तो ऐसे संबंध में इसके डिस्पोजल के लिए हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि लोगों में जागरूकता का अभाव है, लोग वेस्ट को अलग अलग नहीं करते, चाहे वो केमिकल हो या ई वेस्ट हो, उसको इकट्ठा ही कर देते हैं, सेग्रीगेशन की कोई उनकी समझ नहीं होती है, तो मैं चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी के बारे में भी बताएं जो इस तरह की जागरूकता का संदेश देती हो ताकि हम ई वेस्ट के खतरे से बच सके।
0: जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, चूंकि नदियां हमारी तमाम जो हैं वो पर्वतों से आती हैं और आप पर्वतीय प्रदेश से बोल रहे हैं, तो वहां से जब पानी आता है तो वो समझिए कि सारे में जो वो व्याप्त होता है, तो उसके साथ अगर उसमें कुछ विषैले तत्व होंगे तो वो सारे क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित करेंगे। और सिन्हा जी, हाँ आपसे।
1: नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगा कि जो ई वेस्ट है इसके तीन रूप में देखा सोचता हूँ। एक है कि जो हमने बात की एनवायरनमेंट की, प्रकृति की, सबको पता है कि ये अगर पानी में हमारे खेतों में हमारे ग्राउंड में जाएंगे इससे पोल्यूशन होता है, इसीलिए इसकी रिसाइकलिंग एक में होनी चाहिए ताकि ये ना हो। दूसरी चीज़ है कि जो इसकी रिसाइकलिंग करते हैं, क्योंकि ये हाथ से रिसाइकलिंग हो रही है, ये इनफॉर्मल सेक्टर में रिसाइकलिंग हो रही है, बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, महिला भी इन्वॉल्व है, तो एक हेल्थ एस्पेक्ट भी है जो इसकी रिसाइकलिंग कर रहे हैं, तो ना कि हमारी हेल्थ पर इनकी हेल्थ। तीसरी बात ये है कि जो ये मेटल्स निकल रहे हैं, जैसे मैंने बताया कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, स्टील है, बहुत सारी जो मेटल्स हैं हमारे के लिए बहुत लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी जो फॉरेन करेंसी है जो इसमें जाती है, तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट नेशनल हित हैं। पॉलिसी, मुझे खुशी है कि लास्ट पिछले अगर अगर मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं, शायद हमारे बाकी श्रोताओं को भी इंटरेस्ट हो, बट सिंपल तरीके से जो एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने बहुत अच्छा एक पोर्टल बनाया है जिसमें जितने रिसाइकलर हैं जो साइंटिफिक पूरी वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकलिंग कर रहे हैं और हैं इसी बेचते हैं वॉशिंग मशीन सब, फिलॉसफी है कि अगर किसी ने मान लो 1 लाख वॉशिंग मशीन बेचे तो उन्होंने बोला है भाई 7 साल में ये वॉशिंग मशीन रिसाइकल होने चाहिए, और उसमें उन्होंने एक कोटा बनाया, एक टारगेट बनाया है जो सारा डेटा ड्रिवन है, और वो अगर वो मैन्युफैक्चरर वो ब्रांड अगर नहीं करेगा तो उस पर बहुत बड़ी पेनल्टी है, फाइनेंशियल पेनल्टी है, उस पर बहुत सारे और रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए और इसीलिए अब जितने भी ब्रांड हैं वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि जो बेचें वो जब पुराना हो जाए रिसाइकल हो जाए कलेक्शन करें। और उन्होंने ये भी बोला, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो चाहते हैं जो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिसाइकलिंग, मान लीजिए 1 लाख टन आप नहीं मीट कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई जरिया नहीं है वापस लाने का, आप बनाइए, तो वो कोटा आप रिसाइकलर से ले सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप जो रिसाइकलर हैं उनको भी आप इनकरेज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये सारा अच्छा। और लास्ट सवाल ये है कि कैसे आप तक पहुंचे, जैसे मैंने पिछले सवाल का भी जवाब दिया, हम सबको मिलके जुड़ना है जो दूर दराज के इलाके हैं, कैसे हम सरकार के साथ, तो शायद बड़े शहरों में है या इंडस्ट्रियल एरियाज में है, वहां तक पहुंचे। और आप भी इनोवेशन करिए, आप भी रिसाइकल रिसाइकल बनिए।

0: भी तो उसी प्रचार अभियान का एक हिस्सा है जिससे लोगों में जागृति आए, और निसंदेह आपके जो ये सवाल है महत्वपूर्ण वो भी जागृति लाने में सहायक है। और नई दिल्ली से हमारे श्रोता हैं जगदीश जोशी जी। कहिए जोशी जी, क्या प्रश्न है?
1: हाँ जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार।
1: एंकर साहब आपको भी नमस्कार, और जो विशेषज्ञ बैठे हैं उनको भी नमस्कार
0: जी। प्रणाम, नमस्कार।
1: तो एक तो क्वेश्चन तो मैं दो तीन छोटे छोटे पूछूंगा। आपके मंच के, जो आपका बड़ा मंच के माध्यम से अपने युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ, विशेषकर मैं मोबाइल है कि मोबाइल हमें चलाने लगा है, तो ये एक मैसेज है। और दूसरी बात यह है कि जैसे गवर्नमेंट कई जगह कैंप लगाती है, चाहे वो अभी जीरो बैलेंस के खाते के लिए लगाए थे या मतदाता सूची के लिए लगा रखे हैं, तो आपको लगता नहीं कि गवर्नमेंट को ये ई कचरे के लोगों को अवेयर करने के लिए गांव-गांव में कैंप लगाना चाहिए, या गवर्नमेंट लगाती है आपकी जानकारी में पंचायत में?
0: आपका कहना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि इसी जागृति अभियान के तहत तो हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आपका जो प्रश्न है वो हम तक पहुंच गई है आपकी जिज्ञासा, और मैं समझता हूं कि उससे खास तौर पर जो सवाल हमें समझ में आता है वो ये है कि देखिए, जब हमारे सिन्हा जी जो आम नागरिक हैं शहरों के गांवों के, वो चाहते हैं दिल से कि हम अपना ई कचरा जो है वो रिसाइकल के लिए दें, लेकिन क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐप मौजूद है जिस पर वो संपर्क करके ये कह सकें कि हमारे पास ये ई कचरा है और इसको आप ले जाइए, और क्या उन्हें उसके लिए कुछ भुगतान भी प्राप्त हो सकता है?
2: हाँ है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है और रिसाइकलर्स अब उन बढ़ रहे हैं, जो फॉर्मल रिसाइकलर हैं, तो वो चाह रहे हैं कि वो सीधा कस्टमर से या जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो आप हैं, उनसे डायरेक्टली उठाएं, और इसीलिए अब नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। जिस तरीके से हम खाना अभी घर से कोई हमें डिलीवर कर देता है, हम कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं, हमारे घर तक आ जाता है, तो प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। उनका नाम मैं अगर लूँगा तो शायद मैं किसी को फेवर करूँगा, पर जैसे आप अगर ऑनलाइन जाएंगे, आप सर्च करेंगे मुझे अपना पुराना एसी बेचना है, फ्रिज बेचना है, तो शायद आपके पास कोई प्लेटफॉर्म आए, जैसे सेल स्मार्ट एक प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म है, आप किसी बड़े रिटेलर के यहाँ दुकान में जाएंगे तो उनके पास बॉक्स होता है, तो प्लेटफॉर्म आ गए हैं, उसको अभी आपको ऑनलाइन जाना है, आपको ढूंढना है और आपको मिलेंगे। और सरकार भी, गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है अपने अलग अलग मिनिस्ट्री से, अपने डिपार्टमेंट से, कि इसका प्रचार करें, कैंप्स रन करें। बहुत छोटा है जो अभी हम कर रहे हैं, बट पूरा फोकस है, तो ये पहुंचेगा आप तक।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमने गौर किया जब आपने कहा कि अक्सर जब हम मोबाइल फोन के और खास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इनके स्टोर पर जाएं, तो एक ऐसा कोना जरूर होता है जहां वो कहते हैं कि यहां आप अपना जो पुराना ई वेस्ट है वो छोड़ सकते हैं, लेकिन निसंदेह इसको और बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है, जैसा कि आपने बताया कि ऐसे ऐप्स मौजूद हैं और आप उन्हें सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। महाराष्ट्र, ठाणे महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं गुरुनाथ। गुरुनाथ जी कहिए, क्या प्रश्न है आपका?
3: जी सर नमस्कार।
0: नमस्कार
3: सर, मेरा क्वेश्चन है, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, ई कचरा समस्या तो है, लेकिन सर जैसे मतलब घर पे इसको डिस्प्ले की जाए, स्क्रैपिंग वाले तो बहुत मुश्किल से लेते हैं ये जो कुछ गैजेट होते हैं, तो क्या घर पे कुछ जो डिस्प्ले कर सकते हैं? और मेरा जो दूसरा सवाल है, इसमें से जो जो खतरनाक किरणोत्सर्ग निकलते हैं, क्या आदमी के लिए मतलब कौन से डिजीज हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं ये भी सुना है कि कुछ डिजीज इसके वजह से आदमी को हो सकते हैं। थैंक यू
0: जी। आपके दो प्रश्न हैं, पहला तो आपने कहा कि घर से ही हम कैसे उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं, तो वो जैसा कि बताया है अभी आपको कि इसके लिए ऐसे एप्स मौजूद हैं, आप उनको ऑनलाइन सर्च करें, उनसे संपर्क करें, या फिर जो बड़े स्टोर्स हैं वहां जब आप जाते हैं खरीदने के लिए तो वहां भी ऐसी सुविधा दी जाने लगी है जहां आप अपने ई वेस्ट से निजात पा सकते हैं। और इसके अलावा मैं समझता हूं कि आपने जो पूछा कि नुकसान जो होते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं और कौन से ऐसी धातुएं हैं खास तौर पर, ऐसे विषैले तत्व हैं, उनके विषय में हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको सटीक जानकारी देंगे।
2: देखिए ये तो आपको पता है कि आप खाने में अगर पेस्टिसाइड डालेंगे, केमिकल डालेंगे, कोई भी केमिकल हो वो हानिकारक तो होगा, कुछ कम कुछ ज़्यादा। तो हमारे मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में भी जो बैटरी हैं, जो उसमें कैडियम है, कैडमियम हो सकता है, लेड हो सकता है, कोई भी मेटल केमिकल हो सकता है, कुछ बहुत हानिकारक है कुछ कम है। और ये हमको पता है कि जब ये पानी में जाता है, ये हमारे फूड में आता है, तो बीमारियां कैंसर तक की भी होती हैं। इसीलिए ये मतलब ये मामूली बात नहीं है, बहुत ही ज़रूरी बात है कि हमें इसको सॉल्व करना है। और बिल्कुल घर पे आप मत रिसाइकलिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये केमिकल्स हैं और ये एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, ये रिसाइकलर के पास जाना चाहिए। बट यस, ये हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं अगर ये रिसाइकल नहीं होगा और हमारे अगर ये लैंड में, पानी में वापस जाएगा।
0: जी, तो अब ये जो अगला प्रश्न है हम ये ले रहे हैं, हमें मिला है व्हाट्सएप के जरिए, और मनोज पान से नागपुर महाराष्ट्र से पूछते हैं हमसे, कहते हैं कि ई वेस्ट में किस प्रकार की वस्तुएं आती हैं जो हम आपको बता ही चुके हैं, और ये कहते हैं कि इसे किस प्रकार से रिसाइकल किया जाए ये भी हमने आपको बताया। फिर इनका जो प्रश्न है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कहते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से अवेयर किया जाए, ई वेस्ट डीकम्पोज होता है क्या, और होता है तो कैसे। जी
2: नहीं, बच्चे तो आई थिंक आजकल बहुत जागरूक हैं, हमें पता है कि वो शायद माँ बाप से ज़्यादा जागरूक हैं, वो माँ बाप को बताते हैं और अगले 50-100-80 साल तो उनको जीना है।
0: जी, और ये बहुत अच्छी बात है कि अब ये पाठ्यक्रम का हाँ, एक अंग हो गया है कि उनको जागरूक किया जा रहा है। जी,
2: और देखिए जैसे मैंने कहा, ये है धातु जो आपके मोबाइल में है, लैपटॉप में है, ये है केमिकल, तो ये तो आपको भी पता है कि धातु तो ज़मीन से ही आए हैं, ये वापस जाके ये डिसॉल्व तो नहीं होंगे, ये केमिकल वापस डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर हम कोशिश करें कि 100% जो आया है वो रिसाइकल हो जाए, फिर वो नए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में आए, तो ना तो हमें नए माइनिंग करनी पड़ेगी ज़्यादा, ना हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये पूरा जो एक गोला है ये बनेगा, तो ये धातु, ये केमिकल्स तो आएंगे ही नहीं। तो इसीलिए अगर ये हम कोशिश करें कि हम इसको उस तरीके से सोचें, प्लास्टिक का पता है रिसाइकल करेंगे, मेटल की भी वैल्यू है, मेटल मेटल का भी एक मूल्य होता है, और ये अगर रिसाइकल होगा तो वापस जो जो नए प्रोडक्ट हैं उसमें यूज होगा।
0: जी, शिमला हिमाचल प्रदेश से राकेश हैं हमारे साथ। जी राकेश जी, कहिए आपका प्रश्न।
4: जी जी नमस्कार, मैं नमस्कार। शिमला हिमाचल प्रदेश, और मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम कोई भी चीज रिसाइकल करते हैं तो किस तरह से हमें प्रावधान सावधानी रखती है, और दूसरी बात ये मेरा, जैसे कि प्लास्टिक की चीजें, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें हैं, जैसे टूटी हुई कुर्सियां हैं, इसको जो है हिमाचल में जैसे तापमान कम रहता है या क्या बोलते हैं, हमें फर्क ना पड़े करना चाहिए प्लास्टिक की चीजों को।
2: उसके लिए मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये घर पे नहीं की जा सकती है, इसको आपको रिसाइकलर के पास भेजना है, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे कांच हो, चाहे मेटल हो, चाहे आपका मोबाइल हो, तो आपको ढूंढना है, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे आपके लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे जो बड़े बड़े दुकानदार हैं अगर उनके पास ड्रॉप बॉक्स है वहाँ पर आप डालिए, अगर वो वैल्यू दे सकते हैं, मूल्य दे सकते हैं दीजिए, नहीं तो नहीं दे सकते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि उनका भी एक खर्चा है उसको लेके किसी रिसाइकलर के यहाँ पहुँचाने का, और वही मेरे हिसाब से सही राह होगी, घर पे बिल्कुल कोशिश भी नहीं करें और आप कर भी नहीं पाएंगे।
0: जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की है, और आप भी इस बात को ख्याल रखिए कि खुद ई वेस्ट को रिसाइकल करने की कोशिश न करें, क्योंकि उसमें निसंदेह कई ऐसे पदार्थ होते हैं, कई ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं और इसके लिए विशेषज्ञता की जरूरत है। सिन्हा साहब, ये बताइए कि रिपेयरिंग जो है यानी मरम्मत है और दोबारा इस्तेमाल कर लेना चीजों को ठीक करके, जैसा कि विकसित देशों में ऐसा देखा जाता है कि रिसाइकलिंग शॉप्स हैं, तो ये यदि चलन में आए तो इससे कितनी मदद मिल सकती है इस ई वेस्ट पर काबू पाने में?
2: बिल्कुल, सरकार तो ये चाहती है, जैसे आपने बोला रिसाइकल, रीयूज, रिपेयर, तो ये तो सरकार चाहती है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये करें। पर इसमें सिर्फ एक तरह से नहीं सोचना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, अब हमको पता है कि शहरों में गर्मी हो रही है, समर्स में ये एसी और गर्म करते हैं, हमको पता है कि पुराना एसी फट भी सकता है, हमको पता है कि उसमें जो गैस होती है वो बहुत पुरानी होती है, बिजली की खपत ज़्यादा होती है जो देश के लिए ठीक नहीं है, तो आपको रिपेयर करना है, रीयूज़ करना है। पर ये भी समझना है कि हर इलेक्ट्रॉनिक की एक लाइफ होती है, एक कार्य होती है, उसके बाद वो रिसाइकल हो ना बने, रिपेयर करिए। ये तो हमारे देश में, हमारे अंदर में प्रथा भी है कि हम

0: अलग करना पड़ता है। दूसरी बात है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे किसको दें कि ये रिसाइकल हो पाए। तीसरी बात यह है कि आपको जागरूक करना है अपने आप को और अपने बच्चों को और सबको, ताकि वो समझें और वो इस पे आगे ठीक डिसीजन ले पाएं।
1: जी, तो दोस्तों समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइंस और डिजिटल जरिए से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ई वेस्ट रिसाइकलिंग विशेषज्ञ मयंक सिन्हा जी को स्टूडियो में आने के लिए, श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हार्दिक धन्यवाद हमारी ओर से। और दोस्तों इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक हो रहा है समाप्त। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे फिर मिलेंगे आपसे। मुझे यानी मुनीश शर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को जो कि प्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है गजलों के कार्यक्रम महफिल का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिल। कार्यक्रम महफिल सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनते हैं कार्यक्रम की ये पहली गजल फनकार पंकज उदास के स्वर में।

जनाब अब्दुल हमीद आदम साहब का एक मशहूर कता पेश कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत कता है जिसमें आदम साहब ने रंग, खुशबू और नाज की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की है। इसी अंदाज की एक नई गज़ल, एक ताज़ा तरीन गज़ल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहले कतार से

फनकार चकचेत से और चित्रासी के युगलस्वरों में ये गज़ल आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली गज़ल आपको सुनवा रहे हैं फनकार पंकज उदास के स्वर में।

फनकार पंकज उदास के स्वर में गाई हुई इस गज़ल के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली गज़ल फनकार चित्रा सिंह के स्वर में।

फनकार चित्रा सिंह के स्वर में गाई हुई इस गज़ल के साथ ही हमारा आज का ये गज़लों का कार्यक्रम महफिल अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिल।

FM के 101.7 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरों के रंग।

कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है फिल्म तीसरी कसम के इस गीत के साथ, जिसे आवाज़ें दी हैं गायक कलाकार मन्ना डे और साथियों ने।

फिल्म बहू बेगम से ये गीत आपने सुना गायक कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में। आकाशवाणी चायबासा से आप इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी और सुषमा श्रेष्ठा के युगल सुरों में फिल्म हम किसी से कम नहीं से। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, धुन है राहुल देव वर्मन की।

जब याद किसी की आती है, कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं इसी फिल्म से। आवाज है कलाकार महेंद्र कपूर की, बोल लिखे हैं अली खान ने और धुन है मदन मोहन की।

पर श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट इनोवेशन भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहमलान ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों महत्वपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा कि दोनों देश और नवाचार, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पहमलान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली में ने आज इसकी घोषणा की गई। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चेनरो रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज से 3 मैचों की एक

0: that the President appointed Chief Justice of Gujarat High Court, Justice Sunita Agarwal, Chief Justice of Delhi High Court, Justice Devendra Kumar Upadhyay, and Chief Justice of Telangana High Court, Justice Aparesh Kumar Singh, as judges of the Supreme Court. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार. हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर. स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं. हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है. कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः आपकी सेवा में होंगे उपस्थित. तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति. शुभरात्रि. जय हिंद.